जी के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और सीना फाड़ दिया।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकोंग पीओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।
2: भक्ति

0: चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन।

0: नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है, इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
5: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
6: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा

0: और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
1: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H1B और L1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हुर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में

0: आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम टू रिमेन फ्री फॉर कंज्यूमर्स। Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder for

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

दोस्तों कहते हैं कि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, पर उनसे लड़कर जो आगे बढ़ जाता है वही तो होता है असली बलवान। जी हाँ, जिसके अंदर असली साहस होता है ना, वो मुश्किलों से डरकर नहीं, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में जो वो सपना देखते हैं, जो मुकाम पाना चाहते हैं, उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं। सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं आप? जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मौसम बहुत औसम है आज का, झमाझम बारिश हो रही है एंड बहुत प्यारा सा मौसम है। सबसे पहले आप सभी को हर हर महादेव। दिन मंगलवार का है, ट्यूसडे की सुबह है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है। जो कांवड़ यात्री, जो श्रद्धालु, जो कांवड़ लेकर दूर दूर से आ रहे थे, जल भरकर लाए भगवान शिव पे, आज वो जल अर्पित कर रहे हैं। सभी शिवालयों में जो है शिव की जय जयकार है, शिवमय हो रखा है हर तरफ का माहौल। तो आप सभी को भी ओम नमः शिवाय। आज सावन की महाशिवरात्रि है और इसका जल चढ़ रहा है मंदिरों में। अगर आप आज शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पहुंचिए मंदिर। आप सभी की ईश्वर सारी इच्छाएं पूर्ण करें, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। तभी तो अगर आपकी थोड़ी सी नाशाद है तो गेट विल सून की जल्दी से आप स्वस्थ हो जाएं और अच्छा अपने बारे में सोचेंगे तो जरूर आप स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। श्रोताओ, आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद के साथ और आज की सुबह मैंने एक बहुत ही प्यारा विचार आपके साथ साझा किया कि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, पर उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही असली साहस है, असली ताकत है। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ आज की सुबह कनेक्ट हो सकते हैं इस रेडियो पर 9837896896 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की मॉर्निंग अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत अभिनंदन है, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक माहौल बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, माहौल को और भी खूबसूरत बना सकते हैं आज की सुबह। बिल्कुल आपकी खूबसूरती जो है हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देगी मेरे दोस्त। आप जुड़िए ना 9837896896 पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत मॉर्निंग है, इतनी खूबसूरत वाइब है और सब कुछ बहुत ही प्यारा है, तो बिल्कुल आप जुड़िए ना मेरे साथ, हमें इंतजार है। आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ, प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग। ट्यूसडे की सुबह बहुत ही प्यारी तारीख है, तारीख की बात करें तो आज 11 अगस्त हो गई है, 11 अगस्त की मॉर्निंग एंड वक्त हो रहा है 8:21, घड़िया मिला लीजिए और अब से लेकर 10 बजे तक आपके साथ रहूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां होंगी ढेर सारी बातचीत और होंगी तमाम सारी जानकारियां। तो आप ऐसे ही ट्यून रहिए ना। फिलहाल आने वाला गाना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ओए होए, गुड मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास।

क्या बात है, सुबह सुबह इतना ब्यूटीफुल गाना। आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है इतने बढ़िया गाने सुन के। मेरी सांसों में बसा है एक तेरा ही नाम, उदित नारायण साहब की सुपर फ्रेश आवाज और प्यार हो गया फिल्म से अभी आप एंजॉय कर रहे थे। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है जी? आप आनंद को सुन रहे हैं, प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग है और अभी बात करते हैं आज 11 अगस्त की सुबह क्या स्पेशल है। 8:35 हो रहे स्टेशन क्लॉक में। चलिए श्रोताओं, बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, क्यों महत्वपूर्ण है आज की तारीख, इतिहास के पन्नों के लिए क्या कुछ खास रहा है आज 11 अगस्त को, इस पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर आपके संदेशों की तरफ भी हम ज़रूर बढ़ेंगे। आपको बता दें, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC बाजार में उतारा था श्रोताओं 1981 में, आज ही के दिन। हाँ जी, और आपको बता दें, यूरोप और एशिया में सदी का अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था 1999 में, आज ही के दिन। और आपको बताते चलें, आज का दिन और भी कई महत्वपूर्ण बातों के लिए बहुत ही ज़्यादा इतिहास जो है आज का खास हो जाता है। तमाम सारी और भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं जिन्होंने आज के दिन को और भी स्पेशल बना दिया है श्रोताओं। आपको बता दें, आज ही के दिन जन्म हुआ था 1954 में यशपाल शर्मा का, जो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें, आज ही के दिन 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे श्रोताओं आज ही के दिन। इसके अलावा आज ही के दिन जन्म हुआ अंजू जैन का, जो भारतीय क्रिकेटर है, 1974 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। और ये कुछ वो लोग हैं जाने माने जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी कहते हैं ना, जब आप भूमिका निभाते हो, अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो उससे बहुत ही खूबसूरत हो जाता है हमारा आसपास का ऑरा भी, हमारे आसपास का समाज भी, और कहीं ना कहीं चीज़ें भी बदलती हैं। और जब आप कुछ अच्छा ठान लेते हो तो यकीन मानिए वो आप कर ही मानते हो। श्रोताओं, कहते हैं ना, जब आप कुछ बड़ा सोचते हो तो बड़ा करने के लिए अंदर से जज्बा भी जगाना पड़ता है, हौसला भी जगाना पड़ता है। वो हौसला, वो जज्बा आप में है। आज की सुबह उठाइए ना अपने कर्मों की किताब और लिख डालिए कुछ बेहतर से बेहतरीन। चलिए साथियों, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारे पास तमाम सारे संदेश पहुंच रहे हैं लगातार। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये हमारे पास मयंक जी का मैसेज पहुंचा है, नमस्कार, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं सुबह सुबह, बहुत ही आनंद आ रहा है आपका प्रोग्राम सुनकर, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है, सुप्रभात, नमस्कार आनंद जी, आप इतिहास की जानकारियां देते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग सर, कल करे सो आज करे सो अब, यही कहना चाहती हैं विनीता पाल, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। आने वाला गाना जीने तमान पर पिक्चराइजेशन, साथ में मनोज कुमार साहब नजर आए थे। रोटी कपड़ा और मकान से निकल गया है आपके रील यूज सेट पर, लता मंगेशकर जी ने बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया। सावन चल रहा है, मौसम बहुत खूबसूरत है, तो ये गाना सुनना तो बनता है आज की सुबह। मेरा लाखों का सावन, चलिए इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ट्यूसडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
8: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
9: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आनंद कौर। क्या सॉन्ग होते हैं यार, इनको सुन के एकदम जूम करके फ्लैश बैक में चले जाते हैं। वो पुराने वाला टाइम ना एकदम से याद आ जाता है यार, बड़ा नॉस्टैल्जिया टाइम होता था अपना वाला। एनीवे, गुड मॉर्निंग है। 8:51 हो रहे हैं 11 अगस्त की सुबह। आप जुड़ चुके हैं फिर मुरादाबाद पर आनंद के साथ। ढेर सारी बातें हैं जो अभी आपके पास मुझे यहाँ से डिलीवर करनी है, पहुँचानी है। सो हौले हौले करके सारी चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं। बट अभी के लिए राइट नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आपसे सवाल करने वाला हूँ। बेसिकली आज बहुत ही कमाल के बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे होता है यार। आज 11 अगस्त की सुबह है तो उनके बारे में बात करना तो बनता है। कुछ अच्छे अच्छे गाने लगाता हूँ मैं आज की सुबह इनके। उसकी छनक गई, आपको गेस करना है कौन से हीरो हैं ये। और सॉन्ग यार, अच्छा अगले वाला गाना सुनो, बहुत प्यारा है। धड़कन में ओए होए रहते हो। एक और चला दो यार, इसी बात पे एक और लगा दो यार।

0: कौन से कलाकार की बात कर रहा हूँ?
1: रजनी के जीवन अच्छा नहीं लगता।
0: काजल, काजल। कौन से हीरो की बात कर रहा हूँ मैं? कौन है कमाल के आठ

0: मैंने तो इनको सामने से देखा है यार, सामने से मतलब बिल्कुल करीब से मैं इनको देखा हूँ। बहुत ही कमाल के इंसान है यार।
1: बांट रहा था जब खुदा ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो।
0: एक और यार
1: खूब है पास मैं।
0: आप मुझे मैसेज करके बताइएगा ये जो गाने चल रहे हैं कौन से पिक्चर।
1: जीवन
0: नहीं बतानी आपको, पिक्चर नहीं बतानी, ये हीरो का नाम बताना है। आप बस मैसेज कर सकते हो मुझे 9837896896 पर। अगर आपको समझ आया कौन से हीरो के गाने भी आप सुन रहे थे तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पर। ढेर सारे मैसेज ऑलरेडी मेरे पास पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? हाय, मेरा नाम शिखा है। गुड मॉर्निंग शिखा, लिखती है आनंद जी, हैप्पी महाशिवरात्रि, मौसम बहुत औसम हो रहा है, ऊपर से गाने बहुत अच्छे प्ले करते हो आप, मज़ा आ जाता है सुबह सुबह। थैंक यू शिखा जी। मेरे पास दीपाली का मैसेज पहुँचा है गायत्री नगर से, लिखती है गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग दीपाली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। शहर की लड़की आने वाला गाना, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़। हर हर महादेव, महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको आनंद जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? ये मेरे पास मैसेज आ रहा है, यहाँ पर गुड मॉर्निंग पहुँचाते हुए लिखते हैं अपना नाम, इन्होंने लिखा क्या, अच्छा शुभांग, हाय शुभांग, गुड मॉर्निंग। एक और मैसेज आ गया है हरपाल सिंह जी का, ये मुझे मैसेज करते हैं चौधरी हरपाल सिंह जी, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, ये हरथला से मैसेज आ रहा है, आनंद जी हर हर महादेव, सभी को सावन की महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़की शहर की लड़की, अच्छा मैं आपको एक क्लू देता हूँ, आज जो कलाकार का हम जन्मदिन मना रहे ना, ये गाना उनके ऊपर भी पच्चराइजेशन है, अगर आप बता सकते हो तो। वेरी वेरी सिंपल सॉन्ग एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आज की सुबह, ज़्यादा प्रेशर मत डालो दिमाग पे, ट्यूसडे मॉर्निंग है, आराम से सुबह की शुरुआत करें। अगर अभी आपकी आँख खुली, आपने जस्ट रेडियो खोला है तो आपका स्वागत है, मैं कहती हूँ उठ जाओ, गुड मॉर्निंग हो गई है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: भैया आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त स्टेशन की घड़ी में सुबह के 9 बजने को है। हाँ जी, तो अभी मैं कह रहा हूँ ट्यूसडे की सुबह है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है 9837896896 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की मॉर्निंग। एंड जैसे कि मैंने कहा सुबह के 9 बजने को थे, लेकिन अभी फिलहाल 9 बज चुके हैं।
4: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
5: अरे आनंद इज बैक।
6: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
7: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
8: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
9: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी मां।
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
10: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
11: बिंदास मॉर्निंग।
0: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय लास्ट आवर, शुरुआत हो गई है जी। हाँ जी, कैसे हाल चाल है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, वंस अगेन वेलकम बैक है एंड दिस इज माय लास्ट आवर। नो डाउट यार कि कितनी जल्दी समय भाग जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। एंड अब ये वो घंटा है जहां पर आप थोड़े से नए ट्रेंडिंग वाले गाने सुनेंगे एंड साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी होंगी कड़क वाली, जहां पर आपको पता लगेगा क्या चल रहा है आसपास की चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास चल रही होती है लेकिन हमें पता नहीं लगता है। चलिए भैया बात कर लेते हैं, आपको जो है कुछ कड़क अपडेटों से रूबरू करा देते हैं क्या कुछ होने वाला है। देखिए इंडिपेंडेंस डे की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, इनफैक्ट मुरादाबाद में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, जो अपना लाल किला है वहाँ पर भी बहुत जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं इंडिपेंडेंस डे की। और कल मुरादाबाद के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत भव्य यात्रा होने वाली है, हर घर तिरंगा अभियान की जो एक यात्रा है, जो रैली है, वो कल होने वाली है इंपीरियल तिराहा से। इसकी शुरुआत होगी सुबह 8 बजे से, तो अगर आप लोग डेफिनेटली वहाँ जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप कल पहुँचेगा। कल 12 अगस्त की सुबह 8 बजे इंपीरियल तिराहा से निकलने वाली एक बहुत ही भव्य यात्रा हर घर तिरंगा अभियान को जो है कल अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा। 15 अगस्त के दिन लाल किले से पहली बार गूंजेगा वंदे मातरम। एग्जैक्टली, इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा अच्छे से होने वाली है, मतलब सेलिब्रेशन डबल हो जाएगा क्योंकि वंदे मातरम का जो गायन है वहां पर किया जाएगा एंड बहुत ही स्पेशल चीजें होने वाली हैं इस बार वहां पर। जी हाँ, इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर भी जो है बहुत सारी स्पेशल चीजें होने वाली हैं इस इंडिपेंडेंस डे पर। ऐसी और भी लेटेस्ट चीज़ें हैं जो हौले हौले आपको पता लगेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एक बहुत ही कमाल की कड़क अपडेट जो आप तक पहुंचेगी जरा सी देर में, क्योंकि आप सुन रहे हैं आनंद को। सो आनंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको सारी जानकारियां हम पहुंचाएं आपके रेडियो पर, आपके रेडियो सेट पर। आपको कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो सारी कड़क अपडेट, सारी जानकारियां मैं आप तक पहुंचाऊंगा ना इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। फिलहाल आने वाला एक गाना जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा।
12: कोई

0: my god, what is wrong yaar, aaj ki subah
1: TV mein hai bas tera reflection,
0: kaun jaane kaisa tera mera hai connection, pyar wala connection hai ji,
1: lag gaya jaan se volt chune se tere,
0: kaash aisa hota,
1: lag gaya jaan se volt chune se,
0: good morning kitchen,
1: chune se tere, chune se tere,
0: zara si dil mein gaana suniye, theek hai ji,
1: tere लग गए 440 वोल्ट छोड़ने से,
0: आप आराम से गाड़ी चलाते हुए जाइए, आज आपको कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ट्रैफिक खुल चुका है, आप जहाँ जा रहे हैं, आप दिल्ली रोड जा रहे हैं, काठ रोड जा रहे हैं, स्टेशन रोड जा रहे हैं, आप गुरट्टी पर हैं, आप पीलीकोठी पर हैं, आप जहाँ पर भी हैं, आप मुझे डेफिनेटली कड़क अपडेट दे सकते हैं। आपको लग रहा है थोड़ा सा भी यही हैवी है, स्लो ट्रैफिक है, सो डेफिनेटली आप मुझे बताइए 9837896896 पर मैसेज कर सकते हैं। आज की सुबह इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। अभी फिलहाल आने वाले कुछ अच्छे गाने, इनको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप भी मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है जी। हाँ, वो मैंने सवाल भी पूछा, उसके जवाब भी बता देना यार।

0: भैया जीने की वजह तो मेरी भी आप लोग हो देगी, मजा आ जाता है जब आपको जीने की वजह मिल जाती है ना, जब नई नई चीजें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है तो फिर तो यार सब कुछ एकदम चक दे फट्टे वाला होता है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: Welcome back, जी। ये ट्यूजडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जहां भी निकल रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, आप जहां भी जा रहे हैं पहुंचिए। आजकल मुरादाबाद में ना ये तीज सेलिब्रेशन बड़े चल रहे हैं, मैं भी आजकल होस्ट करने जा रहा हूं, बहुत सारे इवेंट्स बहुत सारे शोज में होस्ट कर रहा हूं आजकल, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन नई नई चीजें जब देखने को एक्सप्लोर करने को मिलती है ना मुरादाबाद में तो बड़ा मजा आता है, और स्पेशली जब अच्छे अच्छे लोग आपको अगर पहचानते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। फिलहाल भैया आपको बता दें कि महंगाई जो है ना थोड़ा सा झटका देने वाली, पता चल रहा है कि भैया चीनी के दाम थोड़े से ना आने वाले फेस्टिवल टाइम में बढ़ सकते हैं, कहीं जगह पर तो बढ़ भी गए, इनफैक्ट बताया जा रहा है कि चीनी जो है अब थोड़ा सा आसमान छू सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, आने वाला जो टाइम है वो फेस्टिविटी का है, ऐसे में जो है बताया जा रहा है कि थोड़ी सी जो है खाने पीने की चीज़ें जैसे कि चीनी एंड चावल ये थोड़े से बढ़ सकते हैं। अब यार बढ़े या घटे उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ अपन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है वो तो कितनी भी महंगी हो जाए बाबा उसको तो आप उनको लेना ही पड़ेगा ना। बताया तो ये भी जा रहा है तेल साबुन बिस्किट ब्रेड ये सब कुछ अगले महीने तक हो सकता है थोड़े और महंगे हो जाएं। यार कितने महंगे होंगे मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि इतने महंगे क्यों हो रहे हैं आखिर यार, मतलब कुछ सस्ता होने की जगह सब कुछ बढ़ता ही रहता है यार। हाँ जी, पहले बताया जा रहा था कि UPI से अगर आप पैसे भेजेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जब मैंने आपको कल ही अपडेट दी थी ना वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया अब जो है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज कल इंस्टाग्राम पे आए थे आनंद जी, जो आपने कल रेडियो पे बताया था, हम चाहते हैं कि उसको आप एक बार फिर से बता दें। तो मैंने फिर आपको बताया भी था कि देखिए भाई साहब, अब UPI से अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं जो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आई मीन उनका कोई शुल्क नहीं है, उनके लिए बिल्कुल फ्री है UPI। आप जैसे पेमेंट करते आ रहे थे वैसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड लेने की टेंशन है नहीं, और ये इधर उधर की बातों से आपको ना मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार, राइट। लहरा दो 9 अगस्त से लेकर जो है ये बहुत ही सुंदर सा कंपटीशन शुरू हो गया है लहरा दो, जिसमें 9 से 17 अगस्त के बीच जो है अपने घरों में आप तिरंगा लहराएं, एंड उसके साथ एक आप डेफिनेटली शेल्फी जो अपनी प्यारी सी एक सेल्फी है जो अपनी प्यारी सी तस्वीर है उसको आप अपलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आप मिल को जो है मिल सकते हैं। यस इस इंडिपेंडेंस डे हर घर तिरंगा अभियान के थ्रू आप जो है अपने आसपास छतों पर जहाँ भी आपको लगता है आप तिरंगा फहराएं उसकी एक सेल्फी जो है आप क्लिक करें, एंड उसको हैशटैग हर घर तिरंगा के साथ अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, और www.harghartiranga.com पर जाके भी आप अपलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यार एकता का पर्व है, एक ऐसा पर्व है जहाँ सब लोग एकजुट होकर जो है मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खुश होकर इस खूबसूरत पर्व का आनंद उठाते हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्व है, हमारी एकता और अखंडता का वैभव का उत्सव मनाया जाता है 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, बहुत ही खूबसूरत पर्व होता है जहाँ कुछ भी नहीं होता है दिल में ना मनों में, सब कुछ बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही बेहतरीन होता है। तो लहरा दो कॉम्पिटिशन में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर घर तिरंगा .com पे जाके अपनी सेल्फी भी आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए भैया काम की बातें तो होती रहेंगी, और फिलहाल अभी आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी इमीडिएटली टिप देना चाहता हूँ, बड़ा भी नहीं, जब लौट कराऊंगा तो उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। एंड एक ऐसा शहर है जहां पर अब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, क्योंकि इमेजिन ATM से जहां पैसे निकलते हैं वहां पर अब जो है आपको राशन भी मिलेगा, मतलब ये क्या नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे लगी तो मेरे को लगा डेफिनेटली इस पे बात करनी चाहिए। एक मैसेज आ गया है, मुस्कान ऐसी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। वाह मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया ये मैसेज पढ़कर। जुल्फी भाई का मैसेज आया है, थैंक यू सो मच ये प्यारी सी थॉट पहुंचाने के लिए। कभी कभी ना आपके मैसेज बड़े प्यारे होते हैं यार, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम से ना दिन बना देते हैं। फिलहाल 9:16 हो रहे हैं एंड मैं अभी फटाफट से लौट कर आता हूँ, उसके बाद आपको कुछ और खास बातें बताता हूँ।
2: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। लेकिन

0: के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी मां।
8: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या बात यार, व्हाट अ सॉन्ग। आज की सुबह हिम्मत वाला से भी आप ही गाना सुन रहे थे और इसका जो ओरिजिनल ट्रैक है वो तो ही कमाल का, लेकिन ये गाना भी कुछ कम नहीं था बॉस, इतना बेहतरीन गाना था, मेरे को तो मजा आ गया सुन के। एंड आई होप आपने भी इंजॉय कर ही लिया होगा। 9:20 हो रहे हैं, बस इतना बताने आया हूँ कि अगर कहीं पे कोई भसड़ है, कोई ट्रैफिक है या कुछ भी आपको लगता है कि अपडेट डेफिनेटली आनंद तक पहुँचनी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 या फिर कॉल भी कर सकते हैं 9837896896। दिस इज द सेम नंबर कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर। फटाफट से कोई अपडेट है तो बता दो यार। फिलहाल मैं बहुत सारी अपडेट बताने वाला हूँ इस गाने के उस पर। आने वाला गाना बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। सुन रहे हैं आप आरजे आनंद को। मैंने कहा जी दिल से बोलो ना, जियो बिंदास।

0: माउंटेन डे मनाया जाता है 11 अगस्त को हर साल। बहुत ही स्पेशल जो है ये डे है जो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ये ट्यूसडे की सुबह है एंड इसके अलावा नेशनल सन एंड डॉटर डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल नो कोड डे आज मनाया जाता है एंड इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे डेज हैं जो आज सेलिब्रेट किए जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे ही आज का दिन है, लेकिन ये माउंटेन डे अपने आप में बहुत ही स्पेशल एंड बड़ा वाला डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फेस मास्क डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। सोचिए ना यार, कैसे कैसे स्पेशल डेज मनाए जाते हैं। एंड इसके अलावा हिप हॉप डे आज मनाया जाता है। तो अगर आप हिप हॉप वाले डांसर हैं, आपको बहुत पसंद है हिप हॉप, जो फैंस हैं हिप हॉप के, उनके लिए बहुत ही स्पेशल डे है आज की सुबह। देखिए हर दिन तमाम सारी चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन अभी मजा आ रहा है मुझे आपके मैसेजेस को यहाँ पर पढ़ के। आउटस्टैंडिंग यार, बहुत ही प्यारे मैसेज आप कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और बिना किसी देरी के चलिए आपके फटाफट से मैसेज को यहाँ पर शामिल करते हैं।
1: बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद भाई, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
1: 11 अगस्त की सुबह एफएम मुरादाबाद से जुड़ा हुआ हूँ मैं भी, और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं, तो सभी लोग अपने ड्यूटी पे निकल रहे हैं, तो अपने माँ का आशीर्वाद और दुआएं लेकर निकले, और सफ़र बहुत ही अच्छा कटेगा आपका और काम भी अच्छा होगा। तो सुबह के टाइम जब भी आप घर से निकले, अपनी माँ की आशीर्वाद और दुआएं हमेशा साथ लेकर निकले। सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, रेडियो एफएम मुरादाबाद आनंद भाई के साथ बजाते रहें, जो दिल से दिल तक अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं और जानकारियां भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे देते हैं। जो कि आज बता रहे हैं कि ये चीनी महंगा होने वाली है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं मौसी मंसारी बनारस से।
0: क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी चीज़ें इतनी नोटिस करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मुझे आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही प्यारा वॉइस नोट मेरे पास पहुँचा, ज़रा इनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं।
2: जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से, तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं से दुर्प्रभाव मिलेगा, कहाँ बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने, कहीं बनेंगे पराए रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होगी कुछ मंदे चेहरे पर, कहीं होगी खुशामदे चेहरे पर तो कहीं पीठ पे बुराई का घाव मिलेगा, तू चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा, रख स्वभाव में शुद्धता को स्पर्श तू, अच्छा जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं आपका दोस्त कुलदीप गुप्ता उधौली बारा उनकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। ओके, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 928 हो गए, ढेर सारे वॉइस नोट एंड मैसेजेस जो आपके आ रहे हैं। सच माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी यार, आप लोग इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सअप करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आई नो आप तो ऑफिस जा रहे हैं सर, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप मैसेज नहीं कर सकते, कोई गल लीजिए। आने वाला गाना हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से, दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ट्रैक। नहीं चलेगी चाहे हो जा तू खफा, बेनी दियाल की आवाज। ट्यूसडे मॉर्निंग है, कुछ ऐसी गाने सुनते हुए आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर से फुल

होए होए आजा हो जाए थोड़ा लकी टू लकी मी हाथों में हाथ की है बात पुरानी। जरा सी देर में इसको सुनेंगे आप इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आज मैंने आपसे बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा था, एक बहुत ही कमाल की माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गाने में उनकी प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर। कौन से हीरो हैं ये?

अगर आपको समझ में आ गया कौन से हीरो के ऊपर पिक्चराइजेशन ये गाने, तो फटाफट आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करके मुझे बताएंगे इस वाले सेक्शन में जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, ये जो अभी आप गाने सुन रहे थे वो कौन से बॉलीवुड एक्टर पर पिक्चराइजेशन है। अगर आपको पता चल गया है कौन से कलाकार है तो आप मुझे

0: चलो जी मैसेज करिएगा आप मुझे 9837896896 पे, इंतजार रहेगा मुझे आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। फटाक से मैसेज करेंगे, अभी हम लौट कर आएंगे तो आपके से करेंगे और भी ढेर सारी काम की बात इस स्टेशन पर।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या बात है, 440 बूट सुल्तान का एक गाना सुन के बहुत मजा आ गया मुझे। सच बताऊं तो इतना बढ़िया ये गाना, जितनी बढ़िया फिल्म है उतने बढ़िया इस फिल्म के गाने हैं यार, नो डाउट सारे गाने अच्छे हैं। वेलकम बैक है, हेलो जी हेलो, बंदे के नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दूर तक। ढेर सारे श्रोताओं ने मैसेज किए हैं जोरदार ओरिजिनल वाली तालियां आपके लिए, एंड मुझे ढेर सारी कॉल्स भी आए आज की सुबह की, भैया कहीं इतना जाम नहीं है जहां आप सोच रहे हैं। आनंद जी सब कुछ बहुत सॉर्टेड एंड बढ़िया चल रहा है, तो चलिए जी सब कुछ बढ़िया ही चलना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जब हमारे शहर में कोई अच्छी चीज़ की बारी आती है तो सारे मुरादाबादी बढ़ चढ़ के जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे से अप्रिशिएट भी करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट भी देते हैं अपना। आपको बता दें 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराएंगे इस बार जो है अपने उत्तर प्रदेश में, एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत। एग्जैक्टली जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कल भी एक बहुत ही स्पेशल रैली होने वाली है मुरादाबाद में इंपीरियल तिराहा से। कल 8 बजे जो है एक बहुत ही भव्य यात्रा शुरू होगी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत। इंडिपेंडेंस डे है 15 को, आपको पता है 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसी खास मौके को जो है ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए नगर निगम ऑर्गेनाइज कर रहा है एक बहुत ही खूबसूरत भव्य रैली जो होने वाली है कल 12 अगस्त को इंपीरियल तिराहा से। इसकी शुरुआत होगी सुबह 8 बजे से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है जाएं और इस खूबसूरत माहौल का हिस्सा बने, इस खूबसूरत ब्यूटीफुल वाइब का हिस्सा बने आप भी, और अपने घरों पर भी आप तिरंगा जरूर लहराएं। उसकी सेल्फी आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, वहां पर आके भी आप हमें मेंशन कर सकते हैं। और इस बार का जो ये इनिशिएटिव है बहुत ही कमाल का है, 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। This is amazing initiative. यार जब बात अपने देश की आती है ना तो हम लोग मतलब एकदम से ना हमारे अंदर जो अंदर से देशभक्ति है वो जाग उठती है जी। बहुत ही अच्छी चीज है ये, right? बुद्धि बिहार में एक बहुत ही स्पेशल चीज बनने वाली है वेरी वेरी सून, एंड दिस इज वेरी वेरी सरप्राइज मूमिन मुरादाबादी के लिए, एक बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है कि भैया आप देखिए आपका जो बुद्धि बिहार है ना वो और भी ज्यादा अल्टीमेट होने वाला है। क्यों, कुछ तो स्पेशल बन रहा है बॉस वहां पर, क्या स्पेशल बनने वाला है मैं देखूँ, बहुत सारी अपडेट होती है धीरे धीरे तो आपको बताऊंगा, सब कुछ अभी जान लूंगा। मुरादाबाद भी काफ़ी डेवलप हो रहा है यार, बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है आ रही हैं शहर के अंदर, और बहुत ही अच्छा लगता है जब नई नई चीज़ों का जो है आविष्कार मुरादाबाद शहर में हो रहा है। नई नई चीज़ें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो अपना शहर भी ना अब किसी से कम नहीं है बॉस। 9:42 हो गए स्टेशन क्लॉक में, और 11 अगस्त की सुबह थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक ऐसे शहर में जो है शुरुआत हो गई है, अब एटीएम से जो है मिलेगा राशन। सरकार जो है एक नई पहल शुरू कर रही है, और ये कहां पर शुरू हुई है देखिए आपको बता दें, अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है छत्तीसगढ़ वालों के लिए, और बहुत ही अच्छी चीज़ वहाँ पर शुरू की गई है। वैसे अपडेट तो कहीं की भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन तो हमें कलेक्ट करनी है ना। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि देखो भैया अब जो है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है सरकार ने राशन लेने का तरीका थोड़ा आसान कर दिया है वहां के लोगों के लिए। जी हाँ, नई तकनीकी और खूबसूरत इनिशिएटिव के साथ जो है एक नया जिसे कह सकते हैं एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया जो है इन्होंने निकाला है, जिसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम की शुरुआत जो है वहां पर हो गई है। एंड अन्नपूर्ति ग्रीन जो ये ग्रीन एटीएम है इसको शुरू किया गया है, इस मशीन की मदद से जो है अब राशन जो लोग लेते हैं राशन कार्ड धारक उनके लिए एक अच्छी चीज ये होगी कि भैया जो लोग लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं उन्हें लगना नहीं पड़ेगा, उनका टाइम बचेगा, प्लस उनको जो है थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, राशन जो है उनको अब मिलेगा मशीन से, यानी कि एटीएम मशीन से उन्हें राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई यार, चलो उन लोगों के लिए जो एक्चुअली लंबी लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं। वैसे इस तरह की चीज़ें अपने शहर में भी होनी चाहिए जी। 24 ईयर के बाद जो है कमबैक कर रही है माधुरी दीक्षित, एग्जैक्टली धक-धक वाली क्वीन, धक-धक गर्ल, 24 सालों के बाद टीवी पर होस्ट बनेंगी माधुरी दीक्षित, KBC मराठी में नजर आएंगी ये माधुरी जी इसको होस्ट करते हुए। बट मजे की बात यह है कि यार ये जो टीवी शो होस्ट करने वाली है ये मराठी में होगा, एंड दिस इज द मराठी शो KBC जिसको होस्ट करेंगी माधुरी दीक्षित। 24 ईयर के बाद कमबैक कर रही हैं और होस्ट बनती हुई नजर आएंगी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है फैंस में, एंड काफी लोकप्रिय ये शो है, एंड अब इसमें जो है माधुरी जी भी नजर आने वाली होस्ट। चलो अच्छी बात है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कमाल की फैंटास्टिक बॉलीवुड जिन्हें कह रहे हैं ना क्वीन का आज बर्थडे है, बहुत ही प्यारी एक एक्ट्रेस का भी बर्थडे है। आज के दिन जन्म हुआ था ये फैंटास्टिक सी एक्ट्रेस का।
आरजी आनंद की तरफ से हमारी पूरी एफएम एंटायर फैमिली की ओर से विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत ही कमाल की है ये एक्ट्रेस। इनके बारे में बात करता हूँ, अभी लौट कर आता हूँ। और एक कड़क सवाल भी जिसका जवाब मुझे अब तक पहुँचाना है फटाफट से। काफी पॉपुलर था ये गाना इनका, खोल के पर्स दिखलाऊं। और ये वाला गाना तो

पक्का पाप पकड़ लूंगी कौन है कमाल की एक्ट्रेस जिनका आज बर्थडे है। चलो यार अब बात इनकी हुई है तो एक बढ़िया सा इन्हीं का गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, आप ऐसे ही आरजे आनंद को सुनते जाओ। मैं लौट कर आता हूँ एक अमेजिंग फैंटास्टिक गड़क सवाल के साथ। अगर आप देंगे उसका जवाब तो आज की सुबह आप बनेंगे मेरे शो की सुपरस्टार। आई नो, मुझे याद है थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, उसके बहुत सारे जवाब मेरे पास पहुंच चुके हैं आज की सुबह, एंड बहुत सारे लोगों ने एकदम सही जवाब मुझ तक पहुंचा दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप लोग ने सच में बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब पहुंचाए हैं, थैंक यू सो मच। और मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है कि हाँ भैया आपने जो जवाब पहुंचाए हैं वो बिल्कुल सही हैं और एकदम बिल्कुल करेक्ट वाले जवाब है। क्या है राइट आंसर बताऊंगा अभी, और एक कड़क सवाल होगा, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो उसमें पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर सकते हैं। लौट कर आता हूँ एक फैंटास्टिक क्वेश्चन के साथ। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा था किनकी, मैं बात कर रहा था जैकलिन जी की। जैकलिन फर्नांडिस का आज हैप्पी वाला बर्थडे होता है, एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे एफएम मुरादाबाद की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से। वेरी हैप्पी बर्थडे जैकलिन जी, बहुत ही कमाल की एंड आइकॉनिक एक्ट्रेस है यार, उन्हीं के ऊपर ये गाना है। एंड हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से, तमाम मुरादाबादीज की ओर से विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: बिल्कुल जी, आप बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं। एग्जैक्टली, ये रेडियो स्टेशन आपका फेवरेट है जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और ढेर सारे अच्छे गाने और अच्छी बातें ऑफ कोर्स आपको मिलती हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड अभी फिलहाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल कड़क क्वेश्चन है जिसका जवाब देकर आज की सुबह आप बन सकते हैं मेरे शो के सुपर स्टार। अगर आप सुपर स्टार बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने बस मेरे सवाल का जवाब पहुँचाना है। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो आज की सुबह आप बन जाओगे हमारे शो के सुपरस्टार। अगर आप बनना चाहते हैं तो बस आपने उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड सवाल दिस इज वेरी वेरी सिंपल, जवाब इसका आपको पहुंचाना है मेरे को मैसेज करके। एंड आज का सवाल क्या होने वाला है पाजी, बहुत सिंपल होने वाला है यार।
4: प्यार नाप तोल के
3: आने वाला गाना है ये यार, इट्स नॉट माई कड़क क्वेश्चन।

चलो फिलहाल ये गाना भी आएगा अब तक, लेकिन उससे पहले मेरा कड़क सवाल जरा जल्दी से सुनो, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाओ यार पहले। वेरी गुड। अब देखो आज एक बहुत ही कमाल के हीरो का बर्थडे, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं, पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है, इनकी बहुत ही पॉपुलर एक फिल्म आई थी एंड इसमें बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट थी। मैं इस मूवी का नाम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इस मूवी के जो हीरो हीरोइन थे उनके जो कैरेक्टर का नाम था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आप गेस कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो एक इनकी फिल्म आई थी भाई साहब की, और उस फिल्म में बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट थी, लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक देव होता है, एक अंजलि होती है और एक राम होते हैं। देव और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा यू नो एकदम वो केयरिंग वाला लव इन दोनों के बीच में होता है, बहुत ही बढ़िया वाला प्यार होता है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि जो अंजलि होते हैं ना, उस भैया अंजलि के फादर चाहते हैं कि मेरी बेटी की एक शाही घराने में शादी हो, तो वो अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा शाही घराना परिवार ढूंढते हैं। वहाँ पर जब एंट्री होती है एक ऐसे कमाल की कलाकार एक्टर की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कलाकार हैं, बहुत ही प्यारे एक्टर हैं, उनका नाम होता है इस पिक्चर में राम, एंड वेरी सिंपल, बहुत ही सीधा साधा इंसान, जो उनकी मॉम बोलती है वो वही करते हैं। एंड उसके बाद होता क्या है, अंजलि की शादी हो जाती है राम से, देव रह जाते हैं अकेले, उसके बाद लास्ट में देव जो है थोड़ा सा विलन वाले रूप में आते हैं एंड अंजलि एंड राम की लाइफ में आके थोड़ी सी एंट्री देते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। लेकिन बात वही होती है कि भैया बाद में देव और अंजलि का प्यार अलग हो जाता है, क्योंकि अंजलि को राम से प्यार होने लगता है। राम अंजलि देव क्या है कहानी, कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूं, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ जरा मुझे। व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे 9837896896 पर। ये जो स्टोरी है वो कौन सी फिल्म की है, देव अंजलि एंड राम, आपको समझ आ रहा है कौन सी पिक्चर की बात कर रहा हूं मैं? थोड़ी देर में इस फिल्म का एक थोड़ा सा क्लू दूंगा, मतलब एक अच्छे से गाना भी सुनवाऊंगा, शायद आप पहचान जाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है, आज के हीरो का जो बर्थडे है ना बहुत ही कमाल के, उनके बारे में एक क्लू देता हूँ, उन्हें प्यार से हम अन्ना कहते हैं, अन्ना, ठीक है। अभी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है, देव अंजलि एंड राम की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही आइकॉनिक स्टार कास्ट है, बहुत ही प्यारी फिल्म है। बताओ मुझे कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, आज कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें बहुत ही धाकड़ यू नो ये स्टार कास्ट है, बहुत ही धांसु फिल्म है, गाने बहुत ही अल्टीमेट है इस मूवी के, आज भी जब सुनते हैं तो एकदम फ्लैश बैक में चले जाते हैं। अगर समझ आई है आपको मूवी तो नाम बताओ मुझे। हाँ जी, उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। उसका एक डायलॉग बहुत ही प्यारा है, वो भी मैं अभी प्ले करूंगा। अगर आपने मुझे दिया सही जवाब तो आज की सुबह आप बन सकते हैं मेरे शो के सुपरस्टार। सुपरस्टार बनना है आपको तो फटाफट मुझे मैसेज करो, अंजलि देव एंड राम ये जो फिल्म थी वो कौन सी थी जिसमें तीनों नाम थे, और मैंने स्टोरी भी आपको सुना दी इन शॉर्ट। अगर आप समझ गए हैं तो फटाफट मुझे मैसेज कर देंगे। चलो अभी एक प्यारा गाना, उसके बाद मैं लौट कर आता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, ये है आपके शहर का अपना अमेजिंग कम्युनिटी रेडियो आनंद वीडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी राइट बैक, कहीं मत जाइए। अगर गाड़ी चला रहे तो फोकस रखिए सड़क पर और अपना ध्यान सड़क पर रखिए, लेकिन अपने कान रेडियो पर रखिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आने वाला गाना हाय हाय हाय आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, पर जाए जी

0: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
2: भाई साहब आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि सुबह सुबह अगर आप जहां भी जा रहे हैं दिल्ली रोड स्टेशन रोड या आप हैं कांट रोड पे या आप जा रहे हैं गुरट्टी की तरफ पीलीकोठी जहां भी आप हैं, मैं कह रहा हूं पाजी आराम से निकलते रहिए। और बाकी अगर आप मेरे साथ आज की सुबह जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है 9837896896 पर आप जो है अपने दिल के हालचाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। ढेर सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास पहुंच चुके हैं आज की मॉर्निंग, आई एम सो हैप्पी। और जो मैंने आज एक सवाल आपसे पूछा है ना उसको लेकर भी बड़े सारे फैंटास्टिक आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं। रिपीट करूंगा अभी आज का सवाल, अगर आपने नहीं सुना है तो हो सकता है आज की मॉर्निंग आप बन जाएं मेरे शो के सुपरस्टार। अभी लौट कर आओ।
3: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: फिलहाल जरा काम की बात सुनो, सुबह के 10 बज चुके हैं।
4: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
5: अरे आनंद इज बैक।
6: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
7: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
8: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
9: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
8: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: ग्यारह अगस्त की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद को लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। 10:02 हो रहे हैं, ये है ट्यूसडे की मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आने वाला अमेजिंग गाना शेरीमान एंड परवीश वर्मा।
0: प्यार नाप तोल के
2: सुबह सुबह आपको रिचार्ज करने के लिए कुछ अच्छे गाने लेकर आते हैं धाकड़ वाले, जिनको सुनकर आपकी मॉर्निंग थोड़ी फैब्यूलेस हो जाती है। आज एक बहुत ही धाकड़ हीरो का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, बॉलीवुड के बहुत ही कमाल के स्टार हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एंड मैंने आपको उनकी एक फिल्म की स्टोरी भी बताई थी जिसमें देव अंजलि एंड राम होते हैं। देव अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन देव थोड़ा सा जो है मिडिल क्लास होते हैं, इसी वजह से अंजलि के फादर को पसंद नहीं आते हैं। एंड अंजलि के फादर थोड़े शाही घराने में अंजलि की शादी करना चाहते हैं बिकॉज उनकी एक लौती बेटी होती है और वो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाते हैं। और यहां पर जो रिश्ता आता है वो आता है राम का। राम एक बहुत ही सीधा साधा जेन्युइन इंसान होता है, जो उनकी माँ बोलती है वो वही करते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। लेकिन अंजलि राम को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन हौले हौले इन दोनों के बीच में दूरियां खत्म हो जाती हैं और ये एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर बाद में देव की दोबारा एंट्री होती है लेकिन देव उस टाइम थोड़े विलन वाले रूप में आते हैं, बट देव को अंजलि फिर नहीं मिल पाती है। बताइए देव अंजलि और ये राम कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूं मैं आज की सुबह, क्योंकि आज इनका बर्थडे है। अगर स्टोरी आप समझ तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉपुलर फिल्म है और इस फिल्म का ये म्यूजिक प्ले कर रहा हूं शायद ये सारे भ्रम तोड़ देगा और आपके आंसर को इजी कर देगा। अब तो बता दो यार, चलो मैसेज करो मुझे 9837896896। आज बर्थडे होता है अन्ना जी का। एंड ऑफकोर्स अब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, इतने सारे क्लू दे दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो अब कोई एक्सक्यूजेस मत दो, सीधा सीधा मुझे व्हाट्सएप करो। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और इस गाने को सुनिए वॉल्यूम बढ़ा के।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: यही तो पूछा था मैंने यार, आज इनका बर्थडे होता है। बहुत ही कमाल के आइकॉनिक हीरो हैं, बहुत सारी फिल्में देखते देखते हम बड़े हुए हैं, बहुत सारे इनके गाने सुनते सुनते रेडियो पे बड़े हुए हैं, एंड बहुत ही अच्छे और बहुत ही कमाल के जो है कलाकार हैं। तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते थे, और ढेर सारे मैसेज वैसे मेरे पास आ गए हैं आज की सुबह, एंड यहाँ पर जोरदार तालियां। आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट लकी कॉलर हमें मिल गए। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हो, कौन बात कर रहे हो, अपना नाम तो बताओ।
1: मेरा नाम हनी।
0: हनी, ओके हनी, हाउ आर यू, कैसे हो, कहाँ से हो हनी?
1: मैं तो अच्छा हूँ।
0: नहीं, अच्छा तो मैं भी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? आपका नाम हनी है, आप कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
1: मैं गौतम नगर।
0: गौतम नगर रहते हैं, ओके। हनी क्या करते हो अभी आप? बहुत छोटे लग रहे हो मेरे को। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? ओके, कौन से स्टैंड में पढ़ते हो ये बताओ।
1: मैं सेवेंथ।
0: सेवेंथ में पढ़ते हो, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, आप रेडियो सुनते हो?
1: हाँ।
0: अरे वाह, मजा आता है आपको?
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने जो भी स्टोरी सुनाई थी वो कौन सी पिक्चर की स्टोरी थी?
1: वो धड़कन, धड़कन स्टोरी की पिक्चर, वो
0: पिक्चर। ओहो, धड़कन पिक्चर या पिक्चर धड़कन, धड़कन में धड़कन, सब कुछ एक ही बार बोल डाला आपने तो, बाबा रे बाबा। अच्छा, आपने ये मूवी देखी है?
1: हाँ।
0: अच्छा, कौन कौन से हीरो हीरोइन है, चलो बताओ मुझे जरा।
1: इसमें है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितनी बार देखी थी ये फिल्म आपने?
1: बहुत बार।
0: जोरदार तालियां, कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने कैसे गेस कर लिया, इतना इजी तो नहीं किया, बताया था मैंने, फिर भी आपने पकड़ लिया।
1: हम तो पकड़ ही लेते हैं।
0: ओहो, वेरी नाइस। अच्छा चलो हनी, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हो? कंग्रेचुलेशन, पहले तो आप विनर बने हो आज की सुबह, आपको कैसा लग रहा है ये बताओ।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा आज आपको रेडियो से कॉल आएगी, राइट?
1: यस।
0: वेरी नाइस। अच्छा चलो बताओ, आपको क्या क्या अच्छा लगता है रेडियो पर, आप क्यों सुनते हो रेडियो?
1: माँ, रेडियो पे बहुत अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं और म्यूजिक सुनने को मिलती है हमें।
0: ओके,
1: और आरजे आनंद की आवाज सुनने मिलती है।
0: अरे वाह वाह वाह, आरजे आनंद की आवाज सुनने मिलती है, ये तो कुछ ज्यादा ही बटरिंग हो गई है भाई, मुझे मारो। मैंने इनको कोई पैसे वैसे भी नहीं दिए हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों आपको आरजे आनंद की आवाज पसंद है ये बताओ।
1: क्योंकि आप बहुत अच्छे
0: हैं। ओहो, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपने मेरे को देख लिया। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लगा हनी आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आज स्कूल नहीं गए आप, छुट्टी है आज?
1: हाँ, आज छुट्टी है।
0: हाँ, मैंने कल भी कहा था ना, कल छुट्टी है, आज शिवरात्रि वाली छुट्टी है, राइट?
1: हाँ।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच हनी, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ कहना चाहते हो? बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज सुबह सुबह।
1: रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अनंत सर की आवाज सुनते रहिए।
0: ओके, बाय बाय, थैंक यू जी। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे। ओके हनी।
1: ओके सर, थैंक यू सर।
0: वेलकम, कंग्रेचुलेशन।

हमारे साथ हनी जुड़ा था, बड़ा प्यारा सा बच्चा, और एकदम सही जवाब दिया था। सुनील सिटी साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 11 अगस्त को, कंग्रेचुलेशन जी। इन्हीं की फिल्म धड़कन की स्टोरी की बात कर रहा था मैं, एक बार जोरदार तालियां आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी, जोरदार तालियां, और बाकी हनी के लिए कंग्रेचुलेशन यार। आज की सुबह हनी छोटा सा बच्चा बना मेरी शो का सुपरस्टार।

0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਲਵਦੀ ਨਵਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ आनंद राज आनंद की आवाज में इस गाने को सुन रहे हैं सुनीति चौहान ने साथ दिया है म्यूजिक डायरेक्टर हैं आनंद राज आनंद और रेडियो पर जो आवाज आ रही है वो भी आनंद की आ रही है बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है क्योंकि बहुत बढ़िया भी हो जाता है यार ये ट्यूसडे की सुबह है 10:12 हो गए आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट वाला शो दिस इज बिंदास मॉर्निंग गाने का समय हो गया भाई खुशी की एंट्री होगी स्टूडियो में मैं क्या जी वडी पिरा तुसी ऐसे एंजॉय करते रहो करते रहो करते रहो ऐसे और भी वधिया वधिया गाने अभी सुनने को मिलेंगे यार आपको आगे आगे
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद कॉल 7055011681
0: चलिए ब्रेक का टी एंड हो गया है एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग सब लोगों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए थे और सभी लोगों ने सही पहचाना था थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए फटाक से आपके नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ खिसक सकता हूँ बाहर का मौसम बहुत औसम है उसको एंजॉय करने वाला हूँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर सुजीत सिंह भंडारी जी का आठ फुट मुरादाबाद से फुटोन हॉस्पिटल से जुड़े हैं सही जवाब के साथ थैंक यू सो मच मेरे भाई जुड़ने के लिए एंड हमारे साथ दरक्षा फातिमा जुड़ चुकी हैं आज की सुबह इन्होंने सही जवाब दिया था सुनील सेठ इज द राइट आंसर हमारे साथ जुड़ी थी पूनम जी सही जवाब विकी सागर पहुंचा रहे हैं लिखते हैं रेडियो वाले आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा था हाय गुड मॉर्निंग सना तुर्क एंड नाजिया तुर्क हेलो सर गुड मॉर्निंग सुनील सेठी साहब के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी फिल्म है ये धड़कन वेरी नाइस हमारे पास मैसेज पहुंचा था अमित वर्मा जी का लिखते हैं हेलो हाय आनंद जी कैसे हाल चाल है सुनील सेठी साहब का जन्मदिन है एंड जो अभी आपने स्टोरी बताई है उसका नाम है धड़कन बहुत ही आइकॉनिक मूवी थी एब्सोल्युटली सुनील सेठी साहब के बारे में बात हो रही है धड़कन फिल्म की बात करें मोहन स्वरूप रामपुर से जुड़े थे मेरे साथ ईदगाह शफी अहमद ईदगाह से शफी अहमद रईस दूल्हा अंसारी लिखते हैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर इनको लाजवाब लगता है शो थैंक यू चंदन नगर से डीके रोड़ा साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं राइट आंसर के साथ दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से राइट आंसर पहुंचाते हैं इसके अलावा महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं पहुंचा रहे हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से साथ में सही जवाब दे रहे हैं डॉक्टर सुरेश जी एंड लक्ष्मी जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह मौसिन अंसारी साहब सही जवाब के साथ जुड़े हैं बनारस से ललिता कश्यप नवीन नगर मुरादाबाद से जुड़ी हैं गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं लिखती हैं मौसम बहुत औसम है सावन की शिवरात्रि की शुभकामनाएं दे रही हैं और ढेर सारी बातें कर रही हैं और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब भी पहुंचाया है आज की सुबह बबली अंजान गीता कश्यप लक्ष्मी भाभी संतोष भाभी जी शिवरात्रि की शुभकामनाएं पहुंचाती हैं थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ढेर सारी मैसेज आपने किए हैं बहुत बहुत शुक्रिया
3: राधे राधे
0: राधे राधे जी
3: आप धड़कन मूवी की बात कर रहे हैं जिसमें
0: बिल्कुल सही जवाब था
3: शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार जी, और सुनील सेठी थे
0: बिल्कुल सही कहा आपने कंग्रेचुलेशन अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा आप जुड़ती हैं आपके प्यार के लिए शुक्रिया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़ चुके हैं सही जवाब और बहुत सारा गुड मॉर्निंग दे रहे हैं हमारे साथ अजीज अहमद जुड़ चुके हैं आनंद भाई गुड मॉर्निंग जिला मुरादाबाद संभल रोड से बस्तूर से हमारे साथ गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं आचल सैनी जी गुड मॉर्निंग और सही जवाब भी पहुंच रहा है इनका थैंक यू सो मच हाय गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है वेरी गुड मॉर्निंग आचल सैनी जी आप जुड़े मेरे साथ बहुत अच्छा लगा मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष सैनी साहब और ये जिला मुरादाबाद बस्तूर से मेरे पास आकांक्षा जी का मैसेज आ रहा है सही वाला गौरव ठीले नवीन नगर मुरादाबाद से जुड़े हैं लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग इनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेशन इनको पसंद आ रही है और उन्होंने सही जवाब भी पहुंचाया है रिहाना मेरे साथ जुड़ी है राइट आंसर के साथ मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जुड़े हैं ये भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं महाशिवरात्रि की लाइन पार प्रकाश नगर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ राजू यादव जी हेलो हाय साथ में गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं शंकर लाल यादव गुड मॉर्निंग जी आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर शिवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे संदेश और प्यारा प्यारा सा जो प्यार है इसको ऐसे ही बनाए रखिए ऑल द वे बेस्ट ये

हरपाल सिंह मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। सो गाइस थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय टिल देन टुमारो मॉर्निंग। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास। टेक्स्ट मैसेज पहुंच गया तो मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग स्वाति एंड नेहा का गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, हैप्पी महाशिवरात्रि, थैंक यू। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है सर? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए कल मिलते हैं, बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने, जी हाँ, आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों देखिए, जिंदगी का सफर हो या फिर लाइफ में अभी हम सफर कर रहे हैं राइट नाउ। देखिए, मैं तो आ चुकी हूँ ऑफिस, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मैं तीस तीस आई हूँ और मुझे पता है कि आप भी अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं। कुछ तो ऑफिस पहुँच चुके हैं, कुछ अभी जा रहे हैं ऑन द वे कार में। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकले ना, तो एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखें और पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जब हम प्यारी सी स्माइल करके घर से बाहर निकलते हैं ना और पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और जब हमारा दिन खूबसूरत होता है तो समझिए एवरीवन, हाँ जी, खूबसूरत है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मुस्कुराया नहीं बिना कंजूसी मत किया कीजिए, मुस्कुराया कीजिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है ना। तो फिर मुस्कुराने में क्यों आप इतनी कमी छोड़ देते हो, जब इतनी प्यारी सी आपके चेहरे पर हंसी आती है, क्यों चुपचाप हो जाते हैं आप? हाँ, और दोस्तों देखिए, सफर ना तब खूबसूरत हो जाता है जब हमारे साथ में कोई और भी होता है ना, चाहे वो हमारा दोस्त हो, हमारा लाइफ पार्टनर हो, या फिर आरजे खुशी आपकी दोस्त हो। हाँ, ट्यूजडे का दिन है, बहुत ही खूबसूरत सा, एंड तारीख है आज 11 अगस्त की, समय हुआ है 10:25, 10:25 हो चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग। और दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड है कि जिंदगी में हर चीज़ वैसी नहीं मिलती जैसे हम चाहते हैं, लेकिन जो नहीं मिला उसे सीखना और जो मिला उसकी कद्र करना, यही असली कामयाबी है। याद रखिए दोस्तों, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगी या कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा या सीख लूँगी, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी में ना सफलता उसी की होती है जो रुकने की बजाय हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज खुद से प्रॉमिस कीजिए, आई विल नॉट गिव अप, मैं सीखती रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी और अपनी सक्सेस की स्टोरी खुद लिखूंगी। एंड एवरीवन, आज सावन की शिवरात्रि है और आज मंगला गौरी व्रत का भी पावन दिन है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, हम तो यही कामना करते हैं महादेव माँ गौरी से। और अभी कुछ शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है, आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बस मैं आती हूँ अभी लौटकर। आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा फन गेम्स हम खेलने वाले हैं, तो आप कहीं मचाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए, बने रहिए खुशी के साथ।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर, 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी, 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 705070552।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, करीना कपूर की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, मीत ब्रदर्स एंड साथ में अनजान, करीना कपूर और बेहतरीन ट्रैक। जैकलीन ने क्या कमाल का डांस किया था ना एवरीवन।
1: सारा दिन यही गल्ला जब मैं तेरे कोल ना होवा किथे किदे नाल सितूंगे।
0: और आप सभी के सुबह सुबह खूबसूरत मैसेज शो में चार चांद लगा देते हैं।
1: तू क्यों नहीं दसिया ऐ में मेरे नाल है लड़दी आ मेरे पास आ जाना।
0: श्रोताओं तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं, आपकी जो खूबसूरत मैसेज आए हैं उनको मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि बैक टू बैक हमारे बहुत सारे लिसनर्स के मैसेज आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि उनको और इंतजार कराऊं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है, फर्स्ट मैसेज हमें पहुँचाते हैं मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिर परवाना जी। एंड आज की मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान जी मैसेज पहुँचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का। और आज की सुबह ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, फ्रॉम द मूवी आपकी कसम, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। ओ हो हो क्या बात है, सावन की शिवरात्रि है उस स्पेशल यू नो डे पे ट्रैक सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनवाएंगे आपको सब।

नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है सहारनपुर से शहीद मंसूर जी का, शाइना हसन जी का, एंड ये कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सिरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का, नमस्कार आपको भी नमस्कार सर। एंड नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है प्रिय आरजी जी को, हमारा आदाब नमस्कार आपको भी नमस्कार। ये मैसेज पहुंचाते हैं उत्तराखंड धनोरी तीलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी। अगला मैसेज हमारे पास आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम आप कैसे हैं, सना तुर्क एंड नाजिया तुर्क का मैसेज हमारे पास आया है।

0: ओके और मैम ने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से, कहते हैं आरजी खुशी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहते हैं कि मुझे धड़कन मूवी का एक ट्रैक सुनना है, टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ओके कौन रहते हैं आपके दिल की धड़कन में यार। चलिए सुनवाएंगे गाना, और स्पेशली आज तो बनता है ना, क्योंकि आज सुनील शेट्टी जी का बर्थडे भी है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, आज की मॉर्निंग सुनवाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी लौट कर आते हैं कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइए और अपने मैसेज मुझे पहुंचाइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। एंड आज हम करने वाले हैं बहुत सारा फन, क्या कुछ है आज स्पेशल सब आपको पता लगेगा धीरे धीरे। तो चलिए सुनते हैं कुछ ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत, बस आप यूं ही मुस्कुराइएगा और अपने संदेश जल्दी से पहुंचा दीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक यू गॉड।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

बात करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझमें, क्या है मुझमें।

0: उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो
2: लेकिन हम आपकी तारीफ करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि श्रोताओं आप सब बहुत प्यारे हैं और जितनी तारीफ आपके बारे में करें उतनी कम है। एफएम मुरादाबाद को इतना प्यार आप सब देते हैं और ये अभी आपने ब्यूटीफुल ट्रैक सुना अभिजीत साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक था नदीम शर्मन जी का और लिरिक्स थे समीर जी के। कमाल की फिल्म थी ना एवरीवन धड़कन। सुनील शेट्टी जी की एक्टिंग जबरदस्त और साथ में शिल्पा जी भी। अक्षय कुमार जी का रोल कितना खूबसूरत था ना। दोस्तों ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। एंड श्रोताओं देखिए सावन का पावन महीना और भोलेनाथ के भक्तों में आस्था का रंग पूरी तरह दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हजारों की संख्या में कांवड़ी देवघर के लिए प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम में जल अभिषेक के लिए रवाना हुए हैं और इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं। सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर करीब 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके ये श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित करेंगे। पूरे रास्ते गूंज रहा है बोलबम हर हर महादेव और सच में ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था विश्वास और भक्ति की खूबसूरत तस्वीर है और हम सब इन सभी कांवड़ यात्रियों की मंगल कामना करते हैं और इनकी यात्रा मंगलमय रहे। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम कुछ फन करने वाले हैं तो बस उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गेश सैनी जी का कल्याणपुर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हाय दी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? दरक्ष फातिमा हमारे साथ कनेक्ट हुई थी और ये ट्रैक सुनना चाहती थी जो हमने अभी प्ले कर दिया है। एंड एवरीवन ये गाना बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी पसंद का था। मेरे पास इस गाने की रिक्वेस्ट बहुत सारे मैसेज आए हैं और ये गाना अब हमने सुनवा दिया है, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, आपको भी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं। और सर कहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराती रहें। वो तो मुस्कुराती हूँ मैं सर बिना वजह भी, कभी कभी मुझे लगता है कि खुशी तुम ज़्यादा ही मुस्कुरा लेती हो, थोड़ा शांत भी हो जाया करो। लेकिन मैं जैसा मेरा नाम है ना वैसे ही मैं रहती हूँ हैप्पी हैप्पी। और इन्होंने एक थॉट भी हमारे साथ शेयर किया आज की सुबह, कहते हैं कि दुख और परेशानी ईश्वर की बनाई हुई वो प्रयोगशालाएं हैं जहाँ व्यक्ति की योग्यता और आत्मविश्वास का मूल्यांकन होता है। ओके तो दोस्तों देखिए अगर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए ना, परेशानियाँ आए, तो आपको ना परेशानी में ना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए चाहे खुशी हो या गम समय तो चलता रहता है ना। जब खुशी आती है तो बस उसमें क्या होता है ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं तो खुशी के बल में हमें पता नहीं चलता है कि कैसे वक्त बीत जाता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानियां आती हैं, तब हमारे अपने भी दूर हो जाते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो समय है ना वो कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हर किसी पर ट्रस्ट भी नहीं होता कि अपने प्रॉब्लम्स हम किसी के साथ शेयर करें। एंड कोई ऐसा शख्स होता है चाहे वो आपकी लाइफ में आपका दोस्त हो या आपके फैमिली मेम्बर्स, तो उनसे हम शेयर करते हैं तो अच्छा भी लगता है ना। और जब सुख का समय नहीं रुकता तो दुख का समय कैसे रुक जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, आपको सोचना है एंड जो भी होगा अच्छा होगा और बस धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी हर हर महादेव, सावन की शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी दोस्तों को भी सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड ये मैसेज पहुँचाते हैं अमित वर्मा जी हिमगिरी मुरादाबाद से, थैंक यू सो मच सर अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में शहीद इशारी कली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं और गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कार्यक्रम पसंद आता है। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट बड़ी प्यारी सी भेजी है कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। अरे वाह, अभी मुस्कुराहट की हंसी की हम बात ही कर रहे थे और सर ने इस गाने की रिक्वेस्ट भी भेज दी है। कभी कभी एवरीवन बोली हुई बात ना सच हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी जुबान से बोलो ना, जुबान से जो भी बोलो अच्छा बोलो,

क्योंकि शब्द बहुत पावरफुल होते हैं और कभी भी पूरे हो जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अभी मुस्कुराहट की बात कर रही थी, हंसी की बात कर रही थी, तो सर ने गाना गाने की रिक्वेस्ट हमें भेज दी है। तो वैसे ही कभी ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में भी कि आपने कुछ, आपके दोस्त ने या फिर किसी ने भी आपको कुछ बोला हो और वो कंप्लीट हो गया हो, तो आपने कहा अरे आज सुबह तो यही कहा था और देखिए ये बात पूरी हो गई है। तो इसीलिए आप जब भी बोले अच्छा बोले, क्योंकि इतनी प्यारी आवाज़ आपको ईश्वर ने दी है। हाँ, तो किसी को गलत बोलकर या गलत बातें कर क्या फ़ायदा है, बोलना है तो कुछ अच्छा बोलो ना यार, जो सामने वाला सुनकर भी हैप्पी हो जाए। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला मुरादाबाद संभल से मैसेज पहुँचाती है नौरीन, नौरी जी, और ये कहती हैं ये गुड मॉर्निंग हमें विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए एवरीवन अभी कुछ और मैसेज हम आकर रीड करते हैं, उससे पहले कुछ गाने भी सुन लेते हैं। एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी सर ने फ्रॉम द मूवी आपकी कसम से, और आज सावन की शिवरात्रि भी है, तो सुन लेते हैं शिव जी का ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना, एकदम दिल को टच करने देने वाला ट्रैक था। अरिजीत सिंह जी की आवाज सीधा करती है दिल पे वार। वक्त हुआ स्टूडियो की घड़ी में 11:13। और दोस्तों आज बर्थडे है सुनील शेट्टी जी का। दोस्तों सुनील शेट्टी जी ने 1992 में फिल्म बलवान से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत बहुत बड़ी सफलता के साथ नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1994 में मोहरा दिलवाले और गोपी किशन जैसे फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। और दोस्तों इसके बाद 1997 की बॉर्डर ने उन्हें देश भक्ति वाले किरदार के लिए खूब सराहना दिलाई। फिर धड़कन, हेरा फेरी, मैं हूं ना, फिर ये हेरा फेरी और दे दना दन जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय के लिए अलग अलग रंग दिखे। और खास बात यह है कि धड़कन में नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनका मशहूर निकनेम अन्ना है और 3 दशक से ज़्यादा लंबे करियर में वे 100 से अधिक फिल्मों का हिस्सा बने रहे हैं। अभिनय के अलावा वे फिल्म निर्माण और बिजनेस में भी सक्रिय रहे हैं। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं दोस्तों, बलवान, मोरा, दिलवाले, गोपी किशन, बॉर्डर, धड़कन, हीरा फेरी, मैं हूं ना, फिर हीरा फेरी, दीदे नदन। और आप मुझे बताइए कि आपको सुनील शेट्टी जी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। एंड मैं एक डायलॉग भी प्ले कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। आपको बताना है कि डायलॉग कौन सी फिल्म का है, ठीक है? आपको बस उस फिल्म का नाम मुझे बताना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि हम और इंतज़ार आपको बिल्कुल नहीं करवाएंगे। एंड आपको बताना है एवरीवन, जो मैं डायलॉग प्ले कर रही हूँ ये कौन से फिल्म का डायलॉग है। बहुत सिंपल सा है और मुझे पता है कि आप जल्द ही इसका आंसर दे पाओगे।
1: और क्या क्या बनाया आपने फेमस?
2: अब और आप लोगों को गर्मी लग रही।
3: बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं, बाकी एसी फुल है, बोलो।
2: लाल किला देखा?
1: लाल किला, व्हाट नॉनसेंस। और क्या क्या बनाया आपने फेमस?
2: अब और आप लोगों को गर्मी लग रही।
3: बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं, बाकी एसी फुल है, बोलो।
2: लाल किला देखा?
1: लाल किला, व्हाट नॉनसेंस।
0: हाँ जी, बस आपको यही बताना है मुझे कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। देखिए बहुत सिंपल सा आपको काम करना है, क्या करना है अगर आपको पता है तो, बस अपना मोबाइल जो आपके हाथों में है इस पर हमारा ऑफिशियल नंबर डायल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस नंबर, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो जल्दी से आप अपना मैसेज पहुंचाइएगा, जो मैंने अभी डायलॉग प्ले किया है कौन सी फिल्म का है, उस फिल्म का नाम बस आपको बताना है, बाकी कुछ नहीं। एंड डायलॉग तो आपने, एक्टर्स की आवाज़ तो जो एक्टर्स उसमें बोल रहे थे एक्टर, उनकी आवाज़ तो आपने पहचान ही ली है ना, बस आपको फिल्म का नाम बताना है। तो बहुत इजी सा काम है, जल्दी से आप कीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको आपकी जो मैसेज आए उनको शामिल कर लेती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है आचल सैनी जी का। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, मैं फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ एंड अब मैं डेली आपको मैसेज किया करूँगी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम डियर। ये मैसेज पहुँचाती हैं जिला मुरादाबाद संभल से अपना। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बस नाम नहीं लिखा, गुड मॉर्निंग पहुँचा दिया है, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया कश्मीर से महराजुद्दीन जी का और ये भी गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तोर से आकांक्षा सैनी जी का। खुशी मैम गुड मॉर्निंग, ठीक हैं आप? हाँ जी हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा कैसे हैं डियर। अगला मैसेज हमारे पास आया है आदरणीय आरजी जी को, हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ताज मोहम्मद अंसारी जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज़ाद नगर लक्सर।

0: नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दुल्हा अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ट्रैक सुनना चाहते हैं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, सुनवाएंगी। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, हर हर महादेव। खुशी मैम, हर हर महादेव आपको भी। ये मैसेज पहुंचाते हैं हमें बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। कहते हैं माँ शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सुनील शेट्टी जी का बर्थडे है, तो उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनना चाहते हैं, बिना सजने के जीवन अच्छा नहीं लगता। ओके सर, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है। ये मैसेज हमें पहुंचाती है रामपुर से शबनम जी, साथ में राहत अली जी हैं, लाइबा काजमी हैं, अफरोज फातिमा है। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहती हैं जान से ज्यादा चाहते हैं आपको, हर खुशी से ज्यादा मांगते हैं आपको। अगर कोई कहे प्यार की हद होती है तो उस हद से भी ज्यादा चाहते हैं आपको। ओ माय गॉड, रियली थैंक यू शबनम जी। वैसे आपकी लाइनें बहुत प्यारी होती हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं लक्ष्मी जी का, गीता कश्यप जी का, संतोष कश्यप जी। गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाती है, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे मैसेज के बाद सुन लेते हैं एक शानदार से गाना, फिर लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने मैसेज भी पहुंचा दीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। जो अभी हमने डायलॉग प्ले किया था, आपको बताना है कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है। अगेन मैं प्ले कर देती हूँ फिर से, आप टेंशन ना लो, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है, तो उनको हम फिर से सुनवा देते हैं।
1: अब और आप लोग
2: और क्या क्या बनाया आपने? फेमस फेमस।
1: अब और आप लोगों को गर्मी लग रही।
3: बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं, बाकी एसी फुल है, बोलो।
1: लाल किला देखा?
2: लाल किला, व्हाट नॉनसेंस। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस फेमस।
1: अब और आप लोगों को गर्मी लग रही।
3: बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं, बाकी एसी फुल है, बोलो।
0: हाँ जी दोस्तों, आप कि ये जो डायलॉग मैंने प्ले किया है कौन सी फिल्म का है, जल्दी से बताइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। और एक शानदार सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं, बस अभी लौट कर आती हूँ मैं, कुछ म्यूजिकल ब्रेक उस पार। आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और फटाफट से मैसेज पहुंचा दीजिए, इंतजार कर रही है खुशी आपका।
2: Famous, famous.

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग, आप एफएम मुरादाबाद 1.6 पर आरजे खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना हीरी नी नशा तेरा करके, ना पूछ हमें क्या हो गया।

तो दोस्तों आज के दिन थोड़ा सा और ग्लैमरस, क्योंकि आज बर्थडे है बॉलीवुड की बेहतरीन, खूबसूरत और चार्मिंग अदाकारा जैकलीन का। जी हाँ, 11 अगस्त 1985 को बहरीन में जन्मी जैकलीन ने पहले मिस यूनिवर्स श्रीलंका का क्राउन अपने नाम किया और फिर मॉडलिंग से होते हुए बॉलीवुड में कदम रखा। साल 2009 में फिल्म अलादीन से डेब्यू किया और मर्डर 2, किक, रेस 2 और हाउसफुल जैसी फिल्मों से अपनी खास पहचान बनाई। अपनी खूबसूरत स्माइल, डांस और ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस से जैकलीन ने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो हमारी तरफ से जैकलीन को हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा यूं ही चमकती रहें और अपनी ब्यूटीफुल बेहतरीन एक्टिंग से सभी का दिल जीतती रहें। और दोस्तों आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल डॉटर एंड सन डे। एक खूबसूरत दिन जो हमें याद दिलाता है कि डॉटर हो या सन, दोनों ही परिवार की खुशी और इक्वल हैं, क्योंकि हर बच्चे को मिली इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट और अपने सपनों को पूरा करने का इक्वल चांस, क्योंकि बच्चे की पहचान उनके जेंडर से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत और उनके सपनों से होती है। तो आज बस इतना याद रखिए कि डॉटर हो या सन, दोनों हैं अनमोल, दोनों को दो बराबरी, प्यार बराबर एंड समान भी। आप सभी को नेशनल डॉटर सन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमने आपसे एक डायलॉग भी पूछा था ना, उसके बहुत सारे राइट आंसर हमारे पास आ गए हैं, तो हम उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम, उससे पहले आपके जो मैसेज आए हैं वो शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया है, नमस्कार मैम, आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी, और ये अपनी फैमिली के साथ रेडियो सुन रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ललिता कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग पहुँचाती है एंड सावन की शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी पहुँचा रही है।

0: ओके और ये कहते हैं कि आज मेरी क्यूट सी भांजी का बर्थडे है। अरे वाह, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड्डू उसको प्यार से कहते हैं, बहुत ही प्यारा सा है निकनेम। कहते हैं कि सावन की फुहार नहीं, आज शिव भक्ति की बहार है। खुशी मैम के लिए महादेव का खास उपहार है। डमरू की गूंज और भोले का नाम रहे। खुशी मैम के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव मैम आपको भी।
1: सारा दिन यूं ही चलना, जब मैं तेरे कोल ना होवां।
0: और कहती हैं कि मैम बाहर हल्की हल्की बारिश होने लगी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ कोमल शर्मा जी, आप बताइएगा आप कैसी हैं मैम। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है और बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं वो सही जवाब के साथ जुड़ रहे हैं। बस आपका भी मैसेज हम शामिल करने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करना आप। बस मैं अभी आती हूँ वापस, आप कहीं मचाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
0: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और समय हुआ है 11:46 और श्रोताओं आज 11 अगस्त है और हम याद कर रहे हैं एक ऐसे वीर क्रांतिकारी को जिसने महज 19 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। जी हाँ, बात हो रही है अमर शहीद खुदीराम बोस जी की। उनका साहस, उनका त्याग और देश के लिए उनका जुनून आज भी हम सभी को प्रेरणा देता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए उन्हें दिल से नमन करें, शशत नमन वीर शहीद खुदीराम बोस जी को। और दोस्तों, देशभक्ति के रंगों से सजा है ये खूबसूरत संदेश हर घर तिरंगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर आंगन में तिरंगा सजाइए और देश के प्रति अपने प्यार और सम्मान को जाहिर करें। हर घर तिरंगा, हर दिल में देशभक्ति, यही हो हमारी पहचान। तो इस बार तिरंगे के साथ सेलिब्रेट कीजिए आज़ादी का जश्न और पूरे गर्व से कहिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देशभक्ति का एक ऐतिहासिक नज़ारा देखने को मिलेगा। पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी जाएगी। आज़ादी के जश्न में डूबा ये पल देशभक्ति और गर्व से भरे पर देने वाला होगा वंदे मातरम। तो सुन लेते हैं एक देशभक्ति गीत और उसके बाद आएंगे अभी लौटकर। आप बस यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

तो दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो आ चुकी है। आपने सही जवाब पहुंचाया।

थे ना, अब आपका मैसेज शामिल होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। और हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर हमें पहुंचाया है सही आंसर के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम हम बता दें आपको? चलो बता ही देते हैं। हमारे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं लदावरी जिला मुरादाबाद से, फ्रॉम द मूवी दीवाने हुए पागल। एग्जैक्टली राइट, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल और जी की इसमें वॉइस थी। एग्जैक्टली राइट सर, एंड आप आज के बनते हैं हमारे शो के लकी सुपरस्टार। तो चलिए जोरदार तालियां आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड उसके अलावा हमारे पास सही जवाब पहुँचाती है ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस अपना सही जवाब पहुँचा दिया है। लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इसीलिए अपना नाम लिखना भूल गई। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है आचल का, और आचल सैनी जी हमें मैसेज पहुंचाती हैं सही जवाब के साथ, ये भी हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मिलारी जिला मुरादाबाद से, शमशाद अंसारी जी का, साथ में इरशाद हुसैन अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? आपका शो सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, शुक्रिया आपका। और ट्रैक सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा सा, मौसम बहुत खूबसूरत है, सुनवाएंगे प्यारा सा गाना, क्योंकि कभी बादल हो जाते हैं तो कभी हल्की सी धूप निकल जाती है, कभी रिमझिम सी बारिश हो जाती है तो कभी बारिश थम भी जाती है। हाँ, और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, दीदी नमस्ते, मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी सैनी जी हमें मैसेज पहुँचाती हैं कुंदर की, नहीं ये कुंदनपुर से मैसेज पहुँचाती हैं, मुरादाबाद से। और उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है, हेलो खुशी मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुझे एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। आपने गाने की रिक्वेस्ट तो भेज दी है लेकिन अपना नाम लिखना भूल जाते हो, हाँ ये मत किया करो प्लीज। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो मैम, ये मंझोला से अपना मैसेज पहुंचाती हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो दोस्तों आज बॉलीवुड के दमदार और सदाबहार सितारे सुनील शेट्टी जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी दमदार एक्टिंग, शानदार स्क्रीनिंग प्रेजेंस और सादगी हमेशा यूं ही लोगों के दिलों पर राज करती रहे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और कामयाब रहें आप। वैसे कामयाबी तो बहुत ज़्यादा उनको मिल चुकी है लेकिन इंसान ज़िंदगी में मुझे लगता है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं लेकिन कंटिन्यू हमें वर्क करना चाहिए, तभी हमें उसमें और सफलता मिलती है। एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन अना जी को। तो चलिए दोस्तों अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए। और आज तो बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं उनका भी बर्थडे नहीं है, मेरे कहने का मतलब है व्रत है, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है तो बहुत सारे श्रोताओं ने आज व्रत रखा है ना। ओहो शर्माने लगे आप, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं आप, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि उपवास रखना चाहिए। देखिए वीक में 7 डेज होते हैं और हम 7 डेज एवरी डे कुछ खाते ही रहते हैं, तो एक दिन तो ऐसा होना चाहिए ना जिस दिन हम ना खाएं, ब्रेक लें थोड़ा सा, उससे हमारी बॉडी भी ठीक रहती है। तो आपने सही जवाब दिया है, फ्रॉम द मूवी दीवाने हुए पागल, इसी फिल्म से एक प्यारा सा ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं। और इसी के साथ हम, इस प्यारे से गाने के साथ ही हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति, मिलेंगे आपको हम
3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: साथ एके सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं।
1: ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे हमारी खेती बचे, नंबर एक तो उसका ये उद्देश्य है। तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम एनपीके बोल देते हैं। बहुत से एनपीके ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं है कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा करने में भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी होती। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
2: जी,
1: कंपोस्ट खाद है
2: जी,
1: इसके अलावा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष मान के चलो जैसे कि हमने धान उगाया, धान का ऊपर का हिस्सा हमने अनाज ले लिया, पुआल रह गया उस, ठीक है, अब जो वो है हम उसको सुधारे तो बेकार की चीज है, नहीं, जितना पौधे ने जो पोषण उसमें से खेत में से लिया है लगभग उसका 50-60% जो भी उसने उसमें से तत्व लिए वो उस चीज में उपलब्ध होते हैं। 30-40% सिर्फ अनाज में गए हैं, बाकी पौधे में, अगर वह पौधे का जो अवशेष है जिसको हम फेंक रहे हैं, अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो जो मिट्टी उसमें मिला दिया, तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा। और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जाँच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाएं, जो हमारी जो उर्वरक जो आयातित उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए, या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए, और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए, जो कि एक तरह से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है, वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें, जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़ें। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो जो हमारे उर्वरक हैं या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए, और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे, तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है, हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगे, अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं, उनसे मिट्टी की जांच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है, लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं, और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
0: इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग
1: घोलें और पानी में अच्छे से घोल के फिर हम उसका छिड़काव, उस समय ये

0: क्यों आवश्यक है या इसकी क्यों?
1: धरती माता को बचाना, हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
2: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर आपका स्वागत है एक बार फिर से,
3: और इसी बात के साथ बिना किसी देरी, घुलनशील पोषण क्या है और इसके लाभ क्या है इसके बारे में बताइए।
0: जी हाँ, घुलनशील पोषण मतलब ऐसे मान के चलिए कि जो भी रासायनिक उर्वरक या और उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं वो स्थूल रूप में होते हैं, दाने के रूप में होते हैं या चूरे के रूप में होते हैं और उनको हम अपने खेत में फैलाते बिखेरते मिट्टी में मिलाते हैं। लेकिन पोषण की अन्य तकनीकियां भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि हम उनको घोलें और

हैं तो उनका बहुत सारा हिस्सा नष्ट भी हो जाता है, हवा में उड़ के है या जो पानी के साथ नीचे जो है आपका निकल जाता है, बह के चला जाता है। तो इन सारी जो स्थितियों से जो हम एक तरह से इस तरह का बचाव करें कि जो भी पोषण हम दें वो पौधे को सीधा मिले और पूरी पूरी मात्रा में मिल जाए। तो जो भी ये हमारे जो इस तरह के उर्वरक

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यह एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान भी उपस्थित है हमारे बीच में। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ AK सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सर के साथ बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं स्टूडियो में और ढेर सारी जानकारियां जो है किसान भाइयों आज आपको मिलने वाली है। तो आइए सर का स्वागत करते हैं FM मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? नमस्कार।
2: मैं बहुत अच्छा हूँ आनंद जी, और जो आपने स्वागत किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत जो धन्यवाद, और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार।
1: जी किसान भाइयों, आज का विषय रहेगा मक्का की फसल में कृषि कार्य। और
2: जी हाँ,
1: तो सबसे पहला प्रश्न होगा भारत सरकार की जो ये
2: पीएम प्रणाम योजना है,
1: पीएम प्रणाम योजना के बारे।
2: और पीएम प्रणाम खास तौर से जो हमारी खेती है, जो हम जो मतलब फसल उगाने का तरीका है
1: जी,
2: उसमें जो पोषण का तरीका है उसके उसका संज्ञान भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा लिया है। और उसमें प्रयास ये है कि जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है
1: जी,
2: वो संतुलित हो और सही ढंग से हो, जिससे कि उनका जो अतिरिक्त इस्तेमाल है या सही ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे हमारी खेती बचे, नंबर एक। तो उसका ये उद्देश्य है
1: जी।
2: तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम NPK बोल देते हैं। बहुत से NPK ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं है कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा कर रहे हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी हो। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
1: जी,
2: कंपोस्ट खाद है
1: जी,
2: इसके अलावा जो

0: अभी।
1: अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो जो मिट्टी उसमें मिला दिया तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा। और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जांच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाएं, जो हमारी जो उर्वरक जो आयतित उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए, या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए, और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए, जो कि एक तरह से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है, वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें, जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़ें। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो जो हमारे उर्वरक हैं या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे, तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगे अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं, उनसे मिट्टी की जांच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है, लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं, और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
2: इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
1: आनंद जी, वो जो संबोधन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा। अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं, उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
2: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
0: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
2: बहुत ही अच्छी लगी मुझे जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर आपका स्वागत है एक बार फिर से,
3: और अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मक्का की फसल में कृषि कार्यों में जिसे आज का विषय है, इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल होगा कि मक्का की फसल के बारे में आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: जी हाँ, मक्का की फसल आनंद जी,
3: जी
1: पहले होता था कि एक इसी सीजन में हम मक्का की खेती करते थे,
3: बिल्कुल
1: खरीफ में
3: जी।
1: रबी में कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे कि अगर हम जाए तो दक्षिण का हिस्सा कह लें, बिहार का कुछ हिस्सा था वहाँ होती थी, बाकी किसी अन्य क्षेत्र में रबी में मक्का नहीं होता। जायद में भी बहुत कम मक्का चारे वगैरह के लिए उगाते थे, अनाज के लिए नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में मक्का एक बड़ी अहम फसल हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए हो गई है और बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है, बहुत अच्छी फसल भी हो रही है
3: जी।
1: और वो होता है आपका जो है मतलब एक तरह से मक्के को जो हम सोचते थे खरीफ में होती है, लेकिन अब वो जायद सीजन में भी अच्छी मक्का होने लगी है और खरीफ में तो होती है। तो इसके उपयोग के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इसकी रोटियां बनती हैं, इसके कॉर्न बनते हैं
3: जी,
1: और बहुत सारी खाने की सामान जो कि जो है इससे तैयार होते हैं मक्का से, एक तरह से एक बहुत अच्छा भोजन, स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन है हम सबके लिए मक्का
3: जी।
1: तो एक तो ये हो गया, लेकिन इसका औद्योगिक भी इस्तेमाल है, इससे स्टार्च भी बनाया जाता है, इससे तेल भी बनाया जाता है, जैसे इथेनॉल हम बोल देते हैं, फ्यूल है, इससे जो कैटल फीड भी बनाया जा सकता है, इससे जो हमारे पोल्ट्री फार्म है जो मुर्गियां हैं उनके लिए खास तरह का भोजन तैयार किया जाता है। तो मक्का के बहुत सारे एक तरह से बोले जो खाने में इस्तेमाल है, औद्योगिक इस्तेमाल है और अन्य और भी ऐसी चीजें हैं जहाँ इसके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे वो होने लगे हैं, इसीलिए इसकी मांग भी अधिक होती चली जा रही है और अच्छे भाव भी किसानों को मिलते हैं और थोड़े समय में लगभग करीबन 3 से 4 महीने के बीच में ये फसल जो तैयार हो जाती है, अच्छे बीज उपलब्ध हैं आज की तारीख में जो अच्छा उत्पादन देते हैं और उर्वरक तो जो उपलब्ध है ही है और अच्छे अच्छे जो यंत्र भी उपलब्ध है, इन सारी चीजों को देख के कहें तो मक्का आज के समय में भारतवर्ष की एक बहुत ही अहम फसल हो रही है और किसान इसको अच्छे से उगा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसको और अच्छे ढंग से करें क्योंकि अभी और अधिक उत्पादन लेने की संभावनाएं है। मक्का की जो उत्पादन अभी ले रहे हैं उससे और भी ज्यादा उत्पादन आने वाले समय में हम ले सकते हैं, ऐसी वैरायटी हमारे पास आ रही है, हमें और अच्छी तकनीकी के साथ इसको उगाना होगा और हम उगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा तो उसका लाभ भी हमें होगा और आर्थिक रूप से हमारे किसान संपन्न हो।
3: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। सर इसी बीच एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मक्का की फसल में पोषण प्रबंधन के बारे में थोड़ा बताइए किसान हाँ, भाइयों को।
1: पोषण प्रबंधन के लिए जैसे कि आपने अभी मैंने कहा था आपको कि बहुत अच्छा उत्पादन होता है और आगे भी उत्पादन की संभावनाएं हैं, तो जब आप उत्पादन ले रहे हैं तो उसी अनुपात में आपको उसको पोषण भी देना, उसी अनुपात में खेत का स्वास्थ्य भी आप अच्छा रखना होगा, उसी अनुपात में आपको आसपास का वातावरण भी अच्छा रखना। तो अब मैंने ये 3 चीजें कही, आप कहेंगे अरे पोषण हो गया, वातावरण क्या होता है, फिर आपने कहा होगा कि खेत का स्वास्थ्य क्या होता है। खेत स्वस्थ है तो वो उसमें जो भी आप उर्वरक इस्तेमाल करेंगे उसका पौधा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा, और खेत स्वस्थ नहीं है वो उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान के चले कोई आदमी अगर एक बीमार है, उसको हम अच्छा खाना भी दे रहे हैं, एक तो पहले वो हजम नहीं कर पाता और फिर अगर हजम नहीं कर रहा तो उसके शरीर को भी नहीं लगे, तो उसका स्वस्थ अगर है तो जो भी भोजन देंगे उसको अच्छे से हजम होगा और उसके शरीर को लगेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए खेत का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आसपास की आबोहवा से अर्थ ये है कि हम अपने खेत के आसपास पेड़ पौधे भी थोड़े बहुत रखें जिसमें कि जीव रहें, बहुत से पंछी रहें और सभी का एक तालमेल उसमें रहा है। ऐसा क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मक्के की जब फसल होती है तो जब हम खेत में हली चला रहे हैं उस समय पर बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि हमारी फसल के लिए उतने अनुकूल नहीं है, तो वो जो पंछी हैं उनका सेवन करते हैं और एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, ये आप कर सकते हैं। और दूसरा उर्वरकों का या जो पोषण का है, जैसे पोषण उर्वरक नहीं है, खाद के कट्टे ही नहीं है जो हम दुकान से लेके आ रहे हैं। पोषण हमारे खेत पे भी उपलब्ध है, जो भी फसल अवशेष है वो भी पोषण है। अगर हम उनको खेत में अच्छे से सड़ा के मिट्टी में अगर ऐड कर देंगे तो उनसे भी बहुत पोषण मिलता है। और ये मैं कोई किताबी बात नहीं कह रहा, जो किसान खेती कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। जैसे कहीं कहीं होता है कि अरे साहब मक्का काटी उसके बाद समय नहीं मिला कि उसको उसके जो अवशेष हैं उनको अलग किया जाए, तो हमने तो क्या किया उसको खेत में ही मिला दिया और उसका असर हमने अगले फसल में देखा कि हमारी अगली फसल बहुत अच्छी हुई। आप देखिए कितना बड़ा अनुभव है उनका खुद का। किसान वैज्ञानिक हमेशा से कह रहे हैं कि फसल अवशेषों में बहुत पोषण होता है, तो उर्वरकों के साथ साथ फसल अवशेषों को खेत में मिलाएं। अब ये बात मैंने कुछ सैद्धांतिक बातें कही थी
3: जी,
1: अब आपको करना क्या है। अक्सर बोलते हैं कि भाई यूरिया डालना है हमें मक्का में, तो जो पहले आपने खाद दे दिया वो ठीक है, अच्छी बात है। जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, जब उसमें मंजरी, ऊपर वाली मंजरी की बात कर रहा हूँ, निकलना शुरू हो, उस समय एक एकड़ में लगभग 30 से 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में लगाना। यूरिया लगाते वक्त आपने सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि अगर खेत पे पानी गिरा है, समय पर बारिश हुई है, तो भीगे पत्तों पे यूरिया का छिड़काव न करें, क्योंकि वो पत्ते के ऊपर जो रह जाएगा और पत्ते को सड़ा देगा और फसल को नुकसान होगा। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो अपना प्रयास करें कि मिट्टी के ऊपर ही गिरे, फसल के ऊपर नहीं गिरे। उसके लिए फसल आपने लाइन में लगानी चाहिए, उसमें थोड़ा अंतर रहेगा, आप जाके भी कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, तो एक आप एक्सपेरिमेंट आप अपन से कर सकते हैं, एक खेत में आप ऐसे डालें और एक एकड़ में आप स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के लिए 100 लीटर पानी में और एक अगर आप देखें तो एक एकड़ जो खेत के लिए इस अवस्था पर 150 लीटर पानी आप ले सकते हैं या 200 लीटर ले सकते हैं। उसमें अगर 100 लीटर पानी के हिसाब से 2 लीटर यूरिया मिला लें, 2 लीटर का 2 किलो के हिसाब से आप यूरिया मिलाएं, थोड़ी जिंक मिला लें। जिंक बहुत फायदे का काम करती है मक्का के लिए। उसमें जिंक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वास्थ्य भी पौधे का अच्छा होगा और उपज भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो यूरिया जिंक मिलाएं, जैसे 2 किलो 100 लीटर में यूरिया मिला लिया और करीब करीब 1 किलो जिंक मिला लें, मिला के आप स्प्रे करके दें। स्प्रे ऐसा करिए कि उसके बाद लगभग करीबन 8-10 घंटे बारिश न हो, पत्ते उसको अच्छे से सोख लेंगे। और स्प्रे करने के लिए जो स्प्रे की जो आप है उससे फुहारा ऐसा न बने, बूंद बूंद न बने, वैसा धुएं जैसा हो जाए, तो वो अच्छे से पौधों पे ओस की तरह समा जाएगा। और जब ये स्प्रे करें तब थोड़ा प्रयास ये करें कि थोड़ी धूप निकली हो, जिससे कि दाग खुल जाता है, उसके अंदर छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं और वो अच्छे से उसको सोख लेते हैं। ये भी करके देखिए, बस अंतर देखिए, इससे फायदा क्या होगा, बहुत कम यूरिया लगेगा, पौधा अच्छा विकसित हो, क्योंकि जो आपकी 40-45 दिन की मक्का होती है तो उसके पत्ते काफी चौड़े हो जाते हैं और वो अच्छे से पानी को सोखने में सक्षम होते हैं। पानी सोख रहे हैं तो उसके साथ आपने उर्वरक दिया है, पोषण दिया है, उसको भी सोखेंगे, उनका अच्छे से विकास होगा। तो एक तो ये यूरिया के बारे में बात होगी, फिर उसके बाद आप अगर चाहें तो आपको कुछ लगता है कि और पोषण आपको देना है तो आप और भी कोई उत्पाद हैं उनका कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिंक और यूरिया अगर आप देंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिले।
3: बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से इस विषय पे जानकारी दी। और इसी बीच एक और प्रश्न रहेगा कि मक्की फसल में सिंचाई एवं जल निकासी के बारे में थोड़ा बताएं।
1: हाँ, सिंचाई के बारे में यह है कि शुरुआती जो अवस्था है उसमें नमी बनाए रखें
3: जी,
1: नमी हमेशा ही रहनी चाहिए, लगभग नमी की आवश्यकता उस समय जो कम हो जाती है जब पौधे में दाने लगभग एक तरह से पकने की तरफ आ जाते हैं, उस समय हमें पानी की जरूरत नहीं होती, पौधा भी नहीं लेता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर पानी जो है इंद्रदेव की तरफ से आ रहा है, बारिश हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खेत के आसपास आप जाते हैं आपको मालूम पड़ जाता है फसल सूख रही है नहीं सूख रही है, पर जो फसल हरी है, जो हरी भरी है और नमी है। तो अगर कम पानी है तो आप हल्की सिंचाई करें, सिंचाई ज्यादा न करें। ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आपने पानी बहुत लगा दिया और अगले दिन अच्छी बारिश होगी तो उसमें पानी रुक जाएगा खेत, और रुका हुआ पानी मक्का को नुकसान पहुंचा। तो सिंचाई का प्रबंध करें उतना, जिससे कि खेत में नमी बनी रहे, और पानी निकास का भी कुछ अरेंजमेंट रखें जिससे कि अगर ज्यादा पानी हो जाए तो वो उस पानी को निकाल सके। वो पानी निकालने का तरीका ये तो एक तो ये है कि आप खेत से बाहर निकालें। अगर ऐसा नहीं है तो जहाँ ढाल है खेत में, ढाल की तरफ नुक्कड़ की खड्डे में एक जो खड्डा खोद दे, और वो पानी उस खड्डे में एक जगह ही तो इकट्ठा होगा, सारे खेत में तो नहीं इकट्ठा होगा, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो उससे सारी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि आपके 100-200 पौधे खत्म हो, लेकिन पूरी फसल आपकी बच जाएगी। तो पानी निकास की ये व्यवस्था आप अवश्य करें खरीफ मौसम में, क्योंकि ज्यादा बारिश भी हो सकती है, और जो अगर कम है तो आप सिंचाई कर ही देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है सर,
3: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी थोड़ा बताइए।
1: हाँ, खरपतवार के बारे में जैसे मैंने कहा था कि खरपतवार अगर है तो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं,
3: बिल्कुल,
1: उसका भोजन खा लेते हैं और उसके विकास को अवरुद्ध करते हैं मुख्य फसल। तो इसके लिए वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि आप हाथ से निकालें, अगर कोई छोटा रकबा है आपके, आपने बहुत ज्यादा मक्का नहीं लगाई और आपके पास श्रम उपलब्ध है, तो खुरपी से अगर आप करें गुड़ाई तो वो सबसे उत्तम होती है। उसका फायदा ये, एक तो पौधा निकला, दूसरा फायदा ये है कि खेत को हवा लग गई, क्योंकि खेत का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हवा लगनी चाहिए, उसको लग रही है अपने आप, लेकिन जो नीचे जड़ें हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उनको भी हवा लगने, जब हम इसमें जब मतलब जो खुरपी निकालेंगे तो वो खुल जाती है मिट्टी, अच्छे से हवा लगती है, उनका अच्छे से विकास होता है और वो ज्यादा पोषण ले पाती है फसल, तो पौधा सशक्त बनता है। तो खुरपी से करें अगर संभव है। एक इसका उपाय है, एक दवा आती है हमारी उत्तम बोन के नाम से, इसका करीबन 100 से 125 ml आप लें, मात्रा 1 एकड़ के लिए है, और करीबन 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसको छिड़कें, और इसको छिड़कना कब है ये आपको ध्यान रखना है, जब फसल आपकी जैसे 20 दिन की हो उस समय पे आपको इसका छिड़काव करना है। तो ये लगभग जो खरपतवार है उनको रोकने का प्रयास करेगी, ये पहली अवस्था होगी। उसके बाद भी हो सकता है कुछ खरपतवार आपको दिखे, तो जब आपको समय मिले खुरपी से निकलवाइए श्रम के, उसके बाद फिर दवा का इस्तेमाल न करें, कोई उससे लाभ नहीं होगा, खर्चा होगा आपका। और मैंने कहा खरपतवार नाशी का सिर्फ एक बार ही प्रयोग करें, बार बार प्रयोग खेत में न करें, इससे आप बचें।
3: एक प्रश्न और है मेरे पास कि मक्का की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में अगर आप जानकारी दें तो।
1: हाँ, कीट इसमें आते हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं मक्का का बोटा है, हमने खोल के देखा तो उसमें इल्ली दिख जाती है, तो उतने बीच में उसने दाने खा लिए, वो दाने खत्म हो जाते तो दूसरे खाती है।
3: जी जी।
1: इसके अलावा जो उसका पौधा है उसमें भी इल्ली पाई जाती है, इल्ली का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसको हम अगर कहें तो एक तरह से बोल देते हैं लट बोल देते हैं, है जी। इसके अलावा उड़ने वाले चैपा वगैरह होता है, ये भी आसरा है। तो जो इल्ली वाले हैं उसके लिए दवा एक आती है हमारी उत्तम प्योटा, 60 ml दवा ले लें, 200 से 300 लीटर पानी ले लें। पानी ज्यादा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आकार काफी बड़ा होता है फसल।
3: ओके।
1: तो ये पानी में आप घोलें और इसका स्प्रे करें, इससे लगभग इल्ली से संबंधित जो जे हैं वो करीब करीब आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और स्प्रे करने के लिए, क्योंकि मक्का के खेत में आप घुसेंगे कैसे, बड़ी समस्या है क्योंकि बड़ी होगी, तो स्प्रेयर जो लें वो आप पावर स्प्रेयर है तो उसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। आपके पास नहीं है, किसी और किसान के पास है, आजकल रेंट पे मिलते हैं, लोग करते भी हैं, ट्रैक्टर के पीछे अपनी टंकी लगा के ले जाते हैं, एक चार्ज लेते हैं आपसे। ध्यान यही रखें कि उस जो भी स्प्रे करने आ रहा है उससे पहले बात कर लें कि टंकी साफ करके लाए, उसमें किसी भी खरपतवार नाशी की कोई अंश नहीं होना चाहिए, वो अगर हुआ तो पूरी फसल को खत्म कर सकता है उस टाइम पे, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। साफ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पानी में मिट्टी है तो दवा का असर कम हो जाता है। अच्छे से कराएं, जितनी मात्रा कही जा रही है उतनी प्रयोग करें, कोई और चीज इसमें न मिलाएं, क्योंकि आप दुकान पे जाते हैं दुकानदार कुछ और दे दे, हमें लगता है चलो एक बार में ही सब कर दो, ऐसा लोभ न करें। हाँ, आपको अगर कोई रोग है तो फबून नासी आप इसके साथ जरूर मिला सकते हैं, रोग में जैसे कि आपकी धारियां बन जाती हैं, लीफ ब्लाइट रोग होता है, इसके अलावा चारकोल राट रोग होता है, आपका रतुआ रोग होता है, ये बहुत अलग अलग रोग होते हैं हैं जो कि पत्तियों पे आपको देखने मिलते हैं वो जरूर आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एक दवा आती है VRM 45 है, एक मैंजे में हमारी दवा। ये बड़ी सटीक जो खरपतवार नाशी है ये लगभग सब रोगों में थोड़ा बहुत काम करेगी और ठीक कर देगी। इसकी दवा 600 से 800

0: ग्राम में पानी की मात्रा उतनी रख सकते हैं। और इसका इस पे अगर रोग है तो, अगर रोग नहीं है, फसल आपकी रोग से स्वस्थ है, सिर्फ कीड़े हैं, तो कीटनाशी का प्रयोग करें। और रोग के लक्षण दिखें तो इसका आप स्प्रे करें तो वो सबसे अच्छा होगा। हालांकि आजकल जो बीज आप इस्तेमाल करते हैं उनका पहले उपचार होके आता है, रोग रोधी होते हैं, तो आमतौर पर रोग आने की संभावना कम रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको रोग के जो मतलब अगर देखें लक्षण, तो कोई भी फफूंदनाशी जो मैंने आपको नाम बताए, मेंजिम है, वीरएम 45 है, इनमें से कोई एक दवा आप ले सकते हैं। वीरएम 45 है, इसकी करीबन 800 ग्राम दवा की आवश्यकता होती है। मेंजिम 400 ग्राम दवा की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा आप 300 लीटर के आसपास रख सकते हैं। ये रोग को नियंत्रण करने के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन रोग के नियंत्रण में जो आपको विशेष चीज ध्यान रखनी है, रोग की शुरुआत अवस्था में ही करें। ऐसा नहीं बहुत रोग आ गया जैसा तो हम स्प्रे करेंगे। उसमें क्या है कि जो जो आपका पौधा है जिसमें रोग आ गया और जो रोग से खत्म हो गया हिस्सा, वो फिर ठीक नहीं होता। रोग को रोकता है वो आगे के लिए, लेकिन जो उसका एक तरह से नुकसान हो गया उसको वो उल्टा नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता। तो रोग दिखे तो फौरन आप स्प्रे करिए, उसमें लेट नहीं होइए। और इनका बार बार स्प्रे न करें, इंतजार करें ठीक होने का। और ठीक होते हैं अच्छी दवा लाएं। तो मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि दुकान से जब भी दवा लें, रसीद जरूर लें। बिना रसीद के कोई दवा नहीं लिखें। उसमें वो दवा का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, रेट लिखेंगे और कितनी जो मात्रा आपको दी गई है वो देंगे। दूसरा, आजकल जो ये जो भी पैकिंग होती है उस पे कस्टमर केयर नंबर होता है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए उससे आप पूछ सकते हैं, फोन करके दुकानदार से भी पूछ सकते हैं, दुकानदार भी आपको जानकारी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लगभग अब हम अपने अंतिम चरण की ओर हैं, प्रोग्राम की जो है समाप्ति का समय हो गया है। लेकिन जाते जाते एक और मेरा अंतिम सवाल रहेगा, मक्का की फसल में रोग प्रबंधन के बारे में थोड़ा जानकारी।
0: हाँ, रोग प्रबंधन के में जैसा मैंने आपको कहा था, क्योंकि मैंने कीट प्रबंधन के साथ कह दिया जी, जी। रोग के लक्षण दिखाई दें, वैसे ही कोई न कोई फफूंदनाशी का आप प्रयोग करें तो उससे आप फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, उसका लाभ मिल सकता है। आजकल बीज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उपचारित बीज होते हैं तो उसमें संभावनाएं उतनी अधिक नहीं रहती कि रोग आएगा। लेकिन फिर भी रोग आता है तो फफूंदनाशी का आप प्रयोग करें। फफूंदनाशी में चंबल फर्टिलाइजर के एक मेंजिव है, एक वीरएम 45 है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीरएम 45 800 ग्राम के आसपास है और जो 300 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करें। मेंजिव है वो 400 ग्राम के आसपास है। इस तरह स्प्रे करके रोग आने के लक्षण दिखाए उसी समय पर आप इसका स्प्रे करके रोगों की रोकथाम कर सकते हैं।
1: अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना इम्पोर्टेंट समय आप हमारे स्टूडियो में निकाल कर आए और हमारे किसान भाइयों के लिए तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर, तमाम बिंदुओं पर आपने जो विस्तार से चर्चा करी। तो आपका एफएम मुरादाबाद और आरजे आनंद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। चलते चलते कोई एक संदेश जो आप सभी को देना चाहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो मक्का जो हमारी फसल है ना साहब
1: जी,
0: ये एक पत्ती वाली फसल है, मतलब सकरी पत्ती वाली
1: जी जी।
0: अगर इसके साथ चौड़ी पत्ती वाली फसल हम उगाते हैं तो काफी फायदा होता है। उससे एक तो क्या है कि खरपतवार रोकने में सहायता मिलती है, दूसरा बहुत सारे जैसे कि जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं, जैसे कि मक्का के साथ आपने उड़द उगाई, मूंग उगाई बीच में जो कि उसके फारे हैं, तो वो उड़द और मूंग के जो पौधे हैं वो जब 30-1 दिन के लगभग हो जाते हैं तो वो हवा से ही नाइट्रोजन लेने लगते हैं, जो हमें यूरिया से, मतलब एक तरह से हम मान के चलें कि वो यूरिया तैयार करने लगते हैं। तो उस फसल में हमें नाइट्रोजन अलग से देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, फ्री में ही हमें खाद मिल जाता है। इसके अलावा मक्का के साथ आपको दूसरी चीज भी मिल रही, फसल भी मिल रही है। फिर जब आप जो मतलब मक्का निकाल लेते हैं तो जो उड़द की है आपने उसकी फलियां निकाल ली, तो उसके फसल अवशेष को जब आप खेत में मिलाएंगे तो खेत को और ताकत बरकत जो अच्छा करते हैं, पोषण करते हैं
1: जी जी।
0: उसके बाद जो भी आप अगली फसल लेंगे उसमें उर्वरक की मात्रा कम कर सकते हैं, फिर भी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम में आए और विशेष जानकारियां साझा करी। श्रोताओं, आप ऐसे ही सुनते रहेंगे एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ वरिष्ठ प्रबंधक एके सिंह जी स्टूडियो में मौजूद थे, आज तमाम सारी बातें कर रहे थे और उम्मीद करता हूं कि किसान भाइयों आपको ये जानकारी तमाम महत्वपूर्ण लगी होंगी और आप इनको जरूर अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए, थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपको एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर और नए प्रोग्राम्स में, तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: कोई मिल गया,
6: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाए कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियों और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जाएगी।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं।

0: रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी, तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधिकारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाईयो काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात, गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
2: जब ये स्वाद देने के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
3: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
2: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका नया कार्यक्रम सोच बदलो और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। आज का विषय शायद आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। कभी आपके मन में किसी को देखकर ऐसा विचार आया है कि यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, इसके नंबर मुझसे ज्यादा है, इसकी शादी हो गई, इसके पास अपना घर है, ये मुझसे ज्यादा सफल है। और फिर हम बिना जाने अपने जिंदगी को किसी और की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या दूसरों से तुम हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है या अंदर ही अंदर मान दबाव पैदा कर देती है। तो मेरे साथ में रीना भी है यहाँ पर और रीना से भी कनेक्ट करते हैं। तो रीना बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं।
1: मैं आज रीना और आज इसी टॉपिक पर हम खुलकर बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी यात्रा किसी की यात्रा से अलग है, इसीलिए आपकी रफ्तार भी अलग हो सकती है। तुलना होती क्यों है दोस्तों? तुलना कोई नई चीज नहीं है। बचपन में देखो शर्मा जी के बेटे के कितने नंबर आए हैं, स्कूल में

0: ये मेहनत पर निर्भर करता है, आप जैसा मेहनत करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए मुझे तो ये लगता है श्रोताओं कि देखिए, किसी से हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलस फील नहीं होना चाहिए। उसको उसकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। बेटर ये होगा कि आप दूसरों को बारे में कम सोचे, खुद के बारे में ज्यादा सोचे, खुद को ज्यादा ग्रो करे, खुद पर ज्यादा काम करे। जब आप खुद पर ज्यादा काम करेंगे तो शायद आप जितना समय दूसरों के बारे में सोचने के लिए लगा रहे ना, उससे ज्यादा समय आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप उससे भी ज्यादा ऊंची सफलता पर और ऊंची ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसीलिए अपने आप से हमेशा मैं कहती हूँ कि वादा करिए, दूसरों के बारे में आप जितना सोचेंगे ना, उतना ही आपको टेंशन होएगा, डिप्रेस होंगे आप, बीमारियां बढ़ती जाएगी बॉडी में। इसीलिए दूसरों के बारे में कम सोचिए, खुद के ऊपर ज्यादा काम करिए।
1: और श्रोताओं से मेरा सवाल भी है रीना, मैं अपने श्रोताओं से पूछना चाहती हूँ, आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? काम और नौकरी, पैसा, सुंदरता, रिश्ते, रहन सहन या सफलता? मुझे संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तुलना कब प्रेरणा बनती है? अब सवाल ये है कि क्या तुलना हमेशा गलत होती है? नहीं, अगर किसी को देखकर आपके मन में आए, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, तो ये तुलना नहीं प्रेरणा है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, ये तुलना मानसिक दबाव बन जाती है। फर्क बहुत छोटा है लेकिन सोच बदल देता है। प्रेरणा कहती है मैं भी कोशिश करूंगी, और तुलना कहती है मैं उसके जैसी क्यों नहीं। बस सोच का यही छोटा सा फर्क हमारी पूरी भावना बदल देता है। तो दोस्तों, अभी और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक बार फिर से और कनेक्ट हो गए श्रोताओं आप सभी के बीच। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और हम शो कर रहे हैं यानी कि सोच बदलो। मोस्टली आप सभी आनंद को सुनते हैं ना, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ, लेकिन आज मैं और खुशी आए हैं, यानी कि पहली बार ऐसा शो हो रहा है कि हम दो सोच बदलो में आ रहे हैं ना,
1: वरना हम अक्सर महिला मंच में ही सुनाई देते हैं।
0: हाँ, अरे हमने सोचा कि जब मौका मिल रहा है तो आ ही जाते हैं।
1: बिल्कुल, कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक माध्यम और तुलना। अब सामाजिक माध्यमों की बात ना हो तो आज का विषय अधूरा है। मोबाइल खोलिए, किसी की घूमने की तस्वीरें, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी, किसी का सुंदर घर, और हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगे। तो श्रोताओं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको दूसरों पर। और याद रखिए, सामाजिक माध्यमों पर हर किसी की कहानी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। इसीलिए किसी के कुछ सेकंड की वीडियो देखकर अपनी पूरी जिंदगी को मत परखिए। आप नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है, और दूसरे लोग भी आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। जैसा कि मैंने आप सभी को बताई है, श्रोताओं, का चमकता चीज सोना नहीं होता है, वो छोटे छोटे क्लिप होते हैं। और आजकल एडिटिंग इतनी स्मार्ट हो गई है ना कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर होते हैं ना, झोपड़ी वाले, उसको भी ऐसे महल की तरह एडिट कर देंगे ना, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि वाकई में ये घर कैसा चमकता है, कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो हमें इसीलिए वीडियो पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूं मैं खुशी?
1: आपने जो कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, एक्चुअली दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सब सुपर फास्ट हो गए हैं आज के टाइम में। तो कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो लाइक हमारी, हम खुद अपनी लाइफ से ही ले लेते हैं एवरीवन, कि हम भी वो जिंदगी के ना उसी मोमेंट को कैप्चर करते हैं जो हैपनिंग वाले होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्ष होता है, जो तकलीफें होती हैं, जो मेहनत होती है, हम कई बार उसको स्किप कर देते हैं, राइट ना? तो और इंसान उसी को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत इजी है, हम भी कर सकते हैं।
0: ऐसा नहीं होता है,
1: उसके पीछे बहुत मेहनत होती है।
0: अब तुम यही देख लो, पता क्या बोल देंगे, अरे शर्मा जी का लड़का, देखो उसकी नौकरी लग गई है। पर कोई ये नहीं कहता यार वो पढ़ा कैसे होगा,
1: उसने कितनी स्टडी की है, रात दिन जाकर पढ़ाई की है।
0: हर कोई देता है तेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है यार, लेकिन लाइफ के पीछे क्या खिचड़ी पकी है
1: वो हर कोई नहीं समझ पाता है। और मेरा एक सवाल भी है अपने श्रोताओं से, क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कम है? अगर हाँ या ना, मुझे संदेश करके जरूर बताइएगा, मुझे मैसेज जरूर भेजिएगा कि कभी या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, हाँ या ना में अपना मैसेज हमें जरूर पहुंचाइएगा एवरीवन। एंड अपनी कीमत किसी और की सफलता से तय मत कीजिए। दोस्तों, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम किसी और की उपलब्धि देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, लेकिन आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कोई आपसे आगे है या पीछे। आपकी कीमत आपकी मेहनत, आपके संस्कार और आपकी इच्छाओं, आपकी अच्छाइयों और आपके संघर्ष से है। हो सकता है कोई आपसे पहले सफल हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। किसी की कहानी 10वां अध्याय चल रहा है और आपकी कहानी का 4वां, लेकिन किताब दोनों की अपनी अपनी है। अभी देखो बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम कनेक्ट कराने वाले हैं, रूबरू कराएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक प्यारा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए काम से। लेकिन हम काम नहीं ले रहे, हम आपको एक म्यूजिकल ब्रेक सुनवा रहे हैं। प्यारा सा गाना भी तो होना चाहिए ना, जो माइंड को एकदम फ्रेश कर दे। चलिए सुनते हैं।

0: जी एक बार और आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए श्रोता, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है सोच बदलो शो में। और देखिए सोच बदलना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप सोच रहे हैं कि अभी भी हम पीछे हैं, तो आप यहाँ पर गलत है। अब कल ही मैं एक अंकल से मिली जो कि लाइव बता रही हूँ मैं, उनका मोटिव है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करे, आगे बढ़े, सबसे बातें करे। लेकिन एक जो उनकी सोच है, मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गई उनकी सोच पर, उनका कहना ये है कि 12वीं के बाद बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, यानी कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब आप सोचिए कि तुम पढ़ाना भी चाहते हो और ये भी चाह रहे हो कि बच्चों की शादी यानी कि लड़की की शादी है वो 12वीं के बाद कर दे, और उनका ये भी कहना था कि शादी के बाद पढ़ लेगी। अब भैया हर फैमिली ऐसी नहीं होती कि पढ़ने शादी के बाद अलाउ कर दे कि पढ़ो, बहुत से ऐसे हो जाते कि घर के कामों में इतने बिजी हो जाते कि अपने बारे में आगे के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है आगे, आप भी अपना सोच बदलिए, बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि लड़कियां आज के टाइम में हर क्षेत्र में आगे है, वो पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बस अपनी सोच को बदलने की हमें जरूरत है। सो इसी सोच बदलो में अब हम बात कर रहे हैं परिवार की तुलना। अब एक ऐसी तुलना की बात करते हैं जिस सामना बहुत से लोग बचपन से ही करते हैं, परिवार में होने वाली तुलना। उसके बच्चों को देखो, उसकी बेटी कितना अच्छा कर रही है, उसका बेटा सरकारी नौकरी में है, तुम कब कुछ करोगे। कभी कभी ये बातें हमें आगे बढ़ने के लिए कही जाती है, लेकिन सामने वाले के दिल पर बहुत दबाव डाल देती है। इसीलिए माता पिता और परिवार के सदस्यों से भी एक छोटी सी गुजारिश है, बच्चों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उसकी आज की तुलना उसके कल के लिए कीजिए। कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ, बस यही प्रगति है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को ये मत कहिए कि उसके बच्चे को दो वो आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अरे हर बच्चे का जो मेंटेलिटी है वो अलग होता है। कोई बच्चा आपके जो बातें है उसको गहराई से लेकर डिप्रेस हो जाता है, जो कि वो जो कर भी रहा होता है ना वो भी नहीं कर पाता है। वो सोचने लग जाता है यार मैं अपने मन का करूँ या घर वालों के मन के करूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों की बातें हमें सुननी चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिसमें वो आपका बेटा बेटर कर सकता था, लेकिन आपकी बातें सुनकर उसने वो काम करा जो वो नहीं कर पाना चाहता था, लेकिन ना वो वहां करा ना यहाँ करा, तो इसमें लॉस आपका तो है ही, बच्चे का और भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे के भविष्य अभी बहुत आगे पड़ी है। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के ऊपर, कभी भी बच्चे के दिमाग के ऊपर ये तनाव मत डालिए, उसके इतने मार्क्स आ गए हैं, वो आगे बढ़ रहा है, वो ये कर रहा है। बस अपन बच्चों की सुनिए और उसी के साथ आगे बढ़िए, जो उसकी सपना है, जो वो करना चाह रहा है उसको अप्रिशिएट करिए, वो आगे बढ़ाइए, क्योंकि सुनिए और उसी के साथ आगे बढ़िए, जो उसकी सपना है, जो वो करना चाह रहा है उसको अप्रिशिएट करिए, वो आगे बढ़ाइए। क्योंकि कहते हैं ना पूरी दुनिया भी खिलाफ हो लेकिन जब फैमिली साथ होती है ना तो पूरा कायनात भी एक क्यों ना हो पार लगी जाती है। नहीं है तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना आपका बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों के साथ रहिए, मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल रीना, बहुत अच्छा बोला है आपने कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा वो भी कर पाता है जिसमें वो ना करने की हार मान लेता है। तो इसलिए फैमिली को हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और छोटी छोटी अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं, कुछ जीत हासिल कर रहे हैं, लाइक जैसे किसी गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर उनके मार्क्स अच्छे आए, उन्होंने छोटे छोटे घर में भी अगर आपकी काम में हेल्प की है तो उसके लिए भी आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए ताकि आगे चलकर वो और भी अच्छा करें। क्यों? और दोस्तों अभी नेक्स्ट हमारा जो मतलब सेगमेंट है वो भी हम आपसे अभी कनेक्ट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, खुद से तुलना करना सीखिए। दोस्तों आप सोच बदलो में एक आसान सा मंत्र याद रखिए, दूसरों से कम तुलना, खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देना। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी किसी बुरी आदत को सुधारने की कोशिश की? क्या मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंची हूं? अगर जवाब हाँ है तो पूरा विश्वास रखिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूरी दुनिया से दौड़ नहीं लगानी है, आपको बस अपनी यात्रा जारी रखनी है, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए दोस्तों इस शो को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर आपने कभी खुद की तुलना दूसरों से की है? सुंदरता, पैसा, नौकरी, शादी, रहन सहन, स्वास्थ्य या कोई टैलेंट? नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सच्ची बात मेरे साथ साझा कीजिएगा। और साथ में भी बात याद रखिए, आज अगर आपको अपने छोटी वाले रूप से एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे, बताएगा जरूर। चलो अभी लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर और भी बातें करनी है जो आप तक शायद आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना दे।

0: देखिए हम अपने वादे के अनुसार लौटकर आ चुके हैं आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है सोच बदलो और दोस्तों तुलना से बाहर कैसे निकलें ये हम आपको बताने वाले हैं। अब थोड़ी काम की बातें भी कर लें कि दोस्तों अगर आप बार बार दूसरों से अपनी तुलनाते हैं तो कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। पहली बात, सामाजिक माध्यमों पर से थोड़ा कम कीजिए, दूसरों की बातें अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाइए। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कीजिए। और चौथी बात, किसी और की सफलता देखकर जलने की बजाय खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। और पांचवी बात और सबसे जरूरी बात, अपनी जर्नी का सम्मान कीजिए, अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। प्रगति भी प्रगति होती है एवरीवन, जब आप कंटिन्यू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं तो वो भी एक जर्नी होती है, बड़ी खूबसूरत सी। कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जब सफर खूबसूरत होगा ना तो मंजिल भी यकीन मानिए बहुत ब्यूटीफुल होगी।
1: अब मैं एक मजेदार बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ। कभी कभी हम अपनी जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम सामने वाले की जिंदगी देखने में बहुत व्यस्त होते हैं। आपके पास जो है शायद किसी और का सपना हो, आपका परिवार, आपका घर, आपका काम, आपका हुनर, आपके अपने लोग, या फिर एक बस शांत सुबह। हर चीज को सफलता के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग हो सकती है। इसीलिए जो आप सोच रहे हैं, क्या पता उसका सपना हो, वो करना चाह रहा हो और आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप अपने सोच पर ये बात हाँ मत होने दीजिए कि वो क्या सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को बदलिए और खुद को ऐसा बदलिए कि

0: सामने वाला कहे वो जले ना, बस उसके दिमाग में इतना सोच आ जाए कि ये आगे बढ़ सकता है, भाई ये ऐसा बढ़ सकता है, तो मैं भी इसे प्रेरणा ले लेता हूँ कि भैया तूने कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया।
1: एक लाइन मुझे याद आ रही है, बड़ी खूबसूरत सी है, कि जब बदलते हैं नजरे तब बदल जाते हैं नजारे, जब बदलता है नजरिया तब बदल जाते हैं नजारे, जिंदगी में मानो तो सुखी सुख है, न मानो तो जिंदगी है दुख का दरिया।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं, एक और कहावत, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो जरूर आता है।
1: ये सर्कल चलता रहता है जिंदगी में, आप भी घूमते रहिए, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, जो होगा बेस्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है नेहा शर्मा की। नेहा एक साधारण सी लड़की थी, पढ़ाई में ठीक ठाक, घर में कामों में मदद करने वाली और अपने छोटे छोटे सपनों के साथ खुश रहने वाली। लेकिन नेहा की एक आदत थी, वह हर समय अपनी तुलना किसी न किसी से करती रहती थी। उसकी एक सहेली थी रिया। रिया की नौकरी न से पहले लग गई। नेहा ने सोचा, देखो रिया मुझसे आगे निकल गई। समय बाद रिया ने नई गाड़ी खरीद ली। नेहा ने फिर अपने मन में कहा, मेरे पास तो अभी पुरानी स्कूटी ही है। फिर रिया की शादी हो गई। अब नेहा को लगने लगा, उसकी जिंदगी तो पूरी तरह सवर गई है और मैं अभी तक वहीं खड़ी हूँ। धीरे धीरे नेहा अपनी जिंदगी की खुशियाँ भूलने लगी। वह सुबह उठती तो मोबाइल देखती, दूसरों की तस्वीरें देखती, किसी की नौकरी, किसी का घर, किसी की जर्नी, किसी की शादी, और फिर अपना जीवन देखकर उदास हो जाती। एक दिन नेहा अपनी माँ के साथ बैठी। माँ ने पूछा, बेटा आजकल तुम बड़ी चुप चुप सी रहती हो, क्यों? नेहा ने कहा, माँ लगता है सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने नेहा से कहा, बेटा तुम हर दिन दूसरों की जिंदगी का हिसाब रखती हो, कभी अपनी जिंदगी का हिसाब भी लगाया है? नेहा चुप हो गई। माँ ने आगे कहा, तुमने पिछले साल अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, पापा के इलाज के समय घर संभाला, अपनी पहली नौकरी के लिए कितनी मेहनत की, और सबसे बड़ी बात, तुमने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो, हो सकता है जिस जिंदगी को तुम कम समझ रही हो कोई और उस जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा हो। ये बात नेहा के दिल में उतर गई। उस रात उसने पहली बार मोबाइल एक तरफ रखा और कागज पर लिखा, मैं दूसरों से नहीं कल वाली नेहा से मुलाकात करूंगी। उसने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स नोट करनी शुरू कर दिए। अगले दिन अपनी पुरानी किताब निकाली, एक नया कौशल, एक नई स्किल सीखने का फैसला किया, अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया, और सबसे जरूरी, उसने दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद नेहा की जिंदगी अचानक बिल्कुल नहीं बदल गई थी, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हालात बदलना जरूरी नहीं होता, बस अपना नजरिया बदलना पड़ता है। नेहा की कहानी हमें यही सिखाती है, किसी और की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा मत रोकिए, किसी और की सफलता देखकर खुद को असफल मत समझिए, और अगर तुलना करनी ही है तो आज अपनी तुलना कल वाली अपनी तस्वीर से कीजिए, क्योंकि असली जीत तब है जब आप कह सकें, हाँ मैं कल से थोड़ी बेहतर हूँ। यही है आज की सोच बदलो की असली सोच। दोस्तों, आज की सोच बदलो से जाते जाते बस एक बात अपने साथ लेकर जाइएगा, दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा पर शक मत कीजिए। किसी की सफलता आपकी असफलता नहीं, किसी की खूबसूरत तस्वीर आपकी जिंदगी को कम खूबसूरत नहीं बनाती, और किसी का आपसे पहले मंजिल तक पहुंच जाना आपके अंदर से पहुंचने का परिणाम नहीं है। बस अपना रास्ता देखिए, अपनी मेहनत देखिए, अपनी प्रगति देखिए। कल अगर आप आज से एक कदम भी आगे बढ़े तो आप जीत रहे हैं। और आज की सोच बदलो का सबसे बड़ा संदेश, दूसरों से मुकाबला करना बंद कीजिए, अपने कल से मुकाबला कीजिए, क्योंकि असली मुकाबला दुनिया से नहीं आपके कल वाले रूप से है। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी, मिलते हैं अगले सोच बदलो में एक नई सोच और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से मत तोलिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी की नकल नहीं, आपकी अपनी बिल्कुल अनोखी कहानी है। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और मेरे साथ में है प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
4: क्या सपनों पर भी कोई उम्र लिखी होती है? क्या कोई सपना 20 साल की उम्र में खूबसूरत होता है और 60 साल की उम्र में बेकार? जी नहीं, बिल्कुल खुशी जी, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो बस सपने होते हैं, उन्हें देखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए।
1: और एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी है, उम्र की गिनती से कहां सपने मरा करते हैं, कुछ ख्वाब तो आखिरी सांस तक जिया करते हैं। लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, हम कहते हैं सपने उम्र से नहीं हौसलों से चलते हैं।
4: क्या बात कही खुशी जी आपने। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जो बस आपकी दिल को छू जाएगी।
1: एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के सपने पूरे करते हुए गुजार दिया।
4: दोस्तों, उनका नाम था सावित्री देवी, और सावित्री देवी की उम्र लगभग 62 साल थी।
1: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में उनका घर था, पति सरकारी नौकरी में थे, 2 बच्चे थे, जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस दौर की बहुत सी महिलाओं की होती थी।
4: जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह सबसे पहले उठना, घर संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए खाना बनाना, बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर, और दिन खत्म होते होते अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था।
1: लेकिन दोस्तों, सावित्री देवी के अंदर एक सपना था, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में वह स्कूल जाना चाहती थी, किताबें पढ़ना चाहती थी, उनके नाम के आगे एक डिग्री लगाना चाहती थी।
4: लेकिन दोस्तों, उनकी घर की परिस्थितियां ऐसी थीं कि 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। उस समय लोग कहा करते थे कि लड़कियों का इतना पढ़कर क्या होगा, और सावित्री जी चुप हो जाया करती थी। लेकिन उनका सपना चुप नहीं हुआ,
1: वो सपना उनके अंदर कहीं रह गया। फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, और धीरे धीरे उन्होंने भी मान लिया कि शायद अब पढ़ाई उनके लिए नहीं है।
4: एक दिन उनकी पोती जब स्कूल से घर आई, उसके हाथ में एक किताब थी। वह अपनी दादी से बोली, दादी ये कहानी आप पढ़कर सुनाओ ना।
1: सावित्री ने किताब हाथ में ली, उस सेकंड तक किताब को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा दादी को पढ़ना नहीं आता।
4: और दोस्तों, आपको पता है पोती ने मासूमियत से क्या पूछा?
1: लेकिन दादी, आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी क्या?
4: इस पर सावित्री देवी ने कहा कि तो थी बेटा, लेकिन बहुत थोड़ी।
1: पोती ने तुरंत कहा, तो आप कर लो।
4: बस यही 2 शब्द सावित्री देवी के दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। उसी रात सावित्री देवी काफी देर तक सो नहीं पाई। उन्होंने दोस्तों खुद से सवाल पूछा, अगर मेरी पोती 10 साल की उम्र में पढ़ सकती है, तो मैं 60 साल की उम्र में मैं क्यों नहीं पढ़ सकती?
1: अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे पढ़ना है। बेटा हंस पड़ा, उसे मजाक लगा, उसे लगा माँ मजाक कर रही है।
4: और दोस्तों, उसने कहा, माँ अब इस उम्र में पढ़कर क्या करूँगी? सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और कहा, शायद वही करूँगी जो मैं बचपन में करना चाहती थी।
1: और फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, पहले हिंदी की किताब, फिर अखबार, फिर अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द। उम्र 60 पार थी, लेकिन उनके अंदर की छात्रा शायद अभी भी 15 साल की थी।
4: दोस्तों सच में, शुरुआत में सपने आसान कहा माँ होती है। कभी वो अक्षर भूल जाया करती थी, कभी शब्द समझ में नहीं आते थे, कभी घर में कोई कह देता था। अब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है माँ? कभी पड़ोस की महिलाएं मजाक बनाया करती थी, अरे बहन जी आप परीक्षा देकर कलेक्टर बनोगी क्या?
1: सावित्री देवी हंस देती थी, लेकिन अंदर से वह और मजबूत हो जाती। उन्होंने एक कॉपी बनाई, उसके पहले पन्ने पर लिखा मेरा सपना और उसके नीचे देर हुई लेकिन खत्म नहीं।
4: जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या बढ़िया बात लिखी कि देर तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और सावित्री देवी ने आखिरकार पढ़ना सीख ही लिया, फिर लिखना सीखा और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली परीक्षा दी
1: और जब परीक्षा का परिणाम आया वह पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से नहीं लेकिन उनके लिए वो नंबर दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
4: क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ पास नहीं हुई थी, उन्होंने उस सोच को भी हरा दिया था जो कहती थी कि सपने सिर्फ जवान लोग देखते हैं।
1: उस दिन उनकी पोती ने उन्हें गले लगाकर कहा दादी मुझे आप पर गर्व है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, उन्होंने अपनी पोती से कहा बेटा जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि अब देर हो गई है।
4: जी हाँ दोस्तों, सावित्री देवी के ये शब्द बिल्कुल दिल को छू जाने वाले थे कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी में देर हो गई है। दोस्तों सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है।
1: कितनी बार हम खुद से कहते हैं ना अब मेरी उम्र नहीं रही, अब कौन नई शुरुआत करेगा, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो नौकरी की उम्र निकल गई, अब कौन मुझे मौका देगा। लेकिन जिंदगी हर बार हमसे यही कहती है। किसी ने कहा कि शुरुआत की कोई भी उम्र नहीं होती। आप इस पर राजी क्या कहना चाहेंगी?
4: खुशी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि चाहे आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं या 70 के हैं, दोस्तों अगर दिल में कोई सपना अभी भी जिंदा है तो उसे एक मौका जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी आवाज देते हैं, कुछ रास्ते उम्र के बाद भी बुलाते हैं। जो दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, दोस्तों जो आपकी दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ वो सपने उम्र नहीं बस हौसला मांगते हैं।
1: तो आज अगर आपके दिल में कोई सपना है जिसे आपने सालों से दबा कर रखा है तो उसे आज फिर से बाहर निकालिए, शायद वो सपना अभी भी आपका इंतजार कर रहा हो।
4: दोस्तों शायद वो सपना कह रहा हो चलो अब बहुत इंतजार हो गया, अब मुझे जियो, अब मुझे भी तो अपनी जिंदगी में का हिस्सा बनाओ,
1: मुझे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और सपनों को उम्र नहीं चाहिए सिर्फ हिम्मत चाहिए, क्यों प्राची?
4: बिल्कुल खुशी जी, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए अगर आंखों में आपके सपने बाकी हैं तो जिंदगी में आप अभी भी जवान हैं।
1: बहुत खूब। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा है कि सपनों की ना कोई उम्र नहीं होती है। और हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमें सुन रही हैं प्राची इस समय राइट नाउ, उनका भी कहीं ना कहीं सपना है कि मुझे भी टीचर बनना है, लॉयर बनना है एंड उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का भी आजकल यू नो ट्रेंड में है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और महिलाएं हैं भी इस फील्ड में, लेडीज हैं वो आगे अच्छा भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं,
4: बिल्कुल खुशी जी
1: पार्लर भी संभाल रही हैं,
4: बिल्कुल खुशी जी। हमारी आजकल खासकर मैं बात करना चाहूंगी न्यूली मैरिड वुमेन जो है हमारी, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। टैलेंट तो उनके अंदर बहुत है, डेडिकेशन भी बहुत है, पर वो शुरुआत में घर की नई नई जिम्मेदारियों से घिर गई हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं। पर हमारी प्यारी प्यारी श्रोताओं हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप आगे आइए, अपने लिए समय निकालिए, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है उसको भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपके परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा।
1: और बहुत प्यारी सी एक लाइन भी है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।
4: अरे वाह खुशी जी क्या बात कही है आपने। और हमारा ये संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी है कि अगर कोई भी सपना जो आपको लगा है कि मैं अभी नहीं कर पाया था और आपको लगता है कि मैं जिंदगी की एक रेस में बहुत आगे आ गया हूँ और अब मैं अपने सपनों के जीने की उम्र को छोड़ आया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि दोस्तों सपनों की कोई उम्र नहीं होती,
1: अब वो सब चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
4: और बिल्कुल खुशी जी, और आपको पता है जब हम अपने सपनों को जीते हैं तो हमारी जो जिंदा दिली होती है जिंदगी को जीने की वो
1: और ज्यादा बढ़ जाती है।
4: हाँ बिल्कुल, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और सच में जिंदगी को जीने का मजा तभी है जब सपने बाकी हो, जब हम उस सपनों के पीछे भागते रहते हैं तो सच में जिंदगी को जीने का मजा आता है।
1: और जिंदगी इसी का नाम है।
4: और हाँ जिंदगी इसी का नाम है। तो खुशी जी कोई आपका ऐसा सपना है जो आप चाहती हैं अभी भी पूरा करना, क्योंकि आप हम सबके बीच में एक बहुत अच्छी आरजे हैं, तो और क्या क्या सपने हैं आपके जो आप पूरा करना चाहती हैं?
1: ड्रीम्स तो मेरे बहुत सारे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राची कभी ड्रीम्स ना खत्म ही नहीं होते हैं, अगर एक कंप्लीट होता है तो फिर हम दूसरा सपना देखते हैं।
4: खुशी जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि क्योंकि सपने जो होते हैं, जो ड्रीम्स जो इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, ड्रीम्स ये लाइफ को सच में बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर ड्रीम्स ना हो तो सच में लाइफ में वो जो क्यूरियोसिटी और जो हमारा सब कुछ एक्सप्लोर करने की जो एक हमेशा इच्छा रहती है, अगर वो खत्म हो जाए ना तो लाइफ में ना जिंदगी को जीने का मजा कम हो जाता है। सही बात है ना खुशी जी?
1: आई एग्री विद यू प्राची।
4: तो खुशी
1: अभी लेते हैं हम एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली है, तो मैं चाहती हूँ एक प्यारा सा अपने जितने भी हमारे लिसनर इस समय हमें सुन रहे हैं राइट नाउ, सभी के लिए एक अच्छा सा गाना हम प्ले करेंगे यहाँ पर।
4: हाँ बिल्कुल, हम करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए प्ले। सुनते रहिए कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मिलेंगे आपसे FM मुरादाबाद 89.6 पर।
1: और मुस्कुराते भी रहिए ये मत भूलना, क्योंकि ये किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। और आप भी मुस्कुराइए, जब आप मुस्कुराएंगे ना तो मुझे यकीन है कि आपके सामने वाले पड़ोसी भी आपको देखकर जरूर मुस्कुराएंगे।
4: थैंक यू सो मच खुशी जी प्यारा सा मैसेज देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत आरजी खुशी करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और मेरे साथ में यहां पर प्राची भी हैं। एंड आज हम कुछ करने वाले हैं नया।

0: कुछ न्यू क्रिएटिविटी एंड कुछ मस्ती भी फन यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों आप ऐसे ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज हम दोनों कुड़िया यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। मैं प्राची से कुछ मालूम भी करने वाली हूँ। अरे सुनो प्राची, एक बात बताओ।
1: हाँ खुशी जी, बताओ आज आप क्या नया सवाल लेकर आई है।
0: तुम्हें क्या लगता है, सपने देखने की भी कोई उम्र होती है?
1: अरे बिल्कुल नहीं, सपने देखने की उम्र होती तो हम दोनों आज यहाँ बैठकर इतनी बातें थोड़ी कर रहे होते।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और सच बताऊँ, मुझे लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सपने कम नहीं होते, बस हम उन्हें थोड़ा दबा देते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुशी जी आप, क्योंकि जिंदगी में जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं ना कि हम अपने सपनों को बोल देते हैं, बेटा तुम थोड़ा इंतजार करो, पहले घर तो संभाल ले।
0: और वो थोड़ा देर, और वो थोड़ी देर पता है कब खत्म होती है?
1: जब बाल सफेद हो जाते हैं।
0: लेकिन सपना बेचारा तब भी वही खड़ा रहता है
1: और कहता है मैं तो अभी भी यही हूँ।
0: सच में दोस्तों, हमारे घरों में कितनी ऐसी महिलाएं होंगी ना जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहा होगा। किसी को पढ़ना था, किसी को गाना सीखना था, किसी को सिलाई कढ़ाई का अपना काम शुरू करना था, किसी को घूमना था,
1: किसी को बस इतना करना था कि एक दिन अपने मन की कोई चीज खरीद सके और उसे किसी से पूछना ना पड़े।
0: लेकिन फिर शादी हुई, बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां आई और अपने सपने धीरे धीरे अलमारी में रखे, किसी पुराने कपड़े की तरह पीछे चले गए।
1: लेकिन दोस्तों पुरानी चीज का मतलब बेकार चीज नहीं होता, कभी कभी वही पुरानी इच्छा सालों बाद फिर से आवाज देती है। दोस्तों हम आपको फिर से सुनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक। मेरी जान पहचान में एक आंटी थी, उनकी उम्र लगभग 65 साल की थी,
0: बड़ी प्यारी महिला है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आंटी अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले, मैंने आंटी जी से पूछा, आंटी जी अगर आपको जिंदगी में आप कोई भी काम कर सकें तो आप क्या करेंगी? उन्होंने बिना सोचे कि पता है प्राची क्या कहा?
1: क्या कहा खुशी जी?
0: मैं डांस सीखूंगी। मैंने कहा अरे वाह, तो अभी सीख लीजिए।
1: तो वो क्या बोली खुशी जी?
0: तो वो हंसकर बोली, अब मेरी उम्र थोड़ी है डांस सीखने की।
1: तो आपने उनसे क्या कहा?
0: मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी डांस सीखने के लिए उम्र चाहिए या पैर? वो बोली पैर। मैंने कहा तो फिर समस्या क्या है? हल्की हंसी। और सच बताऊं
1: दोस्तों, वो इस बात पर हंसने लगी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो डांस क्लास ज्वाइन करेंगी। पहले दिन तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, उनसे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो थी, उन्हें लगा सब उन्हें देख रहे हैं।
0: लेकिन कुछ दिन बाद वही आंटी सबसे आगे खड़ी होकर डांस कर रही थी प्राची, पता है। और उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, बोली बेटा पता है मैं डांस करते हुए अपनी उम्र भूल जाती हूँ। और दोस्तों बस यही तो जिंदगी है, जब कोई काम करते हुए हमें अपनी उम्र याद ना रहे
1: तो समझिए दोस्तों कि आप सच में जी रहे हैं।
0: वाह ये बात तो बहुत अच्छी लगी,
1: क्योंकि दोस्तों हम उम्र को अक्सर एक नंबर समझ लेते हैं कि मैं 50 का हो गया हूँ या मैं 50 की हो गई हूँ, 60 का हो गया हूँ, 70 का हो गया हूँ, तो हम सोचते हैं अब क्या करेंगे, अब तो बच्चे सीख जाए। दोस्तों बच्चों को तो आगे बढ़ाइए, साथ में जो आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा है उसका भी थोड़ा ख्याल करिए दोस्तों।
0: लेकिन मेरा मानना है प्राची, उम्र ना कैलेंडर पर लिखी होती है, उत्साह दिल में होता है।
1: बिल्कुल,
0: और कभी कभी हमें अपने बच्चों से भी ये सुनने को मिलता है, मम्मी अब रहने दो, पापा अब आपकी उम्र नहीं है, दादी अब आराम भी करेंगे और सपना भी पूरा करेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात पर मुझे एक बहुत ही प्यारी शायरी याद आ रही है।
0: इरशाद इरशाद,
1: राहों में उम्र की दीवार मत रखना, दोस्तों राहों में उम्र की दीवार मत रखना, दिल में कोई सपना बेकार मत रखना, जो करना है आज ही कर डालो, जो करना है आज ही कर डालो, कल का क्या भरोसा इंतजार मत रखना।
0: वाह वाह वाह क्या बात है प्राची। और एक बात मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी, अगर आपने जिंदगी में कभी कोई सपना देखा था और वो सपना आज भी कहीं आपके दिल में पड़ा है, उसे निकालिए, उससे बात कीजिए
1: और दोस्तों उससे पूछिए, क्यों भाई अभी भी मेरे साथ चलोगे? मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों वो सपना आपसे कहेगा, हाँ मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, आप ही आ रहे थे।
0: और जरूरी नहीं कि सपना बहुत बड़ा हो, सपना ये भी तो हो सकता है, मैं रोज सुबह पार्क में जाकर वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूंगी और फिर आकर किताब पढ़ूंगी। मैं हारमोनियम सीखूंगी।
1: जी हाँ दोस्तों, और हारमोनियम सीखने का सपना तो मेरा और खुशी दोनों का है।
0: मुझे तो आता भी प्ले करना, पता है प्राची, मैंने आपको सुनाया भी था ना।
1: हाँ आपने तो मुझे सुनाया है, पर मेरा ये सपना तो अभी बहुत ही दूर है मुझसे। मैं बहुत जल्दी हारमोनियम बजाना सीखूंगी।
0: टेंशन मत लो, मैं आपके पास हूँ ना, तो समझो आपका ड्रीम्स भी आप ही के पास है।
1: ओह थैंक यू सो मच खुशी जी,
0: मोस्ट वेलकम।
1: मैं अपनी किसी पुरानी सहेली से मिलूंगी, ऐसे भी सपने होते हैं। मैं बस जिंदगी में पहली बार अपने मन की सुनूंगी। कुछ लोगों का तो दोस्तों ये भी सपना होता है, जिंदगी बीत जाती है पर हम अपने सपनों को नहीं जी पाते। पर दोस्तों अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए और अपने सपनों के लिए टाइम निकालिए, और इसे पूरा करने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है।
0: कभी कभी हम दूसरों के सपने पूरे करते करते अपना सपना ही भूल जाते हैं। बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी की, घर बनाया, परिवार संभाला, सबके लिए खड़े रहे। अगर जिंदगी आपसे कह रही है थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल नहीं ना?
1: बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सवाल हमारे सभी श्रोताओं से है कि अगर उम्र की कोई सीमा ना हो तो आप कौन कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे?
0: सोचिए और जरूर बताइएगा हमें।
1: दोस्तों आप में बताइए एफएम मुरादाबाद 89.6 के मैजिकल नंबर 9837896 पर, क्योंकि हो सकता है आपका सपना सुनकर किसी दूसरे इंसान को भी अपने सपने पूरा करने की हिम्मत मिल जाए।
0: और जाते जाते बस इतना ही याद रखिए, सफेद बालों से सपने सफेद नहीं होते, सफेद बालों से सपने सफेद नहीं होते, उम्र बढ़ने से अरमान कम नहीं होते, दिल में अगर जज्बा जिंदा है अभी तो जिंदगी के खूबसूरत दिन खत्म नहीं होते।
1: जी हाँ दोस्तों, उम्र चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो या 80, सपने देखने के लिए दिल चाहिए दोस्तों, उम्र नहीं। तो आज से ही अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए, शायद वो आपका इंतजार कर रहे हो।
0: तो अपने उस पुराने सपने को आवाज दीजिए, शायद वो आज भी आपका इंतजार कर रहा हो।
1: जी दोस्तों बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि सपनों की भी आदत खराब होती है। जितना देर करवाओ उतना नाराज हो जाते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ है
0: आरजी खुशी,
1: और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, जहाँ बातें कानों तक नहीं दिल तक पहुँचती है।
0: एग्जैक्टली राइट। और दोस्तों हम मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए हमारी तरह।
1: हाँ दोस्तों,
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है चर्चा।

0: भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
1: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
2: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
3: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृहमंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
1: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और अनलिनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
6: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
9: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
8: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छी आप बनोगे ना, तो उतने अच्छे तरीके से चक्की में पीसे भी जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है। उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए तो भैया देखिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी। किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया। और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए काम करना जरूरी है हर किसी के लिए। जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए, क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है। लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाता है, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की। बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने सम्मान की और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे क्या खुशी, क्या तू खुश है? और एक बार आपका जो भी नाम है आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा। और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ, जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते, आते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी। क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ। एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार अपने गाना एंजॉय किया है। और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी, शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम, बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के, अरे बोलो भाई तुम भी कुछ।
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी, बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना, मैं
0: हाँ, मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: चाहिए। और वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है।
1: हाँ।
0: सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, उन्होंने बहुत प्यार से कहा बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा तुमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा माफ कीजिएगा आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए, लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के इस बार।

0: क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही नहीं, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आज कल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपने सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो, अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है, तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आता है तो उसे कम बात करें। और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोलें। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है, वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है दीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना लें और उनके साथ कहीं भी ना जाएं, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए, आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए, ताकि बच्चा कभी ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन, मैं तो कहूँ कि ना आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपने सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुँच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच,

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बारिश की बूंदे बिना बड़ी शरारती होती हैं, कभी खिड़की पर दस्तक देती है तो कभी दिल में कोई पुरानी याद जगा देती है। हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और ऐसे ही रिमझिम रिमझिम बारिश के बीच आपके अपने शहर मुरादाबाद 89.6 पर खुशी हाजिर है आपका फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश, जहाँ आपकी पसंद का गाना सिर्फ गाना नहीं होता, उसके पीछे होती है आपकी फीलिंग्स, आपकी स्टोरी और किसी खास इंसान के नाम एक प्यारा सा मैसेज, एक प्यारी सी बात जो आप कह नहीं पाते हैं लेकिन गानों के जरिए बयां कर देते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और मुझे कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। वैसे मुरादाबाद में आज का जो मौसम है, रिमझिम सी बारिश, हल्की बूंदाबांदी, और शायद अभी तो रुक भी गई है, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं, क्या उनकी फरमाइश है, उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो
1: फरमाइश, गुड आफ्टरनून दी।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, क्या बात है, लगता है आज खाना कुछ ज्यादा ही खाया है आपने।
1: हाँ जी।
0: ओके, अपना नाम बताइएगा। निखत जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा।
1: जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ।
0: अच्छा ही रहना चाहिए, बताइएगा आप और फैमिली में सब ठीक है आपके यहाँ पर।
1: हाँ जी, सभी लोग खैरियत से हैं, आप बताइए वहाँ पर सब कैसे
0: है। हाँ जी, यहाँ पर भी सब बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा अभी मौसम कैसा है राइट नाउ बाहर का।
1: जी सुबह से तो हल्की हल्की बारिश थी लेकिन अब धूप आई है।
0: अच्छा, अभी धूप आई है।
1: हाँ जी।
0: ओके, खुशी आई है तो धूप भी आ गई है। हाँ
1: हाँ जी, आप लेके आए हो ना।
0: ओके, बताइएगा आज क्या सुनना चाहती हैं आप।
1: जी मैं सॉन्ग सुनूंगी, मेरे दिल में आना, वो सनम मेरे दिल में आना।
0: अरे वाह, हम तो आपके दिल में ही रहते हैं।
1: हाँ जी, आप सही तो कह रही हो।
0: ओके, और बताइएगा आपकी वो क्यूट सी भांजी कैसी है, सिस्टर की डॉटर।
1: सभी तीनों भांजी बहुत अच्छी है।
0: अरे चलिए, हमारी ओर से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और एंड जल्दी से बड़ी हो जाएं ताकि वो अपनी मासी की शादी में डांस करें।
1: हाँ जी, बहुत बड़ी लग रही हैं वो अभी से ही।
0: हाँ जी, बेटियां जल्दी ही बड़ी हो जाती हैं, आपको पता है।
1: हाँ जी, ऐसा ही है।
0: तो चलिए सुनवा देते हैं आपको प्यारा सा गीत, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: हाँ, जो दूसरों के कहनों पे छोड़ गई है ना, तो उनके लिए कुछ कहना चाहती
0: हूँ। हाँ, बिल्कुल कहिएगा।
1: मुझे उदास कर गए हो, गए हो खुश रहो। मुझे उदास कर गए हो, खुश रहो। मेरे मिजाज पर गए हो, खुश रहो। मेरे लिए न रुक सके तो क्या हुआ, मेरे लिए न रुक सके तो क्या हुआ। जहाँ कहीं ठहर गए हो, खुश रहो। जहाँ कहीं ठहर गए हो, खुश रहो।
0: बहुत खूब सूरत लाइनें हैं आपकी निखत।
1: हाँ जी, और मेरे साथ में मेरी दोस्त फिजा।
0: हाँ,
1: और रामपुर से है श्यामा परवीन और सभी सुनने वाले।
0: ओके, चलिए सभी के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू जी, बाय,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए भी फन सुनते हैं निखत की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक, इश्क चुनरिया ओढ़ के दिल में आना। बहुत ही प्यारा गाना है ये, सुनवाते हैं और उसके बाद आपसे भी बातचीत करते हैं। जल्दी से कॉल लगाइएगा आप।

क्या बात है दोस्तों, इतना प्यारा ट्रैक अभी आपने सुना और आपने बुलाया, हम भी चले आए आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश, मैं आपकी दोस्त हूँ खुशी और ये ट्रैक अभी आपने सुना उदित नारायण जी साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया। एंड ये ट्रैक पिक्चर राजेशन था, ऐश्वर्या रॉय एंड

0: अभी धरती की प्यास नहीं बुझी है।
1: ओके, तो बारिश आ जाएगी, थोड़ी आई है, पूरी भी आ जाएगी, इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा और बताइएगा।
0: अभी इंतजार चल रहा है बारिश का।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: थोड़ा सा तो मौसम खुशगवार हो गया है पर अभी पूरा नहीं हुआ।
1: ओके, तो और बारिश भी आ जाएगी एंड बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
0: बहन जी, आज मैं गीत सुनूंगा फिल्म कहीं दिन कहीं रात का,
1: जी
0: महेंद्र कपूर जी और आशा भोसले जी की आवाज में है
1: जी। बताइएगा
0: उसके बोल मैं तरन्नम में बताता हूँ।
1: जी जी जी, बिल्कुल बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं।
0: धन्यवाद,
1: मोस्ट वेलकम सर।
0: तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में देश नाल की मैंने।
1: बहुत खूबसूरत आपने गुनगुनाया है सर, सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: शुक्रिया बहन जी, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया एंड चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं हम। आप भी मचाइए, जल्दी से कॉल लगाइए, नेक्स्ट कॉलर आप ही हमारे शो के हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: क्या बात है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा गाना अभी आपने सुना, खूबसूरत सा आशा भोसले साथ में महेंद्र कपूर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। फ्रॉम द मूवी कहीं दिन कहीं रात 1968 में फिल्म आई थी और इस खूबसूरत इसमें म्यूजिक दिया था ओपी नैयर जी ने एंड लिरिक्स थे SH बिहारी जी के। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: सूरज है।
0: हाँ जी,
1: आवाज है सारे की?
0: जी
1: देखो मेरे दिल मचल गए, तुम्हें देखा और मचल गए, मचल गए, मचल गए दिल।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवा देते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आ रहे हैं हम। तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका भी कॉल जल्दी से लग जाए। जब आप ट्राई करेंगे तभी तो आपका कॉल लगेगा ना, और आप ट्राई ही ना करें तो कैसे कॉल लगेगा? एक दो बारी में तो नहीं लगेगा, एंड थोड़े से मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको, अपना फेवरेट गाना जो सुनना है। तो जल्दी से कॉल कीजिए, नंबर हमारा है 9837896896।

0: सेलिब्रेशन कोई भी हो, वेन्यू होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
1: ड्रीम वेडिंग, ग्रैंड कॉर्पोरेट इवेंट या मेमोरेबल बर्थडे, वेलकम टू देवशाह जंगल रिजॉर्ट, जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल।
0: जहां नेचर की खूबसूरती मिले वर्ल्ड क्लास लग्जरी के साथ, प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट, 120 प्लस रूम्स एंड स्पा।
1: देवशाह जंगल रिजॉर्ट, वेयर नेचर मीट्स लग्जरी। फॉर मोर डिटेल्स कॉल ऑन व्हाट्सएप ऑन 9258253082।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, मुरादाबाद में ना बारिश भी अपने ही मूड में चल रही है, कभी रिमझिम तो कभी थोड़ा ब्रेक, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह, कभी खुशी कभी गम। लेकिन दोस्तों, टेंशन किस बात की है, क्योंकि जब साथ हो अच्छे गाने और आप जैसे प्यारे प्यारे लिसनर्स, तो हर मौसम ब्यूटीफुल हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: नमस्ते, क्या नाम है?
1: मेरा नाम परी है।
0: परी, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद से।
0: अच्छा, मुरादाबाद से। बताइए परी, अभी तो आपकी छुट्टी चल रही है, क्या कर रहे हो घर पर आप?
1: मैं तो खेल रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ।
0: अच्छा, खेल भी रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो।
1: हाँ।
0: वेरी गुड परी, बताइए आज क्या सुनेंगे आप? ओके, तो परी को सुनवाते हैं गाना, ठीक है परी, एंजॉय करो आप।
1: ओके,
0: तो चलिए विवन सुनते हैं परी की पसंद का ये हरियाणवी गाना, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए और मुझे कॉल लगाइएगा।

0: प्रदीप सोलंकी एंड साथ में हीना की बड़ी प्यारी सी आवाज। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो खुशी मैडम।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी।
0: जी जी, अपना नाम बताइएगा सर।
1: जी मेरा नाम आसफ है और मैं इटली से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम सुबह भी सुनते हैं और इस टाइम भी
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है।
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, एवरीडे आपका मैसेज आता है। अच्छा लगता है हमें जब आप इतनी दूर से आउट ऑफ कंट्री से हमें कॉल करते हैं। बताएगा कैसा वेदर है
1: अभी? रहता है आपके प्रोग्राम का ना, इधर हमारा भी चलो टाइम पास हो जाता है। आज सिर्फ फरमाइश है, मूवी है प्रेम प्रेम रोग ना, उसका गाना है मोहब्बत है क्या चीज।
0: ओके, आप सर रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हैं?
1: मैं पाकिस्तान पंजाब।
0: अच्छा अच्छा ओके जी, और बताएगा सर कैसा अभी वेदर है इटली का?
1: इटली का इस टाइम तो गर्मी है।
0: अच्छी गर्मी। और
1: इस मौसम में ना बारिश नहीं होती इधर इटली में, बिल्कुल बारिश जीरो है।
0: अच्छा
1: हमारे देखो ना, वहाँ इस टाइम बारिश होती है, इधर बारिश नहीं होती अभी।
0: हाँ जी,
1: दो माह बारिश नहीं होती
0: इतने तो मानसून चालू है जी। बारिश दस सीजन है। हाँ जी हाँ जी, तो ये प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं सब आप? फिर मुरादाबाद में आपका कॉल लगा है आज।
1: ये बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, तो हमें तो इंतजार रहता है। और मेरे साथ दोस्त हैं, इनका नाम देना चाहूँगा।
0: हाँ जी हाँ जी बताइएगा।
1: मेरे साथ मेरा दोस्त है एक अख्तर भाई, एक कारी भाई, फजान, फैसल, नवाज, जाफर।
0: ओके, तो आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं एक आपको ऐसा सा गाना। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया जी आपका भी
0: जी। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। देखिए दोस्तों, जब आउट ऑफ कंट्री से कॉल आ रहा है, आप तो हमारे इंडिया वाले हो ना, तो पीछे क्यों, फिर जल्दी से कॉल करो। अब तो मैंने नंबर भी बता दिया है ना, जल्दी से कॉल लगाइएगा। और ये प्यारा सा गाना सुनिए फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से। बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से लता मंगेशकर जी और साथ में सुरेश वाडकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में ये प्यारा सा गाना। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? परम जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्लीज थोड़ा फोन के करीब आ जाइएगा।
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी, हाँ जी, अभी आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप? आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है, प्लीज।
1: बरसात का मौसम है, बरसात के मतलब के गाने।
0: अच्छा, ओके, आप कहना चाहते हैं कि बारिश के, यू नो, मौसम चल रहा है तो एक बारिश का गाना होना चाहिए, राइट? ठीक है सर, ओके, तो ये गाना आपको सुनवा देते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं परम जी की रिक्वेस्ट पर ये प्यारा सा ट्रैक। बरसात के मौसम में, और बाहर का मौसम कैसा है ये तो आप मुझे बताएंगे।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना कुमार सानू, साथ में रूप कुमार राठौर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी। एंड लिरिक्स थे सुदर्शन जी के। चलो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम है अमल बसमिटारी और मैं सोनीतपुर आसाम से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छे हो, काम कर रहा हूँ, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में काम कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या काम कर रहे हैं आप, क्या काम करते हैं?
1: चाय का पत्ती है ना, उसको घर से ला रहा हूँ बागान से।
0: अच्छा ओके,
1: चाय का पत्ता तोड़ रहा है।
0: अरे वाह, इस समय आप खेतों में हैं, चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं आपने बताया, राइट?
1: जी जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइएगा कैसा मौसम है असम का?
1: असम में तो बहुत गर्मी चल रहा है, काफी धूप दे रहा है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस।
0: ओह माय गॉड, 40 डिग्री सेल्सियस वेदर है अभी वहाँ पर, टेम्परेचर इतना है।
1: और कई कई जगह में असम में बारिश भी हो रहा है, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं आ रहा है, 3 दिन से ज्यादा ही हो गया सर बारिश नहीं गिर रही है। 3 दिन से पहले हल्की हल्की से बारिश हुई थी और अभी बहुत काफी डूब दे रहे हैं।
0: अच्छा, तो कैसा लगता है काम करते करते रेडियो को सुनना, कॉल लगाना, अपना फेवरेट गाना सुनना?
1: जैसे कि मोबाइल रेडियो में जो प्रोग्राम सुनता है ना, जो सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह के तरह से नहीं लगते रहे, उसको छोटे रहना, मतलब रेडियो को खुल के रखे, आराम से काम करते रहे। और इसी तरह प्रोग्राम में अच्छा लगता है तो किसी दोस्त का गाना क्या फरमाइश है उसके बारे में भी जान सकता है, खुद का दिल के बारे में जो पता चल जाता है अपन का।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और बताइएगा परिवार में सब ठीक है आपके यहाँ पर?
1: जी बहुत ठीक है।
0: जी तो बताइएगा आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं सर?
1: दिल हाय दिल फिल्म का नाम रहेगा, दिल का रिश्ता, कुमार सानू अलका जी की आवाज में। और मेरे दोस्त भी सुन रहा है इस प्रोग्राम को, हमारे धेमाजी असम से बिमल बसुमतारी सुन रहा है और गुलाघाट असम से रमेश पत्र और उनकी सारे परिवार सुन रहा है।
0: ओके, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का प्यारा सा गाना। धन्यवाद आपने मुझे कॉल किया सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक एंड लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, नंबर हमारा रहेगा 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा, रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेलो फरमाइश शो में। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी। और आपने सुना अभी बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता, अलका याग्निक जी साथ में कुमार सानू जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। और अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ, सुरतमा दुराया जिला मुरादाबाद।
0: जी बताएगा, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं, आप सुनवाए मैम?
0: सर हम भी ठीक हैं, बताएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी दीवाना मूवी का गाना है तेरे दर्द से दिल आवाज रहा।
0: ओके, सुनवाते हैं ये गाना आपको।
1: ठीक है
0: जी, तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं रिजवान जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आते हैं हम, आप कहीं मत जाइएगा, हमें कॉल लगाइए जल्दी से, मैं इंतजार कर रही हूँ। नंबर हमारा रहेगा 9837896896 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये प्यारा से गाना अभी सुनिएगा आप कुमार सानू जी की आवाज़ में।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद पर। आरजे खुशी और अपने प्यारा सा ट्रैक सुना कुमार सानू जी की आवाज में। अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर।
1: जब भी तन्हाई ने उनको सताया होगा, जब भी तन्हाई ने उनको सताया होगा, तब उनको मेरा ही ख्याल आया होगा। गम ये नहीं कि वो भूल गया मुझको, गम ये है कि रो रो के बुलाया होगा। मैडम जी नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर। अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद, जिला करेली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैम, और ये आपका शो सुनते हैं तो और भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम ही आपका इतना अच्छा है कि बहुत सारे लोगों से बात होती है तो हम सुनते हैं और उनके गीत भी हमें सुनने को मिलते हैं, और कभी कभी हमारी भी बारी आ जाती है तो हमें और खुशी होती है।
0: हाँ जी, ये भी अच्छा है, मतलब मोमेंट पहले हम सबको सुनते हैं, फिर जब खुद का कॉल लग जाता है तो डबल खुशी हो जाती है कि चलिए हमारा भी कॉल लग गया, अब हम भी गाना सुनेंगे।
1: जी जी, क्योंकि मौसम भी हमारे इधर को जैसा ही चला, उथल पुथल और दूसरा चोटी खेल रहा है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है, कभी गर्मी पड़ जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो ये बच्चों के मौसम में ये आपका कार्यक्रम भी है बहुत अच्छा लग जाता है, क्योंकि दोपहर का समय होता है, काम भी कम होता है, फुर्सत के पल होते हैं, तो कार्यक्रम आपका सुनते रहते हैं।
0: जी सर, तो बताइएगा आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: आज एक गीत सुनना चाहूंगा, पुराना गीत है, फिल्म का नाम है लैला मजनू, इसका गीत है सुरेश मी पाजेब की झनकार के सत्ते, लेकिन इससे पहले चार लाइने शुरू करना चाहूंगा मैं। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत है, दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के पास है वो नादान बहुत है।
0: अरे वाह, बहुत प्यारी लाइने हैं आपकी सर।
1: जी शुक्रिया। ये गीत तो मेरे साथ सानू भाई बैठे हैं, इनको डेडिकेट करना चाहूंगा, और बहुत सारे दोस्त हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस उम्मीद के साथ इस गीत को सुनना चाहूंगा कि सभी को ये गीत बहुत पसंद आए।
0: जी सर, सभी को पसंद आएगा, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। नमस्कार सर। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर आती हूँ मैं, बस आप यूं ही बने रहिए, हमें कॉल करते रहिएगा।

माई डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और एवरीवन, वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 4:14 हो गए हैं। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक, इस रेश में

0: 98-378-96-96। ये हमारे स्टूडियो का ऑफिशियल नंबर है जिस पर आपको कॉल करना है। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। जी कहाँ से बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बताइएगा।
1: धेमाजी असम जुलाई में सखी सकोरी से बिमोल बसंत करे मैम।
0: अच्छा असम से बात कर रहे हैं, बताइए सर कैसे हैं आप।
1: नहीं मैम हम ठीक है, मेरा दुकान था, दुकान से अभी दुकान बंद करके अभी हम लोग का इधर फूड मॉल चल रहे हैं, उसको देखने के लिए आ गया, फिर फूड मॉल मजा लेके फिर रेडियो पे सुबह मैम।
0: अरे वाह, फुटबॉल गेम्स आपने अभी देखा और अभी आपने रेडियो पर कॉल लगाया, राइट।
1: तो क्या अच्छा लग रहा है, वीडियो सुनके भी अच्छा लग रहा है, फिर कॉल भी लगाया, बहुत अच्छा लगा, मैम मिल गया।
0: जी जी जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बताइएगा असम का मौसम कैसा है आपकी साइड का। असम का
1: मौसम आज पूरा सुबह से बहुत गर्मी है, पूरा धूप हो रहा है।
0: अच्छा गर्मी है, तो ये बताइए सर, ये बताइएगा आपको एफएम मुरादाबाद के कार्यक्रम कैसे लगते हैं।
1: नहीं मैम हम तो कार्यक्रम सुन के बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके
1: तो सुनते रहता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सुनते रहते हैं। बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: मैम हमको सुनना है हमारी फिल्म का रोना सा है, रोना पाए, ये गीत सुना दीजिए मैम।
0: आप ये गीत क्यों सुनना चाहते हैं।
1: मैम हमको सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम सुन रहे हैं।
0: अच्छा कभी ऐसा हुआ है सिचुएशन लाइफ में आपके कि आप रोना चाहते थे। बहुत सारी परेशानियां लाइफ में होती है लेकिन रो नहीं पाते हैं, क्योंकि कहते भी है ना बहुत सारे लोग कि लड़के नहीं रोते हैं, तो ऐसा होता है क्या, ये बात रियल है।
1: नहीं मैम हम लोग तो रोते नहीं है, लेकिन हम लोग तो पूरा अच्छा से बहुत अच्छा से रहता हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है, पूरा रेडियो सुन सुन के, अगर थोड़ा सा अगर टेंशन लग गया तो रेडियो सुन लिया, तो प्रोग्राम में आ गया तो पूरा दिल खुश हो जाता है, इसीलिए ये गाना भी सुन के बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सुनना चाहता हूँ।
0: अच्छा ये बताइएगा सर, मैं अभी जानना चाहूंगी आपसे कि असम में बाढ़ भी आया था, तो अभी कैसी स्थिति है वहाँ पर।
1: जी मैम जो बाढ़ आया है हम लोग का यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर है, लेकिन उधर मौसम थोड़ा खराब है, नहीं अभी उधर आदमी तो मर गया, 100 से ज्यादा आदमी मर गया, लेकिन अभी तो कहीं कहीं थोड़ा अभी भी थोड़ा खराब हाल चाल ही सब है।
0: अच्छा मतलब पहले से तो राहत है ना सर मौसम में।
1: जी मैम ये हम लोग का अभी जो हो रहा है वो तो बारिश तो अभी नहीं आ रहा है ना, फिर ये अरुणाचल से पानी आया था ना, उधर आके जैसे आके एक रात में आ गया पानी पूरा, समझ में नहीं आया कैसे कैसे, कभी भी बारिश उधर
0: अभी
1: नहीं हुआ था।
0: ओके अभी बाढ़ की स्थिति वहाँ पर ठीक है ना सर।
1: अभी थोड़ा लाइन में आ रहा है मैम, जैसे हम लोग का भी इधर जितना हम लोग का आदमी लोग जैसे जो जैसे सकता है इसे पैसा वगैरह कुछ उठा के इसे दिया है, फिर घर सर बनाया, कुछ ऐसे मदद करा है सर आदमी, अच्छा लग रहा है मैम।
0: जी चलिए बहुत अच्छी बात है सर, सबको साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
1: जी जी
0: जी जी धन्यवाद आपने हमें कॉल किया।
1: जी मैम आपसे हम पहली बार बात कर रहे हैं।
0: अच्छा आज फर्स्ट टाइम आप बात कर रहे हैं हमसे।
1: जी मैम
0: जी,
1: और ये गाना हम मेरा दोस्त के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ मैम।
0: बताइएगा।
1: हम लोग का सबसे पहले है सोनितपुर असम से मेरा दोस्त है अमोल बसुमतारी, और हाईकोट मुंडा, रमेश पत्र, विकासी हजरिका, और है भगवान सिंह परमा, राकेश गोल्दी, प्रेम सिंह सिसोदिया, और है शिवा लोहार और आशुतोष भैया।
0: अरे वाह आपके तो बहुत सारे मित्र हैं, ये रेडियो के जरिए आपके दोस्त बने हैं ना।
1: जी मैं हम लोग सरासरी बहुत अच्छा लगता है सुन के।
0: कैसा लगता है कि आपको रेडियो के जरिए इतने सारे फ्रेंड्स मिले, इतने सारे दोस्त मिले हैं, अलग अलग राज्यों से सब आपके साथ कनेक्ट होते हैं।
1: जी मैम रेडियो का जैसे इतना हम लोग जैसे इतना दूर दूर से हम लोग जान पहचान हो गया, दोस्ती बन गया, इतना अच्छा लगता है सुन के। और एक है मैम पुरुषोत्तम भैया, उसको भी दिल कर रहेगा, जैसे इतना दूर दूर से हम लोग छुटा जुड़ के इतना अच्छा लगता है, हम लोग बातचीत भी करते रहता है, प्रोग्राम के बारे में जानकारी रहता है, बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: जी चलिए बहुत अच्छी बात है सर, हमें जानकर बहुत खुशी हुई। और असम से आप हमारे दूसरे कॉलर हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, उनसे भी बातचीत करके अच्छा लगा, और आपसे भी ऐसे ही जुड़े रहिएगा फिर मुरादाबाद 89.6 के साथ, और सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको, ठीक है सर। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा गाना और लौट कर आते हैं हम, तब तक आप

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: कोई मिल गया,
6: कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: इवनिंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त खुशी। देखिए यहाँ पर वक्त हुआ है अभी 4:28 राइट नाउ और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हमारे साथ कौन जुड़े हैं? हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: जबलपुर एमपी से आपका छोटा सुखी बोला हुआ आदरणीय खुशी मैम को प्यार भरा नमस्कार। सुनने वाले सब मुरादाबाद भाई बहनों को भी
0: जी, आपको भी नमस्कार अशोक जी। बहुत बहुत
1: शुभकामनाएं और कैसा हाल है
0: जी? बहुत अच्छे हैं अशोक जी, आप बताइएगा एमपी का मौसम कैसा है?
1: मौसम ठंडा ही है, पानी बरसता है दो एक दिन से तो धीरे धीरे रुक गया है।
0: अच्छा अभी बारिश कम हो गई है? ओके, आपको भी सावन मास के शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सर।
1: शिवरात्रि हो रही है? अच्छा आपके
0: जी, बताएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: आने वाली हरियाली चीज की भी शुभकामनाएं और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की भी
0: जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बताएगा
1: सावन से मिलता हुआ।
0: अच्छा
1: काली घटा टकराई।
0: ओके, तो सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत। अशोक जी धन्यवाद आपने हमें कॉल किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर। तो चलिए अशोक जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी चांदनी से एंड लौट कर आते हैं हम इस खूबसूरत गीत के उस पार। आप भी हमें श्रोताओं कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी चांदनी सी, आशा भोसले साथ में विनोद राठौर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा गाना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा शर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है।
0: हाँ, आशीर्वाद तो आपका है। हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं सभी के लिए।
1: जी?
0: मैंने कहा हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुनने वाले सभी श्रोता खुश रहे।
1: सभी लोग करते हैं।
0: हाँ जी,
1: हम भी करते हैं।
0: जी
1: अच्छी बात है।
0: हाँ बताइए,
1: आपकी भी कृपा जरूरी है।
0: अच्छा जी। ओके,
1: हम लोगों के लिए।
0: अच्छा बताएगा,
1: आप पर निर्भर रहते हैं।
0: ऐसा नहीं है सर, बताएगा आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: आप गाने का सुनाते हैं, हमारे तो गाने काट देते हो।
0: ऐसा नहीं है, गाने काट देते हैं, सुनाते तो हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गाना सुनवा दे आप, रूप में निकला रहो, रूप की रानी गोरा रंग काला ना पड़ जाए।
0: ओके, सुनवा देते हैं प्यारा सा गाना आपको सर। धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मचाइएगा, जल्दी से कॉल लगाइए। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837 8968 96 और सुन लेते हैं ये शानदार से गाना।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना आशा भोसले साथ में किशोर कुमार जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। वैसे कहीं धूप भी है, कहीं बादल भी है और कहीं बारिश भी हो रही है, तो ये जो मौसम है ना, अभी जो मानसून है, थोड़ा सा ना शरारती कर रहा है, नटखट सा है। तो इस मौसम का लुफ्त उठाइए, बाकी अपना ख्याल रखिए। और हाँ, जब भी आप बाहर जाए ना, तो रेनकोट और छाता हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता। अभी आप सोच रहे हैं कि ओहो धूप निकल रही है, क्या करेंगे छाते का, नहीं लेकर जाते। लेकिन पता चला कि जब उधर से रिटर्न आप आ रहे हो, इतनी तेज बारिश हो गई हो कि आप घर जाने के लिए सोच रहे हो कि यार काश मैं छाता ले आता। तो इसलिए कह रही हूँ कि छाता लेकर जाइएगा, ठीक है, मिस मत करना, मैंने याद दिला दिया आपको। चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। आपको भी याद आ, क्या नाम है आपका?
1: मैम मेरा नाम है मैम किसी के कमरे तो करते ही कनियों की चोरी, लेकिन दिल को चुराना काम है मेरा। भमरे तो करते ही कनियों की चोरी, लेकिन दिल को चुराना काम है मेरा। हर सबको देती हूँ मोहब्बत की कली, यही तो इनाम है मेरा। और चांद सितारे रहते हैं मेरे आंचल में, इसीलिए तो आरजे क्षमा का लगी नाम है मेरा।
0: अरे वाह क्षमा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका। जी मैं बहुत अच्छी हूँ क्षमा, आप बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैम मैं वैसे तो कतरावा की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं रामपुर से बात कर रही
0: हूँ। ओके, तो बताइएगा क्षमा आज क्या सुनना चाहते हो आप?
1: मैम मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर गीत के बोल हैं, बादल यूं गरजता है डर कुछ ऐसा लगता है।
0: बेताब मूवी का ट्रैक है। ओके क्षमा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, खुशी आपके साथ है, ठीक है
1: जी?
0: मैंने कहा, आपने बोला ना कि बादल यूं गरजता है डर कुछ ऐसा लगता है, तो खुशी ने कहा कि खुशी आपके साथ है, आप बिल्कुल भी मत डरिएगा क्षमा।
1: जी मैम, लेकिन बादल गरजता तो डर लगता है मैम।
0: हाँ डर लगता है, तो आप खुशी को याद कर लीजिएगा, पर डर नहीं लगेगा आपको, ठीक है?
1: जी हम आपको याद कर लेंगे मैम।
0: हाँ जी, तो ये प्यारा से गाना आपको सुनवा देते हैं क्षमा।
1: मैम मैं कुछ श्रोताओं के नाम लेना चाहूंगी।
0: श्योर बताइएगा।
1: मैम जैसे मेरी छोटी बहन है स्वादिकी, और मुरादाबाद से ही निकट फातिमा, अफरोज फातिमा, रुकैया फातिमा और लाइवा फातिमा और आगे सबनम वासी जी, और हम निकट फातिमा जी से नाराज हैं, अगर वो सुन रही हो तो बस समझ जाएंगे।
0: ओके, इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं आपकी मुरादाबाद में, क्या बात है क्षमा।
1: जी करते हैं,
0: अच्छी बात है, दोस्ती मुझे लगता है कि बरकरार रखनी चाहिए। और ये रेडियो जो है ना, हमारा जो प्यारा सा रेडियो है, बहुत ही खूबसूरत है ये, मतलब ना हमें खुश रहने का मौका देता है और ढेर सारी खुशियां भी देता है ना, इतने प्यारे प्यारे दोस्त बन जाते हैं यहाँ पर। और अच्छा लगता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को याद करता है। तो चलिए अभी हम सुनवा देते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत करती है आरजे खुशी आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी जुड़ जाते हैं अपने लास्ट कॉलर के साथ। कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं? हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर।
1: जी रियाजुल बोल रहे हैं, गोरखपुर बस्ती से।
0: जी गोरखपुर से बात आप कर रहे हैं, गोरखपुर बस्ती से। कैसे हैं आप पहले ये बताइएगा सर।
1: जी मैम बहुत बढ़िया, काम चल रहा है अपना घर बनाने का।
0: अच्छा, आशियाना बनाने का आप काम करते हैं, तो अभी कैसा मौसम है गोरखपुर में?
1: जी मैम इस टाइम तो धूप हो रही है, दो चार दिन बारिश हुआ होगा, बारिश तो बहुत पड़ी थी यहाँ पे।
0: अच्छा, तो अभी राहत है बारिश से?
1: हाँ ठंडा है मौसम।
0: अच्छा मौसम,
1: गर्मी नहीं है इतनी।
0: ओके,
1: हवा चल रही है।
0: जी जी जी, ठंडी हवाएं चल रही है तो इतनी गर्मी फील नहीं हो रही है।
1: अपने मुरादाबाद में कैसा मौसम है मैम?
0: अपने मुरादाबाद का जो मौसम है सर, वो अभी ऐसा है कि कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है, ठीक ठाक वेदर है।
1: मैम आप कहाँ की रहने वाली हो?
0: आपको कहाँ से लगते हैं? हम यूपी वाले हैं।
1: यूपी में कौन से जिले से हो आप?
0: सर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर।
1: बिजनौर?
0: हाँ जी। आपने क्यों जाना हमें बताइए।
1: जी बहुत दिनों से दिल में आती थी कि पूछेंगे मैम से कौन से स्टेट की रहने वाली है।
0: अच्छा तो अभी
1: कौन से जिले की रहने वाली है, तो याद नहीं रहती थी, आज पूछ ही डाला।
0: चलिए कोई बात नहीं, जो मन में सवाल होता है ना, मुझे लगता है सर कि वो मालूम कर लेना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, तो बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: हम जी मैम हमारे दोस्त कह रहे थे गोरखपुर की रहने वाली है मैम, तो हम इनकी पूछ कर देखेंगे।
0: नहीं सर, मैं गोरखपुर से नहीं हूँ, आपकी पड़ोसी हैं हम।
1: जी
0: बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: आप? जी मैम राज मूवी का गाना था, इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को ना चाहे।
0: ओके, तो ये गाना आपको सुनवा देते हैं सर, धन्यवाद आपने कॉल किया।
1: ओके मैम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक। लौट कर तो हम अब नहीं आएंगे, लेकिन कल आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। अभी फिलहाल 5 बजे आएंगी रीना जी, शो का नाम आपको मालूम है ना, इवनिंग मस्ती, जहाँ पर ढेर सारी मस्ती होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड कुछ सवाल भी होते हैं, और वो सवाल जो होते हैं ना वो आपके दिमाग को तेज करने वाले होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फोन चलाते रहते हैं तो फोन हमारा जो माइंड है वो बस उतना ही सीमित रहता है, लेकिन रीना ऐसी पहेली पूछती है जिससे आपका दिमाग दौड़ने लगता है। तो आप तैयार है ना अपने माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए, तो सुनना ना भूलिएगा ठीक शाम को 5 से 7। हरियाणवी छोरी है लेकिन शो का नाम आपको पता है ना इवनिंग मस्ती है। चलो बहुत सारी बातें कर ली है, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना, यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, और महाशिवरात्रि की वंस अगेन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सावन की शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर एंड मैम दोनों को ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: I've been training for years, grinding for years, moving.
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ. अब कनेक्टेड श्रोता, समय की बात करूँ तो 5:07 हो चुके हैं, यानी कि 2 घंटे आप सभी के साथ कनेक्ट रहेंगे. ढेर सारी बातें करेंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. इवनिंग मस्ती शो क्योंकि स्टार्ट हो चुका है और बातें यहाँ पर देश दुनिया की ही होती है. साथ ही साथ अपने लोकल का भी बात करेंगे, मुरादाबाद के बारे में भी बात करने वाले श्रोताओं. सो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि बस बने रहिएगा आर्जुरीना के साथ. एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी. और बहुत ही शानदार गाना सुनते हैं, इसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें.

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है जट लुधियाने दा। यानी कि कुछ गाने ऐसे होते भैया, सुनने के बाद ना डांस अपने आप करने का मन कर जाता है। और वैसे भी आप इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट है आरजे रीना के साथ। समय की बात करूं श्रोताओं, तो समय हो चुका है यानी कि 5:15।

सावन शिवरात्रि है, आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी बहुतों का फास्ट होगा और आज मंदिरों में भी भैया भीड़ पूरी भरकम में थी, यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि देखो ऊपर से शिव कांवड़िए जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे, साथ ही साथ और भी हम सब भी थे, तो लाइनें आज तो लगानी पड़ी थी पक्का सच में। ऊपर से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी सुबह सुबह, और सभी भाई हर किसी को यही चाहत होती कि बस सुबह सुबह जल चढ़ा कर आते हैं शिव जी भगवान के ऊपर, क्योंकि जब दोपहरा होने लग जाता है, दिन निकलने लग जाता है, तो एक वो सुबह वाले जो सुकून होता है ना, वो फिर मिल नहीं पाता है। और मेरी जैसी हो तो बस 5 बजे निकल लो यार मंदिर में ही। तो अभी आप ट्रैफिक में हैं, ऑन द वे हैं, तो हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे जी, क्योंकि मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ, हमेशा एक न एक लिंक तो मेरा ऐसा आता ही है जिसमें मैं ट्रैफिक के बारे में, सड़कों के नियम हैं, जो रूल है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, मामा नहीं देख रहे, यानी कि पुलिस मामा नहीं देख रहा, लेकिन एक्चुअल में हम होते हैं कैमरे की निगरानी में। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप कितना भी बचने की कोशिश करिए, लेकिन आप कैमरे की निगरानी में तो होते ही हैं ना, कब आपके यानी कि अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता चलेगा अरे यार ये कैसे हुआ। तो इसीलिए गलती ना करें और उसका ध्यान रखिए, सफ़र का भी ध्यान रखिए और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम एक रास्ता जो है कांवड़ियों के लिए है और एक रास्ता हम सभी के लिए है। और इस टाइम देखिए ऑफिस से निकलते हैं तो भाई ट्रैफिक जाम तो आपको मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। सो और भी ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। और एक बहुत ही शानदार गाना जय जय शिव शंकर आय हाय ऋतिक रोशन ने इस मूवी में है और टाइगर, तो ये गाना सुनते हैं उसके बाद।

0: क्या बात है जी। मुकाबला गाना सुनकर तो सच में जुनून ही आ जाता है इंसान के अंदर, है ना, कि मेरे से भाई कोई नहीं है मुकाबले के बराबर। हमेशा हम यही सोचते हैं जब हम कोई काम अच्छा करने लग जाते हैं, तो खुद के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर हम वो काम भी कर लेते हैं जो कभी सोचते थे भैया ये काम हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डरते हैं। इसीलिए देखिए कॉन्फिडेंस होना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख है यानी कि 11 अगस्त और टाइम की बात करूँ तो 5:28 बज गए और आज बेहद खास डे मनाया जाता है। यानी कि सबसे पहले बात जापान की यानी कि माउंटेन डे, एक ऐसा दिन जब पहाड़ों की खूबसूरती और प्रकृति के महत्व को महसूस करने का संदेश दिया जाता है। यानी पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, हमारी प्रकृति की अनमोल धरोहर है। और जब प्राकृतिक पहाड़ों में हम घूमने जाते हैं ना, तो जितने भी दिमाग में खिचड़ियाँ पकती रहती है, डिप्रेस होते रहते हैं, सब छू बस अंदर से एक ही आवाज़ आती है कि यार ये जो पहाड़ है कितना खूबसूरत है और हमें यहाँ घूमने आना चाहिए, है ना। हम हमेशा यही सोचते हैं क्योंकि पहाड़ों में घूमना हर किसी को पसंद है। कौन ऐसा है कि भैया कहता हो कि मुझे पहाड़ में घूमना पसंद नहीं है। इनफैक्ट जब भी हम पहाड़ में जाते हैं घूमने के लिए, तो सबसे पहले हम तो एक काम करते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन मैगी पहाड़ों की ज़रूर खाते हैं। और जब मैगी पहाड़ों की होती है ना, तो और भी दिन है वो बड़ा खुश मिजाज हो जाता है। और साथ ही साथ आज एक और डे मनाया जाता है, नेशनल सन एंड डॉटर डे। यानी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, फोन को साइड में रखिए और बच्चों की बातें सुनिए, क्योंकि उनके लिए आपका समय बहुत ही बड़ा एक तोहफा होता है, बहुत ही शानदार होता है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बस हर घर में देखेंगे तो आप हर किसी के पास आज के टाइम में फोन अवेलेबल है और कोई भी ऐसा नहीं है कि फोन नहीं चलाता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक की बात करूं। और मुझे लगता है पेरेंट्स को ना, बच्चों को जितना आप समय देंगे ना, बच्चे आपके साथ कनेक्ट होंगे। कभी-कभी बच्चे डर जाते हैं कि मम्मी पापा से अपने दिल की बात कहें या ना कहें। इसीलिए जितना आप बच्चों के साथ फ्रेंकली रहेंगे, दोस्त की तरह रहेंगे, तो मुझे लगता है उनको किसी और की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी प्रॉब्लम ये है, ये जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो किसी और से नहीं बताएंगे, सिर्फ आपसे ही शेयर करेंगे। तो बच्चों को जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, घूमने जाइए और फोन को ना साइड में रख दीजिए। सच बताओ फोन को साइड में रखना ही बेटर होता है, क्योंकि फिर जो हम करते हैं यानी कि उसके बाद बच्चे भी वही सीखते हैं और फिर बच्चे भी बड़े होकर बस फोन में लगे रहते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं बच्चे हमें ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आपने वही सिखाया है। इसीलिए जो अभी आप सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। फिलहाल के लिए एक और म्यूजिकल ब्रेक श्रोताओं, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ, क्योंकि कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो गया भाई साहब। आरजू रीना के साथ कनेक्ट रही ऑल ऑन FM मुरादाबाद 89.6।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट हैं और समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके हैं मेरी जिया। और अब हम बात कर लेते हैं लोकल फॉर वोकल की, यानी कि अपने मुरादाबाद की बात कर लेते हैं श्रोताओं। तो आज सावन का महाशिवरात्रि और इस मौके पर बच्चों की आज छुट्टियां बीती और साथ ही साथ 15 अगस्त के लिए ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, उनमें यानी कि 8 बजे तक झंडा फहरा दिया जाएगा। और लाल किले यानी कि दिल्ली में लाल किले में तैयारियां भी बड़े जोरों शोरों से है, आप सभी को पता ही है। और आखिरकार क्या पहली बार ऐसा हुआ होने वाला है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं रिपीट करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक। तो देखिए 15 अगस्त को जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें 10 बजे तक सोना है, तो देखिए वो 15 अगस्त वाले दिन ना सोने का दिन नहीं होता है, क्योंकि खुशी के साथ साथ हमें उन जवानों, उन वीरों को भी याद किया जाता है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप जल्दी उठे और जब झंडा फहराया जाए तो आप उसमें शामिल होए, क्योंकि जब आप शामिल होंगे तभी आप अपने देश भक्ति जो आपके अंदर है उसको महसूस कर पाएंगे। और जो एक जुनून होता है झंडा फहराते हुए देखने का, वो आप नज़ारा देख पाएंगे। इसीलिए यानी कि सरकारी जो दफ्तर है ये कहा जा रहा है कि 8 बजे तक झंडा फहरा दिया जाएगा। तो आप भी डेडिकेशन के साथ सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर झंडा फहराने के लिए यानी कि उसमें सम्मिलित होइए, शामिल होइए और इस खूबसूरत नज़ारे को ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ हर घर तिरंगा ज़रूर फहराइए 15 अगस्त को। चलिए जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

और टाइगर मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। श्रोताओं, बंजारा अपनी धुन में दिल बंजारा, और मुझे लगता है कि अपनी धुन में मग्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी धुन में मग्न होते हैं ना तो आप बिंदास रहते हैं, बेधड़क रहते हैं। श्रोताओं, आर्जरीना आप सभी के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 5:50 हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि 24 साल बाद माधुरी दीक्षित यानी कि टीवी शो में दिखने वाली है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कल दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन क्या इंडिया में लगने वाला है या फिर कहीं और, अगर आप जानना चाहते हैं तो बस बने रही आर्जरीना के साथ। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद कनेक्ट होते हैं और फिर बताएंगे आपको कि यानी कि जो माधुरी दीक्षित है वो कौन से शो में 24 साल बाद दिखने वाली है, और साथ ही साथ इंडिया में सूर्य ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा।

0: sticky feelings.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: खेलों का आईना।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
7: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे, तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
6: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
8: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
6: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जेरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, 6:06 हो चुके हैं, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। गुड वाली इवनिंग है जी। और साथ ही साथ देखिए, 15 अगस्त को ये कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा जरूर फहराइए, क्योंकि हर घर तिरंगा फहराएंगे तो उसका अलग ही आनंद, अलग ही अनुभूति होता है। और साथ ही साथ मैंने आप सभी से बात भी करी थी कि माधुरी दीक्षित यानी कि कौन से शो में दिखने वाली है 24 साल बाद, यानी कि केबीसी शो में होस्ट करती हुई दिखेंगी। और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में कल सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला है। बहुत कन्फ्यूज थे कि भैया सूर्य ग्रहण इंडिया में लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, क्योंकि कल की तारीख है 12 अगस्त और कल सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला है। तो आप किसी भी प्रकार को आपको डर नहीं होना चाहिए, बेधड़क बिंदास होकर इंजॉय करिए, क्योंकि कोई सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है। और इसके बाद बात करेंगे श्रोताओं और भी ढेर सारी, यानी कि बस अर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट है, बहुत सारी बातें होंगी। और ये माधुरी दीक्षित का ही एक प्यारा सा गाना जो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक मैसेज है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी, गुड इवनिंग पहुंचाती है। वेरी गुड इवनिंग जी, वेलकम टू रीना मैम। अगले मैसेज की बात करूं तो दीपक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड इवनिंग सर। अगले मैसेज की बात करूं तो शालिनी जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुंचाती है। वेरी गुड इवनिंग जी। और आगे बढ़े अपने शो में तो पिंटू जी कनेक्ट हो चुके हैं दिल्ली से, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड इवनिंग जी। और आज देखिए, अगर हाईवे की तरफ से आप आ रहे हो तो हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वाला। तो अगर आप हाईवे पर हैं और मुझे और भी अपडेट दे सकते हैं कि कहीं पर और ट्रैफिक जाम है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। फिलहाल आप हाईवे की तरफ से जाने की सोच रहे हैं तो ये इरादा है वो चेंज करिए और दूसरा रूट आप पकड़िए, अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे जी। चलिए फिलहाल गाने सुनते

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त

जी, आप अपार्टमेंट सुखाते ही है, लेकिन सोलर पैनल है जो आपको यानी कि गर्मी से राहत भी देगी और साथ ही साथ बिजली की बचत भी होगी। तो हम बात करने वाले हैं यानी कि जो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, भाई दिल्ली से जो मुंबई मुंबई जाते हैं उनके लिए बहुत ही राहत भरा यानी कि जो काफी लॉन्ग सफर होता है, काफी टाइम लग जाता है जाने में, वहीं अब आपकी जो सफर है थोड़ा और भी कम होने वाली है, क्योंकि नई दिल्ली से मुंबई के लिए चलाए जाएंगी दो नई अमृत भारत ट्रेन। यानी कि अब जाने के लिए टाइमिंग भी आसान हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा, जो कि पहले काफी ज्यादा लगता था, वो समय थोड़ा कम लगने वाला है। और इसी के साथ साथ आज बॉलीवुड एक्टर यानी कि सुनील शेट्टी जी का भी बर्थडे है, सो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही शानदार गाना, उड़ जा काले का, और आप सभी के लिए कड़क सवाल भी लेकर आएंगे श्रोता।

0: पुराने गाने और पुराने फिल्मों की बात की जाए तो सच बताऊं, पुराने के जो गाने और फिल्में हैं ना, उन्हें देखकर अपनापन सा फील होता था कि यार ये मेरी कहानी है। हर हर घर की कहानी बिल्कुल ऐसी दिखाई जाती थी कि हर कोई मग्न होकर मूवी देखता था। लेकिन आजकल की मूवी है जो सर पैर कहाँ है भैया, समझ ही नहीं आता है। मेरे तरह अगर आप भी हैं पुराने मूवीज देखने के दीवाने, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। श्रोताओं नंबर है 9837 8968। यानी कि जो एक्टर होते थे ना, वो भी ऐसा लगता था कि यार, मतलब उन्हें देखकर एक एहसास होता था क्या अदाएं हैं उनकी। यानी कि एक्टर सिंगर की बार बार, यानी कि अपनी आवाज चेंज करना, हर अदा में अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी दिखाना, मजा आता था पहले के मूवी देख के, सच बताओ तो। और आज रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है, और अब हम बात करेंगे यानी कि आज बॉलीवुड एक्टर यानी कि सुनील शेट्टी जी का बर्थडे है। जिंदगी की एंट्री होते ही, यानी कि जब उनकी एंट्री होती है, तो स्क्रीन पर एक अलग ही दम आ जाता है। जी हाँ, हम बात हो रही है सुनील शेट्टी जी का। आज है 11 अगस्त, और उनका जन्म हुआ था 1961 में। जन्मे यानी कि सुनील शेट्टी जी ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम, यानी कि फर्स्ट मूवी थी उनकी बलवान, से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री करी थी। फिर उनको बहुत सारी मूवी में उन्होंने काम किया, मोहरा, दिलवाले, कृष्णा और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाई। और अगर गाने की बात करूँ तो ना कजरे की धार हो और साथ ही साथ तू चीज बड़ी मस्त मस्त, आज भी ये गाने जब सुनते हैं ना तो 90s की यादें ताजा हो जाती है। यानी कि जो 90s के गाने हैं ना भाई, सच बताओ एकदम मस्त दमदार वाला होता है। और आज उन्हीं की फिल्म से गाना सुनेंगे, कृष्णा मूवी से झांझरिया, छन से छनक गई झांझरिया। और साथ ही साथ बात करूं भैया, तो दिल्ली में भी यानी कि कावड़ यात्रा के चलते 24 घंटे यानी कि जाम लगी रही। सोचिए काफी लंबी कतार में लाइन, जो कि घर जाने वाले थे उनको भी काफी टाइम लगा। साथ ही साथ वाहनों की लंबी लाइन, क्योंकि आज देखा जाए तो आज के टाइम में हर घर यानी कि गाड़ियां है, और जब बाहर ट्रैफिक में होते हो तो छोटी मोटी जो गाड़ियां होती है, बाइक वगैरह, तो निकल जाती है जगह पतली गली बनाकर। लेकिन जो गाड़ी है और ट्रक है, वो कैसे निकले, नहीं निकल सकती नहीं जल्दी, इसीलिए लंबी लाइन कतार दिल्ली में देखा गया। और साथ ही साथ हाईवे पर भी यही देखा जा रहा है कि लंबी लाइन में यानी कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो इससे बचिए थोड़ा सा, क्योंकि भैया अभी तो ये सावन का दूसरा वीक है और अभी तो ये चलने वाला ही है।
1: 72 साल से
0: साथ ही साथ आप सभी के जो प्यारे मैसेज हैं उनको भी शामिल करेंगे और लेकर आएंगे आप सभी के लिए एक कड़क क्वेश्चन, जो थोड़ा सा दिमाग को तो देखिए घुमाना तो पड़ेगा, तभी आप बता देंगे। विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग।

हाँ जी सब बढ़िया। हाँ जी सब बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। भगवान जान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और आपके प्रोग्राम में हम शामिल हो गए हैं। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जी। बिल्कुल शुभकामनाएं। कृपया अपनी जो दोस्ती का लिस्ट है वो कम करिए, वरना आपका ही नाम मेंशन किया जाएगा, आपकी दोस्ती का लिस्ट नहीं मेंशन किया जाएगा। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं। मिट्टी से प्यार, मिट्टी से प्यार तिरंगे से नाता है, मिट्टी से प्यार तिरंगे से नाता है, यह देश हमारा है, यह सौभाग्य हमारा है। आओ मिलकर शपथ खाए, भारत को और भी महान बनाए। तिरंगा फिल्म का एक गाना सुनवा दीजिएगा जी। बिल्कुल। अगले मैसेज की बात करूं तो ललिता जी लिखती हैं, सावन की घटा छाई, बूंदों ने राग सुनाई, भोलेनाथ के नाम ने दिल को खूब सजाया, रीना मैम की मुस्कान लगे सावन की फुहार, आय हाय उनके हर दिन में बसे खुशियों की बहार, शिव की कृपा रहे हमेशा उनके साथ, हर कदम पर मिले उन्हें खुशियों का साथ। आपको भी मिले जी, सेम टू यू। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। मैम चाय पी लीजिए जी। बिल्कुल, आपका भी फास्ट होगा है ना, तो अभी बिना पूजा करे तो चाय कैसे पिए। लेकिन आपने पूछा, आपने पिया और हमने पिया, बात एक ही है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है जी। बिल्कुल, कभी धूप कभी ठंड, कभी हवाएं चल रही हैं, कभी फुहारे बरस रही हैं, मौसम तो अच्छा ही है। और इनका कहना है कि आज इनकी प्यारी सी भांजी का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे, और आप अपनी जिंदगी में यूं ही खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। और आज सुनील शेट्टी जी का बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे जी। बिल्कुल हैप्पी वाला बर्थडे। और इनका कहना है कि हमें पुराने मूवीज है वो बहुत ज्यादा पसंद है। दौलत बाग मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं अंसार हुसैन जी, और इन्हें कहना है कि हमें रीना जी, हमें पुराने गाने और पुराने फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या बात है जी, अच्छी बात है सर, पुराने गाने फिल्में बहुत अच्छे होते हैं। और सुनील शेट्टी की कृष्णा मूवी से गाना सुनते हैं, झांझ

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा जिला सांबा है और तहसील मेरी रामगढ़ है। मेरे को खेती करते कोई कोई 10-15 साल हो गए। जमीन मेरे पास 16 कनाल है, खड़ी फसल पर ओले पड़े हैं, सारी बर्बाद हो गई। इस बार धान की फसल का मिला है हमें 63,000 मुआवजा मिला था, बहुत फायदा हुआ इसका। जो बहुत जरूरी है, दोनों फसल का जो करवाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: और इसी बीच हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं कड़क सवाल श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 6:38 हो चुके हैं, गुड वाली इवनिंग है जी। इसी बीच बहुत ही शानदार वाला कड़क सवाल है, अगर आप पक्के देशवासी है तो इसके आंसर आज फटाफट देंगे जी। चलिए आज पूछते हैं आप सभी से राइट आंसर, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन किसने किया था, उनका नाम बताना है। नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, उनका आपने नाम बताना है। सोचिए और मैसेज करिए। अगला गाना भी बहुत ही शानदार है, गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं।

क्या बात है जी, मेरी शान तिरंगा है और इसके साथ अर्जेंटीना कनेक्ट हो गई है। जय हिंद, जय भारत। समय की बात करूं श्रोताओं, तो 6:44 हो चुके हैं और आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और एक ऐसी कहानी, कहते हैं ना, जब आपके अंदर जुनून हो, जोश हो, तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आप नहीं कर पाएंगे। हर मुश्किल राहों को भी आप पार कर जाएंगे। कहते हैं ना, जो धूप में चलना सीख जाता है वही छाओ की असली आनंद लेता है। आखिरकार ये बात मैं क्यों कर रही हूं? क्योंकि एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करती है, असम का नाम रोशन करती है, जो कि एक झोगी झोपड़ी में रहती है, तिरपाल का घर बनाकर रहते हैं उनके फैमिली वाले। और उस लड़की ने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने असम का नाम रोशन कर दिया है। और साथ ही साथ जब वो गोल्ड मेडल जीतकर घर पहुंची तो पता चला कि बाढ़ में उसका घर बह गया है।

0: और फिर उनके घर वालों ने यानी कि तिरपाल बनाकर रहते थे, और उस लड़की ने अपने देश का नाम रोशन करा, जबकि फ्लाइट का किराया भी नहीं दे पा रही थी, लेकिन इनकी मदद की गई और उसके बाद ये गोल्ड मेडल यानी कि जीत कर लेकर आई। कहते हैं ना भैया, लड़कियां हैं वो सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित नहीं रहती है, सोचिए जब वो खाना बना सकती हैं तो वो क्या नहीं कर सकती है। हर काम वो कर सकती है जब वो खाना बनाना सीखती है, तो खाने बनाने के साथ साथ नमक मसाले कितने डालने होते हैं हर चीज का नॉलेज होता है, और साथ ही साथ देश दुनिया के बारे में भी उसकी पूरी खबरें होती है, और साथ ही साथ खेल में उतना रुचि यानी कि गरीबी भी हार गई उसके जीत के आगे। तो देखिए, किसी में भी कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही तो है जो सब काम कर सकते हैं, बस आप अपना कदम आगे बढ़ा कर तो देखिए। और आज का मैंने आप सभी से कड़क सवाल भी पूछा है, पक्के देशवासी है ना भैया, तो आप सच बता रहे हो, आज मैसेज आप जरूर करके बताएंगे, अदरवाइज या तो फिर आपको पता ही नहीं है इसका आंसर। लेकिन देखिए रीना, जब अपने शो में आती है ना तो दिमाग पर जोर तो डालना ही पड़ता है जी, ऐसे कड़क सवाल लेकर आती है आप सभी के लिए। यानी कि आज का कड़क सवाल देखिए बहुत ही आसान भी है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? केसरिया, सफेद, हरा रंग और बीच में अशोक चक्र के अंदर 24 तिलियां, इन सभी के डिजाइन किसने किया है? उनका अपने नाम बताना है। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है श्रोताओं। फिलहाल एक कमर्शियल म्यूजिक ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM। सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: चलिए जी, हम आपसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, बस कनेक्ट हो जाते हैं आप सभी के साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे,
1: वतन
0: गुनगुनाते रहे जी।
1: जान जान जान मन ये समा ये बहार, दिल फिदा जान सा है वतन।
0: और आज का कड़क सवाल भैया बहुत आसान पूछा है मैंने आप सभी से, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? केसरिया सफेद हरा रंग ऊपर से यानी कि अशोक चक्र 24 तिलिया जो आसमान में जब लहराता है तो इतना शानदार लगता है और हर भारतीय का गर्व है वो जब अपने तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किनका मैसेज आया है हमारे पास। अरे मैडम गाना प्ले कर दीजिए। सर कौन सा गाना प्ले कर दे, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, ना ही अपना नाम बताया आपने। अगले मैसेज की बात करूं तो हर हर महादेव रीना जी, हर हर महादेव सर, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हैं आप, बताइए कैसे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सेम टू यू सर, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इनका कहना है कि आपके सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम कल विनर बन चुके थे, तो मुझे लगता है कि किसी और को भी चांस मिलना चाहिए। क्या बात है सर, यानी कि आपको राइट आंसर पता है, समझ गए। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बढ़ू तो, मेरा नाम राजकुमार है और ये मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। और इनका कहना है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी ने यानी कि डिजाइन किया था, उनके द्वारा 1921 में तैयार किया गया मूल डिजाइन को ही यानी कि संशोधित करने का वर्तमान तिरंगा स्वरूप में दिया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को इसको पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया था कि अब यही झंडा फहराया जाएगा। जय हिंद जय भारत। और ये लाइनें भी लिखते हैं, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, तिरंगे से पावन कोई कफन नहीं होता। अरे अरे क्या बात है, सैल्यूट है सर आपको। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि महान। अच्छा भैया अब मुझे पता चला कि गूगल से सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दिया है आपने, क्योंकि सेम आंसर है ये दोनों। तो क्या बात है सर, गूगल कहते हैं ना चोरी भी सर अकल से करनी चाहिए तभी आप विनर बन पाएंगे, अदरवाइज पकड़े गए। सीधा गूगल से उठाया, ऐसी चेप दिया आपने। चलिए इनका भी कहना है कि 22 जुलाई 1947 को हमारे ध्वजा को यानी कि मूल रूप से लहराने का मौका मिल गया था, यानी कि इसको जो इसकी जो काफी टाइम से चल रही थी कि यही तिरंगा यानी कि फाइनल किया जाए, तो फाइनल कर दिया गया था। और इसकी डिजाइन की थी यानी कि पिंगली वेंकैया जी ने। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद यूपी से यानी कि मंसूरी कॉलोनी से कनेक्ट होते हैं इरशाद हुसैन अंसारी शैयद शारिक अली, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं आप, बताइए कैसे हैं? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और राइट आंसर है पिंगली वेंकैया जी। और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का यानी कि डिजाइन किया था जी। इसकी बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी का राइट आंसर होता है पिंगली वेंकैया जी। पिंगली वेंकैया जी, ललिता जी का भी कहना है थैंक यू जी, वेलकम जी। अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि भैया सही उत्तर है, लॉक कर दिया जाए, ये है पिंगली वेंकैया जी। ओके जी, अरे भाई साहब विक्की भैया ने तो एक ही काम करा है भैया, फोटो खींच के भेज दिया है पिंगली वेंकैया जी ने, लेकिन आपने भी चीटिंग करी है, गलत बात है सर। राजा कश्यप जी कनेक्ट हो गए हैं चौराहा गली से, डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया जी ने। लेकिन आज के शो के विनर बनते हैं राजकुमार जी। राजकुमार सर आप विनर बन गए हैं, यानी कि इवनिंग मस्ती शो के। और इसी के साथ श्रोता मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, क्योंकि आज मैं जल्दी जा रही हूँ आप सभी के साथ कनेक्ट, क्योंकि आज थोड़ा काम आ गया इसलिए जाना पड़ेगा। फिलहाल एक गाना सुनिए और एंजॉय करिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह।

मुझे फिर से कनेक्ट होना पड़ गया क्योंकि मैसेज आ गए हैं। ये भूपेश शर्मा जी नगर पंचायत बागबाड़ा से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि सभी सुनने वालों को और सभी आरजे को श्रावण मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं सर।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज जी भर के हमसे मोहब्बत कर लो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है।
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती हैं।
4: फैमिली ज्यादा।
3: जी मैम,
2: हमारे जो माननीय
3: माननीय
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन,
2: जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर

0: जा रहे हैं।
1: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
0: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
1: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
0: गेहूँ, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
1: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
0: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं
0: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
1: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
0: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
1: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
0: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
0: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल। ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी, जी,
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी, जी, जी, जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक
1: सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट।
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
0: ओके।
1: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है तो
0: जी जी।
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं उनको नहीं पता होता है। वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
0: जी।
1: तो हम कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
0: Okay.
1: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
0: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
0: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिसे पता,
1: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीज हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
1: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: ठीक है, बहुत
1: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: ठीक है, तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं, अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहनाने हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए, और उनको कब नहलाना चाहिए, बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं। तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू। तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
1: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
1: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
1: ठीक है
0: हाँ।
1: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
1: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर
0: जी,
1: हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कत करते हैं, ठीक है, और उनमें इंफेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।

0: की राजधानी के सभी अस्पतालों में ऐसे मामलों के लिए बेड का इंतजाम भी किया गया है।
1: हमारे हर हॉस्पिटल में उसके लिए बेड की व्यवस्था, साथ में आईसीयू में वेंटिलेटर की भी अलग से इमरजेंसी हो रही है। और अभी तक से पेशेंट आए लेकिन वो ठीक होकर अपने घर जाए, और हम डॉक्टर विद मेडिसिन सब कुछ हर हॉस्पिटल में प्रिपरेशन है और कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई है अभी तक से, ये एक अच्छी अवश्य है।
0: दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी विदेशी नागरिक 15 दिन की तय समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके हुए थे। पुलिस ने विदेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, 7 डबल एंट्री वीजा और 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साथ ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी लोगों को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री सिरसा ने कहा कि बजट होने के बावजूद पिछले 3 सालों में पूंजीगत व्यय में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कई योजनाएं लाई लेकिन उन्हें कभी लागू नहीं किया गया।
2: इम्पोर्टेंट बात एक जो और सामने आई कि बहुत सारे हेड को तब्दील इधर उधर किया गया जिनकी जरूरत नहीं थी, और कई जगह तो पैसा और भी मांगा गया और मांगने के बाद पता चला कि वो भी सरेंडर कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी उस पर चर्चा होगी और आपके सामने वो भी लेके आएंगे।
0: दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने 2020 दंगों की साजिश को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि हिंसा को श्री ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। श्री सूद ने कहा कि पिछली सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन का बार बार बचाव किया और उसे राजनीतिक संरक्षण देने का भी प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधायकों के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर डॉ बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर समाप्त हुई। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का यह अवसर तिरंगे के तले दिल्ली और देश की सेवा करने के संकल्प को दोहराने का मौका देता है।
3: तिरंगा यात्रा पर 2014 से ही प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद, देश की सेवा में आने के बाद से ही तिरंगा यात्रा का पूरे दिल्ली भर में और देश भर में आह्वान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का ये मौका तिरंगे की छाव में दिल्ली और देश के लिए सेवा के संकल्प को पुनः लेने का अवसर होता है।
0: राजधानी के अक्षरधाम मंदिर में आज आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिसर में 4 नए टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ किया। सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है और देश की राजधानी होने के साथ साथ इसका ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज इन सभी पहलुओं को देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
4: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के प्रभावी उपयोग से अब सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सुगम और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में सरकारी खरीद प्रक्रिया पहले छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए कठिन और अधिक समय लेने वाली थी। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सरकारी खरीद में जेम के बढ़ते उपयोग और सेवाओं की खरीद में लगातार बढ़ रही भागीदारी को देखते हुए दिल्ली को सस्टेन्ड सर्विस प्रोक्योरमेंट एडॉप्शन श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जेम के माध्यम से सेवाओं की खरीद में बढ़ती हिस्सेदारी और जेम के फायदों को पहचानते हुए दिल्ली के सरकारी खरीदारों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जेम के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के लगभग 600 करोड़ रुपए के 156% अधिक है। वहीं इसको बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 65 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें 3600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि रोजगार, नवाचार और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि हर एमएसएमई को अवसर, हर उद्यमी को पारदर्शी बाजार और हर छोटे कारोबारी को आगे बढ़ने का मजबूत प्लेटफॉर्म मिल सके। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 8 सितंबर कर दी है। एक रिपोर्ट।
6: अभी तक के 49 कार्यक्रमों के अलावा CDOE ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 11 नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य अपने शैक्षणिक दायरों को बढ़ाना और सीखने वालों को आवश्यक शैक्षणिक भाषा और व्यवहारिक कौशल का अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 22 अगस्त के बजाय 19 सितंबर को होगी। दोनों कार्यक्रम के लिए परीक्षा केंद्र JMI कैंपस के अंदर ही होगा और इसकी जानकारी एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी ने जरूरी और कौशल आधारित कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक अवसरों को मजबूत करने और विश्वविद्यालय की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115

बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग को फिक्की पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड में प्रतिष्ठित बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के लिए प्रदान किया गया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन है। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाये रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कल अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कई विधेयक जहां पारित किए गए, वहीं शून्यकाल में कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए। शून्यकाल के दौरान मोतीनगर विधानसभा के सुदर्शन पार्क में भूमिगत जलाशय बनाने का मुद्दा क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना ने उठाया। भाजपा विधायक श्याम शर्मा ने एक बार फिर गायों मवेशियों के सड़कों पर खुलेआम छोड़े जाने का मामला रखा। वहीं भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने जीटीबी अस्पताल में अनुबंधित कर्मियों को निकाले जाने का मामला सदन में रखा। इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन में प्रस्ताव रखा कि दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना निरसन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए सदन में हंगामा किया। नारेबाजी के बीच सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने पर फिर नारेबाजी चलती रही और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सदन में रखे गए दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने सदन में फिर हंगामा और नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर सुरक्षाकर्मियों ने आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार, जुबैर अहमद सहित लगभग सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली शयन कक्ष और भोजन संस्थापना निरसन विधेयक 2026 को भी पारित किया गया। विधानसभा में आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इसके साथ ही श्री सूद ने दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक 2026 सदन पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत नेशनल बिल्डिंग कोड शब्द की जगह केवल बिल्डिंग बायलाज रखा जाए, जिससे आने वाले समय में अग्नि सुरक्षा संबंधित नियम सुव्यवस्थित हों। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 7 अगस्त को सदन पटल पर रखी गई दिल्ली सरकार से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के ऊपर प्रस्तुत कागजातों पर चर्चा की गई। साथ ही 10 अगस्त को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऊपर भी चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस आम आदमी पार्टी ने 34 योजनाओं में 2961 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीओजी रिपोर्ट संख्या 1 में मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सीएजी की टिप्पणियां, लेखा परीक्षा निष्कर्ष और निष्कर्षात्मक टिप्पणियां शामिल हैं। इसके बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सरकार ने डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो।
सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के अंतर्गत दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद हुई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: हेलो जी, हाय, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज का शो बहुत ही खास है, और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास दूर से मेहमान जुड़ने वाले हैं आपकी शाम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। 23 जून की इवनिंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एंड इस शो में मैं बिल्कुल भी आपके साथ अकेला नहीं हूँ। ऑफकोर्स आई हैव विद मी, कौन है? हेलो जी, हेलो,
0: मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची, और आप सुन रहे FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, और आज हम आ गए आपकी शाम को और भी शानदार
5: बनाने। लेकिन प्राची, तूने ये नहीं बोला हाय ब्यूटीफुल माय पीपल।
0: ओ, ये तो मैं भूल गई थी, पर थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल।
5: यस यस,
0: हाउ आर यू ऑल डूइंग?
5: एब्सोल्युटली, सब लोग बहुत ही फैंटास्टिक हैं, और हम लोगों की बकवास सुनने के लिए सब रेडी हैं। तू रेडी है सुनाने के लिए?
0: इससे जोक्स
5: अपार्ट, हमारे पास बहुत सारी अच्छी बातें हैं, डोंट वरी। आज एक स्पेशल गेस्ट है, पता है प्राची, हमारे शो में।
0: हाँ हाँ, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उन्हें
5: एब्सोल्युटली इंट्रोड्यूस करने के लिए,
0: लोगों से इंट्रोड्यूस करने के लिए। एब्सोल्युटली
5: एब्सोल्युटली, ट्रू ट्रू। बड़े काम करते हैं, पहले एक अच्छे से गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर उनको मिलवाते हैं, राइट? चलो जी, आप कहीं मत जाओ, तब तक के लिए हम जो एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, आप सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6, आते हैं लौट के जरा सी देर में। हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू, रेडियो
0: बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: वेरी गुड।

0: पूछना चाहते हैं, आपने तो आके धड़ मेरी और प्राची की लाइन ही काट डाली, सब कुछ तो आप ही ने बोल दिया। वेरी गुड। सो पूनम, आप बताओ कैसे हालचाल है? आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं हमारे रेडियो श्रोताओं के सामने, बिल्कुल है ना?
1: जी हाँ बिल्कुल। और रेडियो जॉकी जब तीन रेडियो जॉकी मिलते हैं ना तो
0: खिचड़ी तो नहीं पकी की बातों की, कुछ और ही होगा बहुत बड़ा सा, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत मस्ती धमाल हो जाती है जब हम सब एक साथ मिलकर बातें करते हैं तो। और क्या मस्ती धमाल होने वाला है ये तो आपको रेडियो चौकी आनंद जी और प्राची जी बताएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी रेडियो चौकी है ऐसे बोल के हमें जो है शर्मिंदा ना करें, क्यों प्राची?
2: आपकी शेर और शायरी जो हमने सुनी पहले, हम तो बिल्कुल आपके फैन हो गए और हम चाहते हैं हमारे रेडियो लिसनर्स को भी प्लीज आप अपनी कुछ शायरियाँ सुना दीजिए।
0: अभी तो नहीं सुनवाऊंगा मैं इतनी जल्दी कैसे सुनाने के लिए मौका दूंगा पूनम, थोड़ा इंतजार करवाएंगे ना लिसनर्स को, है ना?
1: जी हाँ बिल्कुल, और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा तो पूनम एक बात बताओ, अभी थोड़ा सा आपसे पहले बतिया लेते हैं, आपके यहाँ का मौसम का हालचाल बताओ कैसा हो रहा है?
1: कि हमारे यहाँ का मौसम तो बहुत ही, क्या ही बोले अब आनंद जी, बहुत गर्म मौसम है और बारिश हो नहीं रही है, बस बारिश का इंतजार है। जैसे कि आप सब इंतजार करते हैं वैसे हम भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बस बारिश हो जाए।
0: क्या बात है क्या बात है। और बाकी कानपुर के ठगू के लड्डू तो बहुत खा रही हो आजकल आप, हमें सुनने में आया है।
1: ठगू के लड्डू तो क्या ही कहना आनंद जी, आइए आप दोनों आइए, मैं बिल्कुल ठगू के लड्डू खिलाऊंगी। और
0: तुम्हें पता है प्राची कानपुर में ठगू के लड्डू बहुत फेमस है, प्राची से पूछ लेते हैं जरा।
2: अरे नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि ठगू के लड्डू क्या होते हैं, प्लीज आप हमें पूनम जी बताइए क्या होता है।
1: प्राची जी एक बार खाएंगी ना तो बार बार खाएंगी।
0: अरे वाह,
2: अच्छा कुछ रेसिपी शेयर करिए।
0: रेसिपी शेयर नहीं करेगी, वो बहुत फेमस लड्डू है, उसकी रेसिपी थोड़ी शेयर कर देंगे हम सस्ते में, है ना क्यों पूनम?
1: हाँ जी बिल्कुल,
2: मेन मेन इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए।
0: हाँ हाँ, ये हो सकता है कि ठगू के लड्डू में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो इसको जानना है।
1: अच्छा जी, तो वो तो फिर ठगू के पास चलना पड़ेगा।
0: हाँ एग्जैक्टली,
2: ठगू ठगू
0: काफी कानपुर का दिस इज वेरी पॉपुलर लड्डू, पता है? हाँ या जैसे आगरा का पेठा फेमस है ना, वैसे ही कानपुर के ठगू के लड्डू, दिस इज वेरी।
2: पर लड्डू का नाम जो ठगू रखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है, इसकी क्या कहानी है?
0: इसकी कहानी हम बाद में सुनाएंगे, क्यों पूनम एक गाना सुने फिर अच्छा सा।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस गीत के बाद पूनम और प्राची की हम आपस में गिराएंगे क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं किया, एक दूसरे से बात नहीं की,
2: और मैं आपको बताऊंगी पूनम और प्राची में खास कनेक्शन।
0: एब्सोल्युटली, तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
2: बजाती रहिए गुनगुनाती रहिए।
0: क्या बात है, एक ब्यूटीफुल ट्रैक,
1: सुनाते रहिए।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन, एक ब्यूटीफुल ट्रैक। उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ पूनम के साथ, और साथ में प्राची भी दे रही है मेरा साथ। सो चलिए वापस चलते हैं अपनी प्यारी सी दोस्त पूनम के पास। पूनम क्या कर रही है, वो सो तो नहीं गई हमारी बातें सुन के? हेलो
1: हेलो,
0: मुझे लगा पूनम सो गई होगी। वेलकम बैक है पूनम जी। हाँ जी,
1: बिल्कुल शुक्रिया है बहुत आपका।
0: पूनम पूरा मुरादाबाद आपकी आवाज सुन रहा है आज की शाम। पहले तो ये बताओ कैसा फील कर रही हो
1: जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं और हमारी आवाज को भी सुन रहे हैं। तो सभी लिसनर बताएंगे कि लिसनर को कैसा लग रहा है कार्यक्रम सुनकर।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में सबको बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि पूनम और प्राची की थोड़ी बातचीत कराएंगे, तो पूनम जी मैं चाहूंगा हमारी प्राची जो होस्ट है उनसे भी आप थोड़ी बातचीत करें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो प्राची जी।
2: हेलो पूनम जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम एक साथ तीन इकट्ठा हुए रेडियो जॉकी। तो बताइए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है प्राची जी बात करके और कार्यक्रम में जुड़ के?
2: बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम ठीक कहा कि हमें बहुत मजा आ रहा है कि हम तीन आज एक साथ जुड़े और हम बहुत सारा फन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और जैसा
1: खिचड़ी पका रहे हैं हम, है ना?
2: और पूनम जी, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपकी और मेरे नाम में एक खास कनेक्शन है, इसको हम अभी बता देते हैं अपने लिसनर्स को कि जो पूनम नाम है वो मेरी मम्मी का नाम है। तो जब मैंने आपका नाम सुना ना कि आपका नाम पूनम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
1: क्योंकि आपका नाम प्राची, मम्मी का नाम पूनम और मेरा नाम पूनम, क्या कनेक्शन है यार।
2: और वो विवाह मूवी वाली पूनम याद आ जाती है ना
1: जी। जी, तो हम दोनों का देखिए कितना बढ़िया कनेक्शन है और कितना बढ़िया सहयोग है आज कि हम तीनों इकट्ठा हैं एक साथ।
2: और वैसे हमारे लिसनर्स, आप बताइए कि जो पीपी नाम की गर्ल्स होती है उनका जो होता है वाइब्स ज्यादा मैच करती है। मेरी अब तक जितने भी पी नाम वाली फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरी वाइब्स बहुत मैच करती है। तो लिसनर्स, क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतना पूनम पूनम हो गया है हमारी शादी में। पूनम जी, वो गाना तो डेफिनेटली लगता है,
2: प्ले करना पड़ेगा
0: प्ले, है ना?
2: हमारी शादी को
0: अभी हफ्ते हैं बाकी, चार चार सौ बरस लगे, कुछ ऐसे गाना है। पूनम जी, इतना पूनम पूनम हो गया है तो ये विवाह फिल्म का गाना तो सुनना बनता है। हो पूनम हो पूनम हो प्राची हो पूनम, अच्छा गाना है ये ना।
1: अच्छा, आप भी गुनगुना रहे हैं?
0: हाँ जी हाँ जी। तो पूनम जी, कुछ लाइनें हो जाएं इस गाने से पहले, हम चाहेंगे कि कुछ इरशाद अर्ज किया है पूनम जी आपने हमारे श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल, तो मैं सभी लिसनरों के लिए बोल देती हूँ एक अच्छी सी लाइन और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो सुनिए आनंद जी।
0: जी जी,
1: ध्यान से सुनिएगा और मैं अब अर्ज कर रही हूँ। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते।
0: वाह।
1: फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी नहीं मुरझाते, बच जाते हैं वो एक दिल में आकर जो दिल से कभी नहीं जाते।
0: वाह।
2: अरे वाह।
1: तो फिलहाल ये जो लाइनें हैं लिसनर, आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी को हम बोलेंगे और आप सभी सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और

0: Excuse me.
1: Excuse me, tea, coffee?

0: वेलकम बैक यू लिसनर, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आप जुड़े हैं प्राची आनंद और पूनम जी के साथ।
1: बिल्कुल, और पूनम जी हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज की शाम, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ठगू के लड्डू की स्टोरी प्राची को जाननी थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने इसको ठग लिया बातों बातों में, है ना पूनम?
2: हाँ, तो कानपुरिया का यही तो काम है ना, कानपुरिया जो होते हैं ना, वो पहले बातों बातों में ठग लेते हैं।
1: बेचारी प्राची सीधी साधी लड़की, उसको क्या पता कि कानपुरिया बहुत कंटाप मारते हैं।
2: बिल्कुल,
1: बहुत भौकाल मारते हैं, पता है।
0: अच्छा, तो पूनम जी यही स्टोरी है क्या, जो मतलब इसलिए लड्डू का नाम ठग्गू पड़ गया?
2: नहीं नहीं, ये तो वैसे स्टोरी नहीं है, और स्टोरी तो कुछ और ही है ठग्गू की, लड्डू की। फिलहाल तो फिर कभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर जानेंगे क्या स्टोरी है।
0: जब से आपने मुझे ठग्गू की लड्डू के बारे में बताया है ना, तो मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि ठग्गू लड्डू ठग्गू कैसे बन गया।
1: प्राची की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और मेरे अंदर की स्वाई बाहर निकल गई है, क्या मैं सुना जू?
2: हाँ जी बिल्कुल, सुना दीजिए।
1: ठीक है, मेरी शायरी है कि भैया आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए आप हमारे साथ अपना साथ, आपसे ही तो हमारे शो की जान है।
0: अरे बाबा, और इस शायरी को हम डेडिकेट करते हैं अपनी आरजी पूनम जी को, क्योंकि आज उन्होंने हमारे शो में आके हमारा जो मतलब एनर्जी लेवल है
1: पूरा अलग कर दिया,
0: बहुत हैपनिंग कर दिया है, और हम सच में बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं आपके साथ आरजी पूनम जी। तो थैंक यू सो मच
1: फॉर कमिंग ऑन आवर शो।
2: बिल्कुल, मैं भी एक शायरी अर्ज कर देती हूँ सभी श्रोताओं के लिए, और शायरी कुछ इस तरह से है। कश्ती खोल हुए किनारों का पता खोज लेती है, कश्ती खोल हुए किनारों का पता खोज लेती है, आए हुए तूफानों का रुख मोड़ देती है। जिंदगी इस तरह से बदलती है, जिंदगी कुछ इस तरह से बदलती है कि जहाँ भी मोड़ो जिंदगी और मुड़ जाती है।
1: वाह वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मतलब आनंद आ गया जिसको पढ़कर। अब मुझे लगता है कि प्राची भी कुछ सुनाने वाली है पूनम जी इसी बात पर।
2: जी हाँ बिल्कुल, अब प्राची भी बिल्कुल सुनाने वाली है और हम सब सुनने वाले हैं।
1: वेरी गुड,
0: थैंक यू सो मच पूनम जी कि आप मेरी शायरी सुनने के लिए इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। तो आपके लिए और हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मुझे याद आ रही है। दिल की बात जुबान तक आती है, दिल की बात जुबान तक आती है, और जुबान से गीत बन जाते हैं, और जुबान से गीत बन जाते हैं। आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, आप फरमाइश भेजते रहिए दोस्तों, यही सारा महफिल मुस्कुराहट बन जाती है।
1: वाह वाह वाह वाह, दोस्तों अभी फरमाइश मत भेजिएगा, क्योंकि अभी हम आपकी प्ले नहीं कर पाएंगे फरमाइश। प्राची ने इसमें फरमाइश का जिक्र कर दिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी बात है, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी बातों की, आप फरमाइश भेजिए अपनी प्यारी प्यारी शेरो शायरी की, वो हम पढ़ेंगे, उनको हम शामिल करेंगे। गाने तो आप सुनते ही रहते हैं, क्यों प्राची?
0: बिल्कुल सुनते रहते हैं।
1: तो पूनम, इस पे कुछ कहना चाहोगी इस शायरी पे आप?
2: जी मैं तो बस यही कहूंगी कि श्रोताओं, इतनी अच्छी थी जो शेरो शायरी आप सब सुन रहे हैं ना, और बातों की जो खिचड़ी हम सब पका रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। और आप सभी को शेरो शायरी जैसे कि हम सब कह रहे हैं वैसे ही याद आ रही हूँ, तो आप भी शेरो शायरी भेज सकते हैं और अपने अंदाज में, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी बात में मैं पूनम जी आपके लिए कहना चाहता हूँ कि दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती वादा है उम्र भर निभाने का।
2: बिल्कुल, आपने बोली है आनंद जी, शुक्रिया।
1: मैं चाहूंगा इसी पर दो लाइनें आपकी भी हो जाएं पूनम जी।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो इसी बात पे मैं भी एक सारी अर्ज कर देती हूँ जो की मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए बोलते हैं। ना दिन को करार ना रातों को चैन है, ना दिन को करार ना रातों को चैन है, देखते हैं बस आपको एक झलक, दिल हो जाता बेचैन है।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात पर एक गाना तो निकल रहा है हमारे दिल के तरंगों से, एक बेहतरीन ट्रैक आपके लिए निकल रहा है पूनम जी, हम आपके लिए गाना भेजते हैं, ठीक है?
2: जी बिल्कुल
1: और श्रोताओं आपके ही मत जाइए, पूनम जी हमारे साथ बनी रहेंगी इस प्रोग्राम में। अगर आप भी कुछ ऐसी प्यारी बातें करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कहाँ पर मैसेज करेंगी प्राची?
0: आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 9837896896 पर।
1: चलो एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद आप

0: वेलकम बैक है खूबसूरत ट्रैक। आज 23 जून है, आनंद के साथ हैं, साथ में प्राची है और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। यस, आज हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हैं कानपुर से, जो अपने आप में एक बहुत ही बेमिसाल और कमाल की आर्टिस्ट हैं, रेडियो जॉकी भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करती हैं और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। प्राची, उनकी आवाज कितनी मजेदार लग रही है ना, तुझे जेन्युइनली बता।
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे पूनम जी की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे सच में पूनम जी की वाइब्स हमसे इतना मैच कर रही हैं कि हम जो हमारा शो है और जो हमारा जो एंजॉय जब भी हम शो करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, अच्छा फील करते हैं, पर आज पूनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो हमारा जो ये एंजॉयमेंट का जो लेवल है वो और भी हाई हो गया है। सो थैंक यू सो मच आरजी पूनम जी कि आपने आके हमारे शो को और भी मजेदार बना दिया है और हमारी लिसनर्स को भी 100% बहुत बहुत मजा आ रहा होगा।
0: बिल्कुल पूनम, तो अब आप बताइए पूनम, इतनी सारी तारीफ लेके आप कहाँ जाएंगी, कानपुर जाएंगी या सीधा लखनऊ या मुरादाबाद आना चाहोगी?
2: मैं आसमान में उड़ूंगी।
0: नहीं, आसमान में मत उड़िए। हाँ बोलो।
2: इतनी सारी तारीफ जब हमें मिलती है ना तो मैं ऊपर आसमान में उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है।
1: पर पूनम जी सच में ये तारीफ नहीं है, ये कोई ऐसी कोई बटरिंग नहीं है, ये हमारे दिल के सच्चे अल्फाज हैं आपके लिए।
2: जी जी जी, थैंक यू।
1: इन्हें आप संभाल के रखिएगा प्लीज।
2: थैंक यू
1: सो मच।
0: बहुत बढ़िया, आप ऊपर उड़ोगी तो हम आपको खींच लेंगे उड़ते बादल से। पूछो कहाँ गई है पूनम।
2: अच्छा, तो आप पता पूछ लेंगे उड़ते बादल से।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पूनम जी, मुरादाबाद की तमाम जनता इस वक्त गाड़ियों में आपको सुन रही है, तो आपके मन में नहीं ख्याल आता कि कभी मुरादाबाद जाना चाहिए, मुरादाबाद की जनता से मिलने, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल पूनम जी, मुरादाबाद की जनता और मुरादाबाद की आरजीज आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेताब है, आप कब आएंगी?
2: हाँ, तो मैं मुरादाबाद बहुत जल्द आऊंगी। सब जो जितने भी हमें पता सुन रहे हैं ना, सभी को एक सरप्राइज मिलेगा जब मैं आऊंगी मुरादाबाद में। और सबसे पहले तो मैं आनंद जी आपसे मिलने आऊंगी, प्राची जी से, क्योंकि आपकी आवाज और आपका जो अंदाज है ना, मुरादाबाद को सच में हिला के रख देता है।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच। और आप भी और आपके ठगू के लड्डू भी जो है हमें हिलाने को तैयार बैठे हैं।
1: प्लीज आप ठगू के लड्डू लेकर आइएगा, क्योंकि ठगू के लड्डू हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे हमें ठगा हुआ
2: फील होगा, क्या है इसके पीछे, क्योंकि ठगू का लड्डू जो है ना
1: कैसा टेस्ट आता है,
2: बहुत मन हो रहा है खाने का।
0: नाइस नाइस, लेकिन ये तो कानपुर में हर जगह पर मिलते हैं, कुछ ही जगहों पर फेमस है।
2: हर जगह पर हम ठगू के लड्डू खा सकते हैं, कानपुर भर में ही खा सकते हैं बस।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अलावा और लखनऊ वगैरह में नहीं मिलेंगे ना?
2: नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे ठगू के लड्डू, बस एक ही दुकान है कानपुर में, वहाँ पे जाके खा सकते हैं।
0: ओके ओके ओके, मतलब काफी स्पेशल वाली कह सकते हैं वाइव है ना लड्डू की, और कहीं मिल ही नहीं पाएंगे वो।
2: जी जी जी, और कहीं वो लड्डू मिल ही नहीं सकते हैं।
0: ओके, तो पूनम जी, लड्डू मिले ना मिले, आपकी शायरी तो चाहिए मेरे मुरादाबादीज को, बड़ी देर से इंतजार कर रहे, तो कुछ हो जाए प्यारी सी शेर व शायरी।
2: हाँ बिल्कुल, तो बड़ी देर से इंतजार हो रहा है मेरी शायरी का, चलिए मैं सुना देती हूँ एक बहुत प्यारी सी शायरी है। भूल गया हमको ये जहाँ, मगर इस जहाँ को ना हम भूल पाए। भूल गया हमको ये जहाँ, मगर हम इस जहाँ को ना भूल पाए। समझ गए हम इस प्यार को, मगर लोग हमें ना समझ पाए।
0: क्या बात है पूनम जी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, रुमाल कर दिया, बहुत बढ़िया।
2: जी जी, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लग रहा है आप सभी से बातें हो रही हैं और इतनी अच्छी सी सरो सारी और इतनी प्यारी सी चटपटी सी बातें सुनने को मिल रही है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा।
1: तो सच में पूनम जी, आपने अपनी शायरियों के साथ हमारी शाम को अभी शानदार बना दिया है। जितने भी हमारे लिसनर्स घर वापस जा रहे हैं तो वो हमारी इस चैट, मतलब हम लोग जो ये चिट चैट कर रहे हैं उसे सुनकर सच में उनका भी वो होता है ना, लाइक ऑफिस से हम बहुत स्ट्रेस से आते हैं, पर हम पक्का हमारी जो बातें हैं ना, हम उन्होंने हमारे लिसनर्स को बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत रिलैक्स कर दिया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि इनकी बकबक में ना वो अपने सारे स्ट्रेस भूल गए होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है प्राची जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब प्राची से भी एक शेरो शायरी होनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि प्राची भी कुछ हमारे लिसनर्स को अच्छी सी शेरो शायरी सुनाए।
1: तो ये शायरी है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमसे डेली जुड़े रहते हैं।
0: जरा सुना दो।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है।
0: वाह,
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है।
0: अरे वाह क्या बात है, शान के आगे तो मेरी आरजे आनंद के नाम से पहचान है। वाह वाह,
1: अरे वाह।
0: नहीं नहीं तू पूरी शायरी कर दे यार, मैं बीच में।
2: आनंद जी आपने,
0: अरे नहीं यार पहले उनकी शायरी सुनने देते हैं।
2: शान से तो आरजे आनंद जी की पहचान है।
1: अरे वाह, और वैसे आरजे आनंद जी जो है ना, ये मतलब ऑन द स्पॉट एकदम एकदम बढ़िया राइम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। चलिए फिलहाल
0: बैक टू शायरी ना,
1: चलिए फिलहाल हम अपनी शायरी पे वापस आते हैं
0: जी।
1: आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है, आपकी मोहब्बत ही हमारी पहचान है, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी शान है। यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, यूं ही बनाए रखिए हमारा साथ, आपसे ही तो हमारी शो की जान है, आपसे ही तो हमारी शो की जान है।
0: तो आज शो की जान तो पूनम है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आप पूनम जी आप हमारी शो की जान है।
2: नहीं, हमारे श्रोता शो की जान है बिल्कुल, हमारे जो लिसनर है जो दिल के करीब है और हमेशा साथ निभाते हैं एफएम मुरादाबाद का, सभी हमारे श्रोता इस शो की जान है।
1: वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है आरजी
0: पूनम जी, पर
1: आप
0: से
1: जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो हमारा शो और
0: पहले प्राची की बात पूरी हो जाए फिर मैं पूछूंगा क्या कह रहे हो, स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं।
1: पर जब आरजी पूनम जी जैसे स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं तो हमारे शो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना।
0: एब्सोल्युटली गॉट इट। नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि पूनम जी इतनी अच्छी आवाज लेके घूम रही है, खाती क्या है, पूछेंगे इनसे कौन सी चाय का ये कमाल है या कौन सी रोटी ये खाती है, पूछेंगे।
2: मैं बता दूं, मुझे दाल चावल जो देसी खाना है ना, दाल चावल वही मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
0: हम भी जो है पूनम जी देसी खाना खाते हैं, हम चाइनीज बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम भी इंडियन खाते हैं, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल, पर आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है,
2: आपकी बात तो मैं ऐसा क्या है बिल्कुल, प्राची जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बताइए।
0: आपकी बातों में मेरी बातों में ऐसा कुछ होना हो, लेकिन आपकी बातों में है दाल चावल का स्वाद और मेरी बातों में है लाल मिर्च का स्वाद।
2: ये तो आनंद जी ने बात को टाल दिया प्राची जी ने।
1: हाँ, पर उसमें तो आनंद जी एक्सपर्ट है
0: बिल्कुल। देखो यार ऐसा है, एक्सपर्ट की जो है बहुत टांग खिंचाई हो रही है, तो हम एक गाना सुन लेते हैं पहले है ना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तो एक प्यारा सा गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौन सा स्टेशन सुन रहे हैं?
1: हम सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो, बजाते रहो गुनगुनाते रहो। बहुत ही बढ़िया, चलिए मिलते हैं गाने के बाद।

0: तो हमारे साथ कौन है आज हमारे शो में, वही आपका वेलकम करेंगी। जी मैम
1: जी, वेलकम है आप सभी लिसनर्स का। आप सब सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, आरजे प्राची और आरजे आनंद के साथ।
0: और अपना भी तो बता दो नाम।
1: मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम सिंह, कानपुर से। मैं भी आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो आप सभी श्रोताओं का वेलकम है एक बार फिर से।
0: वेरी नाइस जी प्राची, हम लोग अभी ऑफ एयर कुछ बात कर रहे थे जब गाना चल रहा था, तो
2: हम लोग बात ही कर रहे थे कि आप लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं क्या अच्छा कुक कर लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी पकाने की बात बहुत ज्यादा हो रही है। हम लोग बार बार कह रहे हैं ना खिचड़ी पक रही है,
0: और मतलब तो बस... बात ये कि कोई खिचड़ी

0: चाय स्टूडियो में पकने के साथ साथ।
1: आनंद जी की खिचड़ी कौन खा रहे हैं अब ये तो हमें बताइए आप।
0: नहीं ये लाइव नहीं बता सकते ना, लिस्नर भागे भागे आ जाएंगी इसीलिए।
1: लिस्नरों को भी खिचड़ी खिलानी पड़ेगी क्या?
0: हाँ वही वही वही।
2: और अभी हमारे पास ज्यादा खिचड़ी नहीं है।
0: हाँ बस सिर्फ दो चम्मच वो प्राची को खानी है।
1: अच्छा तो प्राची जी इसीलिए तो बुला नहीं रही किसी को, हमको भी नहीं बुला रही ना आपको बुला रही है, अकेले अकेले खिचड़ी खा रही है क्या बात?
2: नहीं नहीं मैं तो नहीं खा रही हूँ खिचड़ी अभी फिलहाल, हमारे स्टूडियो में खिचड़ी है पर वो अभी हम ज्यादा नहीं है।
1: अच्छा, तो खा नहीं रही आप खिचड़ी पका रही है प्राची जी?
0: हाँ ये है मेरी।

0: सच तो यही है। तो वैसे तुम
1: तो
0: क्या
1: आप
0: अच्छा
1: ये
0: पकाती
1: तो
0: हो?
1: खिचड़ी पकाई जा रही है
2: तो अभी तो हम, मैं खिचड़ी अच्छा पकाती हूँ। देखो अभी हम लोग कितनी अच्छी खिचड़ी पका रहे हैं।
1: अब तीन
2: तो
1: लोग
2: आपने
1: खिचड़ी
2: घर की
1: मिलकर
2: देखी जो
1: पका
2: अब
1: रहे हैं,
2: खिचड़ी
1: तो
2: अभी
1: बहुत
2: हम
1: अच्छी
2: अभी
1: खिचड़ी
2: पका
1: बन
2: रहे हैं।
1: जाएगी।
0: देखो तुम लोग मिलके खिचड़ी पकाओ, मैं सुबह ब्रेकफास्ट में देसी घी डाल के खाऊंगा।
2: नहीं हम लोग तो शायद खिचड़ी पका देते हैं, पर आप उस पे देसी घी से उसको
1: एक
2: बढ़िया
1: और
2: बना
1: दही
2: देते
1: बड़ों
2: हैं।
1: के साथ अगर खाएंगे ना, दही बड़े जब होंगे खिचड़ी के साथ, वाह फिर तो क्या टेस्ट आएगा।
0: यार क्या कर रही है तुम? मतलब कौन सी एक्चुअल पोस्ट ना फ्रॉम लल्ला एक्चुअल पोस्ट बना ना, कौन सी डिश थी ये? ठीक है कौन सी है? हाँ खिचड़ी विद दही बड़ा। ओ भाई मुझे मारो, ये कनपुरिया, ये कानपुर वाले कब से खाने लगे? कृष्ण वर्षाम लवश्यमी
1: बहुत मजा आता है प्राची जी, आप खा के देखिएगा,
2: प्राची। अच्छा दही
1: बहुत
2: बड़ी के
1: मजा
2: साथ
1: आएगा
2: खिचड़ी, अरे
1: जी,
2: वाह, हम जरूर ट्राई करेंगे पूनम जी।
1: बिल्कुल ट्राई कीजिएगा आनंद जी, ये बहुत अच्छी डिश मैंने बताई है देसी
0: और
1: घी
0: हमारे
1: की।
0: लिसनर अगर ट्राई करेंगे तो वो बहुत जूते मारेंगे, ध्यान रखना।
2: पर
0: ठीक है
2: ठीक है पूनम जी,
1: नहीं
2: आज आपने
1: लिसनर
2: हमें,
1: हमारे जो ट्राई करेंगे ना वो भी तारीफ करेंगे, आनंद जी ने क्या खिचड़ी पकाई है आज।
2: अच्छा पूनम जी आपने आज हमें इतनी अच्छी, ये मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हमें डिश बताई है। तो कुछ और भी ऐसी हमें डिशेस बताइए जो आपको लगता है कि हम लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि हम मुरादाबादी भी तो जाने कि मतलब कानपुर के जो लोग होते हैं उनका टेस्ट और कैसा होता है।
1: कानपुर का टेस्ट और मुरादाबाद का टेस्ट एक जैसा ही होता है, क्योंकि हम और आनंद जब खिचड़ी पकाते थे ना तो
0: हाँ
1: टेस्ट बहुत अच्छा लगता था खाने में,
0: सही बात
1: है
0: है।
1: ना।
2: हाँ कुछ और बताइए इंटरेस्टिंग सा, जैसे आपने अभी बताया ना खिचड़ी के साथ दही बड़े, कुछ और इंटरेस्टिंग सा है? और
0: तू बता दे यार उसको मुरादाबाद के बारे में।
1: मुरादाबाद में और क्या खाया जाता है, ये बताइए,
0: हाँ
1: फिर हम
0: मुरादाबाद
1: कानपुर
0: से
1: वाले
0: वो
1: को
0: बिलोंग नहीं
1: बताएंगे।
0: करती है, तो यहाँ की क्या चीजें फेमस है बताओ कानपुर की स्पेशल?
2: मैं आपको बताऊं तो मुरादाबाद की, मुझे अपने मुरादाबाद की, मुझे दाल बहुत बहुत पसंद है। इवन मुझे ना जो दाल है वो मुझे ऑल
0: कौन
2: टाइम
0: सी वाली
2: फेवरेट
0: दाल
2: है।
0: खिचड़ी में जो डालते हैं?
2: नहीं, मुरादाबादी मूंग दाल
0: मूंग दाल। ओके ओके वो
2: वो
0: शादी में
2: मुझे
0: था।
2: ऑल टाइम फेवरेट है, वो
0: ओके तो
2: अल्टीमेट फूड है मेरे लिए।
1: बात है, तो
0: पूनम आप जब भी
1: हाँ
0: कभी कानपुर से यहाँ मुरादाबाद की ओर रवाना हो तो हम आपको मुरादाबादी दाल सर्व करेंगे वेलकम पे, है ना?
2: अरे वाह वाह, तो ये
0: और
1: तो,
0: क्या फेमस है पूनम को ये भी बताओ यार।
2: और वैसे तो यहाँ बहुत कुछ सारी चीजें अच्छी मिलती है।
0: लेकिन मैं आपको बताऊं पूनम जी, यहाँ पे बिरयानी भी बहुत फेमस है।
1: हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, चिकन बिरयानी मुरादाबाद की बहुत ज्यादा फेमस है, वहां
0: लेकिन
1: के
0: यार
1: लोग
0: हम
1: मुझे
0: लोग तो
1: पूरी तरह
0: वेज
1: पता
0: हैं तो हम लोग को
1: है।
0: वेज
1: लेकिन
0: बिरयानी क्या पता है यार।
1: हमारे जो लिसनर्स हैं वो जो कि नॉन वेज खाते होंगे, उनके लिए मैं बता रही हूँ
0: हाँ
1: कि चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है वहां की, और जाके श्रोता खा भी सकते हैं। वैसे
0: बिल्कुल
1: हम लोग तो नहीं खाते हैं, हम लोग तो वेजिटेरियन है, तो हम लोग को क्या मालूम कितनी टेस्टी है कितनी नहीं है ना।
0: हाँ बिल्कुल
1: लेकिन हम सब तो बस वेज बिरयानी ही खा सकते हैं, और वेज खिचड़ी जो कि हम लोग पका रहे हैं वो खा सकते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सच
1: जी।
0: में पूनम जी आपको मुरादाबाद के बारे में, मुरादाबाद की पीतल बहुत फेमस है पता है यहाँ की?
1: हाँ हमारी
0: यहाँ पर
1: सिटी,
0: जो पीतल का कारोबार होता है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पीतल के नाम से ही मुरादाबाद फेमस है। राइट राइट राइट, तो मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है यहाँ शो पे बोलने से पहले ना, तभी इतना
1: बिल्कुल,
0: अच्छा।
1: मुझे मुरादाबाद के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि हमारे
0: मुरादाबाद में एक चीज
1: बिजनेस।
0: और बहुत फेमस है यहाँ पर जो है ना, खाने पीने की डिशेस तो है ही फेमस, लेकिन यहाँ के पार्क, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है पूनम, यू नो क्यों प्राची?
2: हाँ
0: बाकी तो मुझे भी यहाँ का इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज पूनम मैं बताऊँ तो प्राची यहाँ से है तो ज्यादा जानती होगी
1: हाँ
0: लोकल के
1: जी
0: बारे में।
1: बिल्कुल, तो मुरादाबाद से प्राची जी थोड़ा और बताएं कुछ मुरादाबाद के बारे में,
0: एक
1: कि
0: यहाँ
1: और
0: पे एक
1: हमारा
0: ऐसा
1: ये।
0: पार्क बना है जिसके अंदर 7 अजूबे हैं, पता ना यार?
2: हाँ, यहाँ एक ऐसा पार्क बोला है जहाँ 7 अजूबे है, 7 नहीं मतलब जितने भी जो भी अच्छे
0: 7 वंडर पार्क
2: मॉन्यूमेंट,
0: है।
2: हाँ जितने भी मतलब वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ है, और वो वेस्ट से
1: बिल्कुल
2: बने हैं, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो
1: बिल्कुल,
2: इधर इधर बहुत ज्यादा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है मुरादाबाद में, तो
1: ये
2: उसका जो भी
1: तो
2: वेस्ट आता है उससे वो पार्क बना है, और मैंने और आनंद ने उसे विजिट भी किया था, तो वो बहुत ही खूबसूरत है।
0: और
2: और
0: हमने वीडियो भी बनाया था गाइस, वो भी बहुत खूबसूरत है, लाइक कर देना आप,
2: हाँ,
0: है ना?
2: और उसको मतलब
1: बिल्कुल
2: उसको और जब रात में जब वो जो व्यू आता है ना, जो रात में जो व्यू बनता है वो बहुत ही खूबसूरत है. और रात में अगर हम जाएंगे तो हमें लगता है अगर हमने बीस्ट ऑफ वंडर अगर हमने विजिट कर लिया तो हमने हमारी कंट्री के जितने भी स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनका हिस्टोरिकल अपना इम्पोर्टेंस है, वो सब हमने विजिट कर लिए. तो वो जो पार्क है वो मुझे
1: बिल्कुल
2: बहुत पसंद है, और स्पेशली उन लोगों को जो लोग हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो वो बहुत खास है. तो जब भी आप आए पूनम जी तो वेस्ट ऑफ वंडर जरूर विजिट करिएगा.
1: बिल्कुल. चलिए, अभी तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है अपने शहर के बारे में, मुरादाबाद के बारे में, और रिसेप्शनिस्ट को पता भी हो गया और मुरादाबाद जाने लायक और जाएंगे तो क्या क्या वहां देखने लायक है. जरूर से सभी लिसनर जाएंगे देखने के लिए, घूमने के लिए,
2: जी बिल्कुल पूनम जी.
1: जी
0: चलिए, तो
1: तो
0: बातचीत तो चलती रहेगी पूनम से, और हमें इजाजत भी लेनी है. हमारे श्रोताओं को ज्यादा और बोर नहीं करेंगे, ज्ञान दे देंगे.
1: नहीं पकाएंगे क्योंकि ज्यादा
0: एक गाना लेते हैं,
2: हिस्ट्री चल भी तो सकती है.
0: म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आते हैं लौट कर पूनम के साथ, सुनेंगे और शायरी. चलो अभी लाइन पे रहिएगा आप लोग गाइज, एक गाने के बाद मिल रहे हैं.

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं अपना दिल से दिल तक अखिल संग ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और खूब सारी बातें होंगी आज, मस्ती वाली और कुछ ऐसी बातें जिसका हम सबको रहता है इंतज़ार। अगर फंसे हुए हो कहीं जाम में या फिर कहीं हो रहा हो ज़्यादा शोर, तो ज़रूर हमें अपडेट करें और बताएं कि कहाँ पे आप ज़्यादा हॉर्न बजाना पड़ रहा है आपको और कहाँ आप बिल्कुल चुपचाप निकल गए बिना बताए। कोई भी अपडेट हो हमें ज़रूर बताएं 9837896896 पे। हमारे पास अभी अपडेट आया था कि दिल्ली रोड बाईपास के पास, दिल्ली बाईपास के पास थोड़ा सा जाम है, वहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ी रेंग रेंग के चल रहा। अगर आप उस जगह जा रहे हैं तो आराम से चलिए साहब गाड़ियाँ, रास्ता खुल रहा है और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। तो आज करेंगे खूब सारी बातें। कहते हैं ना दोस्तों कि जब भी अगस्त का महीना आता है तो कुछ ना कुछ तो बदल सा जाता है, सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं, स्कूलों में बच्चों की रिहर्सल शुरू हो जाती हैं, कहीं देशभक्ति के गीत बजते हैं तो कहीं दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आती है, मेरा देश मेरा भारत। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ पहले कि जब भी 15 अगस्त पास आता है तो आपको क्या फील होता है? प्राइड फील होता है, एक्साइटमेंट फील होता है, बच्चों की यादें ताज़ा होने लगती हैं, या स्कूल में फ्लैग होस्टिंग वाले दिन याद आ जाते हैं? कुछ ना कुछ तो फील ऐसा होता ही होगा। या फिर वो दिन याद आता है जब आपको पहली बार हाथ में तिरंगा पकड़ा था आपने, और फिर वो लड्डू जब हो जाती है पूरी परेड, उसके बाद जो मिलता है लड्डू, उसकी वजह से भी आपको 15 अगस्त याद रहता है। तो 15 अगस्त आपके लिए सिर्फ एक नेशनल हॉलीडे है या एक इमोशन? आज हम बात करेंगे इसी के साथ, और खूब सारी होंगी शायरी, कुछ पहेली भी, और मुरादाबाद अपने शहर की से जुड़ी हुई कुछ बातें भी। तो चलिए हम लेते हैं पहले अपने एक लिसनर को जिन्होंने एकदम मिनट से पहले कॉल कर लिया था, 9837896896, उन्हें बिल्कुल मुँह जवानी याद है। चलिए बात करते हैं, क्या कहते हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: जेठालाल।
0: जेठालाल जी कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: आपके गाने सुनना है, आप जैसे अच्छे गाने सुनवा रहे हैं तो आदमी काम ही क्या करेगा, वो तो फिर आपके साथ ही लगा रहेगा।
0: नहीं नहीं साहब, ये गाने सुनने के लिए जो आपने टाइम निकाला है ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम आपने इतना समय निकाला है कि अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं आप भी। तो इस समय जेठालाल जी आप कौन सी शायरी सुनाना चाहेंगे, किससे शुरुआत करेंगे?
1: जी सर।
0: हाँ जी जेठालाल जी,
1: लाइन पे है ना?
0: हाँ हाँ लाइन पर हैं आप, शायरी बताइए कौन सी सुनेंगे।
1: खामोश लबों पर एक मलाल छोड़ गया, खामोश लबों पर एक मलाल छोड़ गया, वो जाते जाते आंखों में सवाल छोड़ गया। ना बारिशों में वो रवानगी रही, ना मौसमों में रंग, यादों के नाम पर बस एक हाथ छोड़ गया।
0: क्या बात है, क्या बात है जेठालाल जी। आज हम बात कर रहे हैं, मतलब शायरी तो आज आपने बहुत ही मतलब उम्दा और कहते हैं ना फिर से दिल से निकली हुई आपने अपनी बात सुनाई है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आपने पेश किया। आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी 15 अगस्त पास आने लगता है, जैसी 15 अगस्त पास आता है तो हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है अपने तिरंगे के लिए। तो आपको कैसा लगता है, आप अपनी कोई भावना हमारे साथ शेयर करना चाहें सॉन्ग में?
1: बिल्कुल सर, सुनाऊं?
0: हाँ हाँ जरूर जरूर।
1: तिरंगे से नाता है, मिट्टी से प्यार है, तिरंगे से नाता है, ये देश हमारा है, ये सौभाग्य हमारा है, आओ मिलकर शपथ ये खाएं, भारत को और भी महान बनाएं।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, आपने इतनी अच्छी शब्दों में इतने अच्छे उसमें आपने बता दिया कि कितनी फीलिंग आपके साथ जुड़ी रहती है इस देश।
1: जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे क्या नाम है वो जब आप में आप ऐसा दिखाएंगे, आप हमारे फायर ब्रिगेड हैं सर, हम तो वही सलाह आपसे लेते हैं।
0: तो आज कौन सी फरमाइश है आपकी, आज आपकी फरमाइश?
1: कहाँ गया बेदर्दी मन को,
0: क्या बात है साहब, फरमाइश भी आप एकदम कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं कि हमें खुद ढूंढना पड़ता है इतना सब कुछ। मगर बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद सर।
1: जी सर, तो 15 अगस्त को बढ़िया प्रोग्राम चलेंगे सर?
0: पक्का बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चलेंगे।
1: दिन निकलने से पहले पहुंच जाऊंगा आपके पास।
0: ठीक है सर, ठीक है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे जेठालाल जी, जिन्होंने आज मतलब कहते हैं ना एकदम जान में जान डाल देनी, इतनी अच्छी शायरी के साथ शुरुआत करी, कितनी अच्छी बातें करी और अपना देश प्रेम भी बताया। तो होता ही कुछ ऐसा, जैसे ही 15 अगस्त सुनते हैं तो कुछ ना कुछ अपने जहन में आना चालू हो जाता है और कई सारी बातें, कई सारी यादें जो जुड़ी हुई होती हैं वो ऑटोमेटिक हमारे पास रिकॉल हो जाती हैं। तो चलिए, आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, शायद वो लड्डू ही होगा जो आपको एंड में पूरी प्रोग्राम तक जोड़ के रखता है कि अब पूरा प्रोग्राम होने वाला 15 अगस्त का ख़त्म और वो लड्डू मिलेगा, तभी तक मैं यहीं बैठा रहूँगा अपनी कुर्सी से। तो हुआ तो होगा भाई साहब। तो 9837896896 पे ज़रूर हमें कॉल करें और शेयर करें अपने कुछ दिल की बातें और खूब सारी करेंगे गुफ्तगु। तब तक सुनते हैं बढ़िया सा गाना जेठालाल जी की फरमाइश पे।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना रेडियो स्टेशन। नाम सुनते ही मुझे सबसे पहले अपना स्कूल याद आ जाता है। सुबह सुबह सफ़ेद यूनिफॉर्म, हाथ में छोटा सा तिरंगा और फिर वो इंतज़ार कि कब फ्लैग खुलेगा और कब मिलेगा लड्डू। एक शायरी अपने तिरंगे के लिए, तिरंगा सिर्फ तीन रंगों की पहचान नहीं, ये करोड़ों दिल की जान है। जिस मिट्टी में जन्म लिया हमने उस भारत पर हमें अभी अभिमान है। तो कहते हैं ना, आपके बचपन में जो है ना 15 अगस्त कैसे मनाया जाता था? क्या आपको भी स्कूल में स्पीच देने का मौका मिला था? क्या आपको भी कोई पैट्रियोटिक पोएम सुनाने का मौका मिला? या आपने कोई पोएम सुनाई थी वहाँ पे स्टेज पे पहुँच के, चलो आज 15 अगस्त पे पहले पोएम मैं ही सुनाऊँगी? या फिर आपका पूरा ध्यान उस लड्डू पे रहता था कि भाई साहब ये जो लड्डू है ना इतना टेस्टी होता है कि एक पता नहीं एक ही लड्डू मिलेगा या आज दो लड्डू मिलेंगे, या क्या पता दूसरे का पैकेट भी लड्डू का अपना हो जाएगा, कोई अब्सेंट कर गया तो क्या उसका लड्डू हमें मिलेगा या नहीं? मिला होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक अपने लिसनर से बात करते हैं, क्या कहते हैं वो आज। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, क्या नाम है आपका?
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, आपका नाम क्या है और कहां से बात कर रहे हैं आप?
1: नमस्कार सर, मैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: तो इस समय कैसा मौसम हो रहा है महाराष्ट्र में बबलू जी?
1: जी सर, इधर मौसम है सर, सुबह से बरसात है, सुबह 5 बजे से अभी तक बरसात पड़ रही है सर। इधर मौसम बहुत बढ़िया है इधर का,
0: बहुत बढ़िया। तो महाराष्ट्र में कहाँ पर, किस जगह से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है।
1: बोरावली से बोल रहा हूँ सर।
0: बोरावली से
1: जी।
0: तो क्या काम करते हैं आप बबलू जी?
1: आपके ऑफिस में वो रखो होगा फूलदान, जिसपे पीले कलर का उसमें हैमर पड़ी हुई होगी, वो भी काम करते हैं सर। हम लोग फूलदान वगैरह बनाते हैं, इधर भी डिजाइन करते हैं बर्तनों पे।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया ऐसा कि एकदम सामने पता चल गया कि आप क्या काम करते हैं। और
1: मैंने
0: अच्छा अच्छा और आज जो है हम बात कर रहे हैं कि जब भी 15 अगस्त पास आने लगता है तो कुछ यादें आपके साथ जुड़ी होती है 15 अगस्त की, कि हम कैसे जो है ना फ्लैग होस्टिंग करते हैं या उस 15 अगस्त के दिन कैसे मनाते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसी याद जो आप बताना चाहेंगे?
1: सर, मैं अपने दोस्त के लिए कहना चाहूँगा कुछ, अपने दुर्गेश सैनी के लिए, कल्याणपुर मुरादाबाद से ही है।
0: अच्छा अच्छा पहले पहले उन्हीं के लिए बोलिए कुछ। हाँ बताइए
1: जी सर। तो उनकी जो लाइन है, एहसास का संगीत सुना ही नहीं देता, होठों पे आके कभी दुआई नहीं देता, शायद उन्हें मालूम नहीं ये राज्य मोहब्बत, ये प्यार का सौदा है, दिखाई नहीं देता।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि प्यार का सौदा है, ये तो चीज दिखाई नहीं देती।
1: जी सर, अपने दुर्गेश सैनी के लिए बोले मैंने।
0: तो दुर्गेश सैनी जी, आपके पास अगर ये बात पहुंची हो बबलू सैनी साहब की, तो इसे का जवाब भी उनके पास जरूर पहुंचाएं, व्हाट्सएप करें या फिर उन्हें कॉल लगा लें। सही कहा मैंने?
1: जी सर, जी सर।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? आपने बताया नहीं कि आप जब भी 15 अगस्त पास में आता है तो आपके लिए कुछ स्पेशल रहता है, आप क्या करते हैं उसके लिए? बच्चों को घर में जाके झंडा दे देते हैं या
1: जैसे हम यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर तो हम लोग हर 15 अगस्त को छुट्टी रखते हैं, सुबह को अपने झंडा लहराते हैं।
0: ओके।
1: और अपने जो बूंदी वगैरह लेकर आते हैं, उन पास के जो भी हैं उनको हम लोग बांटते हैं, आपस में देते हैं दूसरे को, फिर हम साथ में मनाते हैं हम लोग इस 15 अगस्त को।
0: चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साहब। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: सर, अपने दुर्गेश सैनी के लिए सुनना चाहेंगे, बेपनाह प्यार है आजा।
0: बेपनाह प्यार है आजा। तो दुर्गेश सैनी जी को आप लाइन पार से महाराष्ट्र बुलाना चाह रहे हैं?
1: जी जी।
0: चलिए ठीक है साहब, जरूर पहुंचेंगे दुर्गेश जी ये गाना सुन के।
1: ठीक है, धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे बबलू सैनी जी जो इस समय महाराष्ट्र पे हैं, वहाँ पे के सिलसिले में वहाँ पे रहते हैं, और उन्होंने अपने दोस्त दुर्गेश सैनी जी के लिए एक मैसेज, देखिए ना यही तो होता है कि FM पे आपने अपने दोस्त के लिए एक मैसेज भी भेज दिया और दोस्त ने उसे सुन भी लिया और दोस्त से दिल की बात भी पहुंच गई। तो यही एक ज़रिया है, अभी नहीं बहुत पहले से ज़रिया है, और थोड़ा सा हम ब्लूटूथ या फिर दूसरी जगह पे कनेक्ट करके मोबाइल पे गाने सुन के हम उसमें खो जाते हैं, मगर जो असली मज़ा अपने पसंदीदा गाने FM पे आने का है वो कुछ और ही है, उसकी बात है। तो चलिए इनकी भी बातें सुनते हैं। तब तक आपके एक छोटी सी पहेली है। तीन रंगों में रहती हूँ, हर भारतीय की शान हूँ, हवा चले तो लहराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। आप मैसेज करें हमें व्हाट्सएप पे और बताएं इसका जवाब क्या है। तब तक ही सुनते हैं गाना जो बबलू सैनी जी ने फरमाइश की है दुर्गेश सैनी जी के लिए। आते हैं इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। आपकी भी कोई बात हो दिल से दिल की तो ज़रूर हमें कॉल करें 9837896896। करेंगे कुछ गुफ्तगू और उसके बाद एक और पहेली मैं आपसे पूछूंगा, पहले इसका जवाब दीजिएगा।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मैं वापस आऊँगा। ये जो बॉर्डर मूवी का गाना है, ये हर एक के दिल के एकदम इतना करीब है कि कहीं भी कोई भी बात हो जाए, अगर कुछ भी बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी बात हमारे जहन में आती है या हम कहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले यही गाना हमारे दिल दिमाग पर छा जाता है। इसकी फरमाइश की थी हमारे उस्मान जी ने, हमारे जो एक्टिव लिसनर हैं, और हम ऐसा कोई शायद दिन नहीं आता जिस दिन उनसे शायद बात ना होती हो या फिर उनकी कॉल नहीं आई होती। तो आज उनकी फरमाइश थी कि अखिल जी ये गाना ज़रूर प्ले कर दीजिएगा, तो आज हमने उनकी ये फरमाइश भी पूरी करी है। अभी उससे पहले जो हमारी बात हुई थी बबलू सैनी जी से, तो वो उन्होंने बताया था कि वो क्राफ्ट्समैनशिप का काम करते हैं, और कहते हैं ना कि जो हमारा शहर है सिर्फ पीतल के लिए फेमस नहीं है, मुरादाबाद की पहचान क्राफ्टमैनशिप, मेहनत और हुनर से भी जुड़ी हुई है। मुरादाबाद को दुनिया भर में ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कारीगरों की कला ने शहर को इंटरनेशनल पहचान दिलाई है। तो सोचिए ना कि एक छोटे से वर्कशॉप में बैठा कोई कारीगर जब अपने हाथों से कोई ऐसी चीज़ तैयार करता है, तो हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों तक वो चीज़ें घर को सजाती हैं। तो एक कहते हैं ना, उस जब ये चीज़ें कहीं शोभा बढ़ाती हैं या कहीं भी ये जगह चीज़ें पहुंचती हैं, तो एक अलग से एक प्राउड मोमेंट भी फील होता है कि हाँ, ये हमारे शहर की कलाकारी है या हमारे शहर से निकले हुए कलाकार ने बनाई है। और यही तो भारत की भी एक असली ताकत है कि हमारे हाथों का हुनर और सब जगह पूरे विश्व में फैला हुआ है। अगर मुरादाबाद की एक खूबसूरत बात और भी है कि यहाँ पे ना इंडिपेंडेंस डे सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि स्कूल, मार्केट, सोसाइटीज़, अलग अलग फंक्शंस इसके लिए होते हैं, और अलग अलग कम्युनिटीज़ में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि

आपको मुरादाबाद की चीज़ जो पूरे भारत में फेमस करनी हो तो वो क्या कहेंगे? ब्रास का वर्क, मुरादाबाद की कुजीन्स, हमारी भाषा, हमारे लोग, या हमारी गंगा जमुनी वाली तहजीब? तो चलिए बताइएगा हमें और मैसेज करिएगा उस पहेली का भी जवाब जो आपने दिया है हमारे को कि तिरंगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, यही जवाब हमारे पास मैसेज किया है आदिल जी ने, कहते हैं कि आपकी पहेली का जवाब है तिरंगा। आदिल जी धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने पूछा था ये कि तीनों रंगों में रहती हूँ, हर भारतीय की शान हूँ, हवा चले तो लहराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो आदिल जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, तिरंगा। एक और पहेली आप लोगों के लिए, मैं दिखाई नहीं देता लोग लेकिन हर देशवासी के दिल में रहता हूँ, मेरे लिए लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, बताइए मैं कौन हूँ। तो ये भी आपको पता ही होगा कि ये छोटी सी, आज पता चल जाएगा सर कि पेट्रिज्म कहाँ कहाँ तक आप लोगों के पास है। तो छोटी सी एक इस पहेली के बाद हम आएंगे फिर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, करेंगे खूब सारी बातें, थोड़ी सी अपने मुरादाबाद की, थोड़ी सी अपने इस तिरंगे की भी। तो जुड़े रहिए और गुनगुनाते रहिए, बढ़िया बढ़िया सा। मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। तो जनाब, इतनी सारी बातें हो रही थी, इतनी सारी दिल की कुछ यादें आज बाहर निकल रही थी। तो कहते हैं ना कि अभी हम बातें कर रहे थे आज पेट्रियटिज्म, और 15 अगस्त के जैसे ऐसे नज़दीक आता है, हम लोग क्या प्लान करते हैं और कैसे उस दिन को स्पेशल बनाने की सोच में लग जाते हैं। कि 15 अगस्त पास आते ही आपको क्या फील होता है? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए ना ये दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का ही नहीं, ये एक रिमाइंडर भी है कि जिस फ्रीडम को हम आज नॉर्मल समझते हैं, उसके पीछे जनरेशंस का कितना सेक्रीफाइस रहा होगा। हम सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत आज़ाद नहीं था। इसलिए 15 अगस्त हमें एक बात तो याद दिलाता है कि फ्रीडम की वैल्यू वही समझ सकता है जिसने उसकी कमी को महसूस किया हो। और आज़ादी सिर्फ देश की आज़ादी नहीं, अपने डर से भी आज़ादी है, अपनी नेगेटिविटी से भी आज़ादी भी है, और गलत सोच से भी आज़ादी है। तो इस साल 15 अगस्त को छोटा सा प्रॉमिस ज़रूर करें, अपने लिए बेहतर बनेंगे, अपने परिवार के लिए बेहतर बनेंगे, और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हमारे पास शायरी भेजी है अमित जी ने। वतन से मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं होता, ये वो जज्बा है जिसका कोई जवाब नहीं होता। तिरंगा जब आसमान में लहराता है, हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है। क्या बात है अमित जी फ्रॉम बिजनौर, क्या बात है अमित जी। और बिजनौर तो कहते हैं बहुत ही बढ़िया इस समय शहर है, और बिजनौर भी हम घूमते रहते हैं। कभी बिजनौर में हमारा ननिहाल है तो बिजनौर की तो यादें अलग ही जुड़ी रहती हैं। एक मैसेज और आया है सूरज लाइन पार से। सर, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मैं हर 15 अगस्त पे अब तक 12 बार अपनी वाइफ को झंडा देता हूँ और पूछता हूँ कि कब आज़ादी मिलेगी। क्या बात है सूरज जी, कैसे मतलब कैसे डेयर है आपके अंदर, कैसे आप हिम्मत करके पूछ लेते हैं अपनी वाइफ से हर 15 अगस्त को कब आज़ादी मिलेगी। साहब, आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, जिनकी शादियों को 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, वो तक ये हिम्मत नहीं कर पाते पूछते हैं 15 अगस्त को। मगर सही है साहब, आपने तो बिल्कुल ही अलग ही अपना झंडा गाड़ दिया है सूरज जी, बहुत ही अच्छा। और हमारे पास पहली का जवाब दिया था ललिता कश्यप जी ने। ललिता कश्यप जी ने मैसेज किया था कि उसका जवाब था इज्जत, उसका जवाब था तिरंगा, और तिरंगा ही अपनी इज्जत और अपनी शान है। बहुत ही बढ़िया आपने इसके जवाब देने की कोशिश करी। मैसेज करा है उन्होंने, हाय अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी। हाँ जी, गुड वाला इवनिंग तो है ही ललिता जी, धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, और पूरी पूरी उम्मीद है आप भी बहुत अच्छी होंगी और इस समय इस शो का एंजॉय कर रही होंगी। आपने एक शायरी लिखी है हमारे लिए, और वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और एक बार मैं सभी श्रोताओं के लिए बोल भी देता हूँ कि क्या लिखा है ललिता जी ने, कश्यप जी ने। अखिल सर की शख्सियत ही कुछ ऐसी खास है, उनकी बातों में सादगी और अंदाज में मिठास है। इज्जत दिल से करते हैं हर कोई उनकी, क्योंकि अखिल सर जैसा इंसान मिलना भी तो खास है। धन्यवाद धन्यवाद, आपने इतना अच्छा लिखा है, और हम तो पढ़ पढ़ के कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या सच में ऐसा है। तो सच में कहीं कहीं लगता है कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा कि आपने ऐसी बात कही। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका ललिता जी। चलिए, हम एक मैसेज और हमारे पास आया है, इनका नाम है अतरंग। अतरंग अतरंग जी, आपने लिखा है दूसरी पहेली का जवाब पेट्रियटिज्म। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने पहचाना, और जवाब बिल्कुल सही एकदम कटाक्ष दिया है। आपके पास आपका एक गिफ्ट वाउचर पहुंच जाएगा जैसे ही ये प्रोग्राम शो के अंत में। तो चलिए गाना सुनते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आते हैं। आपकी भी कोई एक ख्वाहिश, कोई फरमाइश हो, और कोई दिल की बात तिरंगे से निकली हुई हो, तो ज़रूर हमें कॉल करें फटाफट 9837896896 पे, या फिर मैसेज करें और हमारे लास्ट कॉलर बने। खूब सारी बातें होंगी दिल की, फिर करेंगे बढ़िया सी फरमाइशी प्ले।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: खन्ना जा रहे।
1: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आज खूब बातें हुई, इस एक घंटे का पता ही नहीं चला, खूब पहेलियों के जवाब भी आए, मुरादाबाद की भी बातें हुई और अपने तिरंगे से रिलेटेड, तिरंगे को लेके 15 अगस्त जो आने वाला है उसको भी लेके कितनी सारी बातें और यादें ताज़ा करी। कहते हैं ना 15 अगस्त जब भी आता है तो आपको क्या फील होता था, तो शायद किसी को स्कूल याद आ जाता था, किसी को फैमिली का कोई फंक्शन याद आ जाता, किसी को देश के जवानों की याद आ जाती, किसी को अपना बचपन याद आता है और किसी को पहली बार याद आता है जब उसने तिरंगे को हाथ में पकड़ा था। लेकिन इन सब फीलिंग्स के पीछे बस एक ही भावना होती है, भारत के लिए प्यार। और जाते जाते एक छोटी सी शायरी आपके लिए, सभी के लिए। मिट्टी की खुशबू में कुछ बात है, तिरंगे में देश की पूरी औकात है, आज़ादी मिली है कुर्बानियों के बाद, इसलिए हिंदुस्तान हमारे लिए सिर्फ देश नहीं हमारी पहचान है। हमारे पास मैसेज आया है सर, आपका नंबर डेली ट्राई करता हूँ नहीं मिलता है, हमारा प्यार भरा नमस्कार सर जी, गुड इवनिंग। सर जी गुड इवनिंग, आपका नाम इस पे मैसेज शो हो रहा है राजेंद्र जी, तो राजेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत गुड इवनिंग। और हमें अच्छा लगा कि आपका मैसेज आया, कॉल अगर आपकी नहीं मिल पाती है तो शायद नंबर उस समय बिज़ी हो जाता है या फिर हम कॉलर्स के साथ और बिज़ी होते हैं, मगर मिलाते रहिए साहब, बहुत जल्दी कोई ना कोई आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी और बातें भी होंगी। तो श्रोताओं आज के लिए था इतना ही काफ़ी, कल फिर करेंगे कुछ नई बातें, कुछ नए दिल से दिल की यादों को जुड़ी हुई सारी गुफ्तगू। और चलते चलते हम जरा सुनेंगे हमारे लिसनर की चॉइस, उनका नाम है, मैसेज किया है हमें, नमस्ते अखिल जी कैसे हैं आप, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छा हूँ साहब, और मैं भी पूरी आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आने वाले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गाना है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। सुनने वाले हैं दलजीत कोहली, माधव कोहली, रीना कोहली, सरगम कोहली, देव कोहली, कपूर कंपनी मुरादाबाद से। तो चलिए ज़रूर चलते चलते आपका ही फरमाइश ही पूरी करते हैं और सभी अपने श्रोताओं को एक बार फिर से जय हिंद जय भारत। अब मिलेंगे हम कल, गुड नाइट शब्बा खैर, और फिर से होगी गुफ्तगू दिल से दिल तक अखिल संग में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: सुनी।
1: आप? आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था। फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने ये चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है, नई राह है, नई मंजिल है।

टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां। तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।